FM 102.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और

0: सुरक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102-103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर। यह प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। पारस पत्थर क्या करे मिटे न मन की प्यास, परम लाभ तो नाम है जिसमें प्रभु निवास।

श्रोताओं, इस भजन के साथ ही आज की अर्चना अब संपन्न होती है। आज की अर्चना को अपने स्वरों से सुशोभित किया नरेंद्र चंचल, मिलन सिंह, अनूप जलोटा, शर्मा बंधु और हरिओम शरण ने।

श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है FM 102-103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

0: जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।
1: छरे छबीले चयन सब

0: अभी श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय प्रसारण किया गया। मुख्य स्वर सुरेश वाटकर का था। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम आबोहवा में लीजिए सुनिए हिमांशु नामा की लघु वार्ता। विषय है विश्व पर्यावरण दिवस।
1: साथियों, आज है 5 जून। हर वर्ष 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। जी हाँ, ये वर्षों से एक बड़े वार्षिक उत्सवों में से एक है जो हर वर्ष 5 जून को जीवन का पालन पोषण करने वाली प्रकृति को सुरक्षित रखने के लक्ष्य के लिए पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। पूरे विश्व में आम लोगों को जागरूक बनाने के साथ ही सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाई को लागू करने के लिए और पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने के लिए वर्ष 1974 से हर वर्ष 5 जून को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई। इसकी घोषणा और स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1972 में हुई थी। हालांकि इस कार्यक्रम को हर साल मनाने की शुरुआत 1974 से हुई। इस अभियान का समारोह प्रत्येक वर्ष अलग अलग शहरों के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान पूरे सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। इस अभियान के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक और प्रोत्साहित करता है। यह सकारात्मक सार्वजनिक गतिविधियां और राजनीतिक ध्यान प्राप्त करने के लिए प्रभावी वार्षिक अभियान है। इसे अधिक प्रभावी बनाने और वर्ष की विशेष थीम या विषय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न क्रियाएं जैसे निबंध लेखन, भाषण, नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन किया जाता है। साथ ही परेड निकालकर भी लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जाती है। यह सामान्य जनता सहित शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और राजनीतिज्ञों के समूह को आकर्षित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस वाले दिन देशों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपने राज्यों, शहरों, घरों, स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर सफाई गतिविधियां, रिसाइकिलिंग पहल, वृक्षारोपण के साथ सभी प्रकार की हरियाली वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और इस खूबसूरत ग्रह की बुरी परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजन किए जाते हैं। साथियों, बड़े पर्यावरणीय मुद्दों जैसे भोजन की बर्बादी और नुकसान, वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, इनको बताने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस वार्षिक उत्सव

0: को मनाने की शुरुआत की गई थी। पूरे विश्व में अभियान में प्रभाव लाने के लिए हर वर्ष एक खास थीम और नारे के अनुसार उत्सव की योजना बनाई जाती है। पर्यावरण संरक्षण के दूसरे तरीकों जैसे बाढ़ और अपरदन से बचाने के लिए सौर जल तापक, सौर स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन, नए जल निकासी तंत्र का विकास करना, प्रवाल भित्ति को बढ़ावा देना और मैंग्रोव का जीर्णोद्धार आदि के इस्तेमाल के लिए आम लोगों को बढ़ावा देना इस दिन के उद्देश्यों में शामिल हैं। साथ ही सफलतापूर्वक कार्बन के उत्सर्जन को कम करने पर जोर देना, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को घटाना, बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाइड्रो शक्ति का इस्तेमाल करना और बायो ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने जैसे उद्देश्यों के साथ हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हमें पूरे साल भर कार्यक्रम के उद्देश्यों को अपने ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें वृक्षारोपण के माध्यम से आसपास के वातावरण को सुंदर बनाने और साफ सफाई, पानी की बचत, बिजली का कम प्रयोग, जैविक और स्थानीय खाद्य पदार्थों का उपयोग, जंगली जीवन की सुरक्षा आदि बहुत सी गतिविधियों को कार्य रूप में बदलना चाहिए। जीवन के लिए हमारे पास साथियों यही एकमात्र ग्रह है और यह हमारा घर है। हम सभी इसकी प्राकृतिक सुंदरता को सदैव बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें विश्व पर्यावरण दिवस पर यह संकल्प लेना चाहिए कि बेहतर भविष्य के लिए हम पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देंगे। साथ ही प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण की जो स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, हम उसे सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पर्यावरण दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को अधिक से अधिक साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे और साथ ही ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाएंगे जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो। पर्यावरण दिवस पर यह संकल्प लें कि हम स्वयं तो जागरूक बनेंगे ही, साथ ही आम लोगों को भी जागरूक बनाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और आसपास के क्षेत्रों को साफ रखेंगे। इन सभी संकल्पों के साथ यदि हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे तो हमारी धरती एक सुंदर ग्रह बने रहने में सफल हो पाएगी।
1: कार्यक्रम आबोहवा में अभी आप सुन रहे थे हिमांशु नामक की लघु वार्ता विश्व पर्यावरण दिवस।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम विवरण में प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य आकर्षण। सुबह 8:15 पर श्रोता सुनेंगे सजीव फोनी प्रोग्राम वन संरक्षण। कार्यक्रम में आज का विषय है कीट पतंगों का अनूठा संसार। हमारे विषय विशेषज्ञ होंगे उप वन संरक्षक श्री अनुराग जी भटनागर और डॉक्टर हर्षित शर्मा। श्रोता इस विषय से संबंधित जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 07442941142। रात्रि 11:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से श्रोता सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत कड़ी संख्या 5। आज की थीम है महिला सशक्तिकरण। सूचना मनोरंजन और जानकारी के कार्यक्रम नमस्कार कोटा का होगा आगाज 7:00 और उसके तत्पश्चात आप सुनेंगे गांधी चर्चा कड़ी संख्या 27, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन। सुबह 9:30 का समय होगा बहनों के कार्यक्रम महिला जगत का। कार्यक्रम में आज डॉक्टर रेखा जैन से जानिए योग और सौंदर्य के बारे में। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुहाना सफर आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। आज का ये कार्यक्रम पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर पर केंद्रित होगा और फिल्म संगीत श्रोता सुन सकेंगे सुबह 9:10 पर और शाम 6:05 पर। दोपहर 12:00 श्रोता सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 13वीं कड़ी। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:00।

संध्या 7 बजे किसान भाई सुनेंगे सजीव फोन इन प्रोग्राम चौपाल। विषय होगा बागवानी और सब्जी वाली फसलों में कीट नियंत्रण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कैलाश चंद अहीर। किसान भाई इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे विशेषज्ञ से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें डायल करने होंगे हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 2941142। कोटा का एसटीडी कोड है 0744। आज शाम 7:30 पर श्रोता सुनेंगे परिचर्चा। विषय होगा पर्यावरण संतुलन के लिए मिलकर उठाए कदम। प्रतिभागी होंगे श्री ब्रजेश विजयवर्गीय, श्री अमित सिंह राठौर और श्री लेखराज शर्मा। और चित्रपट संगीत सुनेगा रात्रि 8 बजे। SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने श्रोताओं का ये पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हम हाजिर रहेंगे रात्रि 9 बजे। शेष प्रसारण समय पर विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण में ये थी एक झलक हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 102, 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार होंगे।

श्रोताओं सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन, स्नेह, अभिवादन आप सभी का कार्यक्रम नमस्कार कोटा में। सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, बस या फिर ट्रेन पकड़कर काम पर हो जाना, या पढ़ लिख कर हो अपना करियर बनाना, हमारी सांसों का हो आना जाना, जीवन को मिला जिससे बेशकीमती खजाना, पर्यावरण से जुड़ा है हमारा हर ताना बाना, कुदरत के इस वरदान को है मिलकर बचाना, प्रकृति के देने का सिलसिला आज भी है जारी, अब है हमारी बारी, पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखकर आइए करें हम सभी बेहतर कल की तैयारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं हाड़ौती अंचल की अपनी आवाज़ आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

मैं प्रकृति हूँ, नदियों में बसती हूँ, पहाड़ों में गूंजती हूँ, आसमां की सतरंगी काया में मैं हूँ, चिड़ियों की चहचहाहट में मैं हूँ, हिरणों की चाल में हूँ, झरनों की कलकल में, पेड़ों की शाखों का बल भी मैं हूँ, फूलों का रस भी हूँ मैं, तितलियों की सहेली हूँ मैं, समंदर की लहरों सी हूँ मैं, मचलती इठलाती बच्चों की मुस्कुराहट में भी मैं हूँ। आओ यही मुस्कान लेकर मेरी ओर लौट चलो तुम, हरियाली में खुशहाली का ध्येय धरो तुम, सदियों से धरा की सुंदरी हूँ मैं, कल में भी थी आज भी हूँ और कल में भी रहूंगी मैं। भारत की सनातन संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का भाव प्राचीन काल से ही जीवन का अभिन्न अंग रहा है। यहाँ प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि पूजनीय और जीवनदायिनी शक्ति के रूप में देखा गया है। सदियों से जल को जीवन का आधार मानकर नदियों, सरोवरों और कुओं का पूजन किया जाता रहा है तथा वरुण देवता की आराधना की परंपरा रही है। साथ ही पीपल, वटवृक्ष, नीम और तुलसी जैसे वृक्षों एवं पौधों की पूजा के माध्यम से उनके

संरक्षण का संदेश दिया जाता रहा है। हमने पृथ्वी को माता, आकाश को पिता और समस्त सृष्टि को अपना परिवार माना है और इस भावना ने ही भारत में पर्यावरण के प्रति श्रद्धा, संतुलन और संरक्षण की संस्कृति को सदियों तक जीवित रखा है। इस बात में दो राय नहीं कि पिछले कुछ सालों से मानव सभ्यता प्रगति की ओर बढ़ रही है। निरंतर नए नए प्रयोग, अंतरिक्ष की छलांग, शहरों में दौड़ती भागती जिंदगी और ऊंची ऊंची इमारतें, ये उदाहरण है दुनिया की प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होने की। लेकिन ये उन्नति किस कीमत पर, क्या हमने कभी ये सोचा है? दरअसल इस उन्नति की बहुत बड़ी कीमत मानव जाति चुका रही है। एक तरफ उन्नति के लिए हम धरती का दोहन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम बड़े बड़े मंचों पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अपनी धरती को हम किस तरह से बचाएं। हम ये जानते हैं कि धरती पर जीवन के लिए हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, पेड़ पौधे, भोजन, ये सभी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हमारी प्रकृति और पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखें। दुनिया भर में इसके लिए जागरूकता फैले, इसके लिए हमने पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया। इसे हमने हमारी मदर नेचर को धन्यवाद देने का दिन कहा, पर बावजूद इसके हम लगातार प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसका खामियाजा भी हम ही भुगत रहे हैं। कहीं बारिश की एक बूंद नहीं होती तो कहीं गांव के गांव बह जाते हैं। प्रकृति की इस नाराजगी को देखते हुए भी मानव समझ नहीं पा रहा। यूं तो प्रकृति हमें कई तरीकों से बताती है कि इंसानों के दुर्व्यवहार से वो कितनी दुखी है, लेकिन मानव है कि समझ नहीं पाता। वैश्विक मंच ने समय रहते इस संकेत को समझा और फिर पूरी दुनिया एक मंच पर आई और लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना निश्चित किया गया। पर्यावरण के प्रति हमारी अनदेखी से हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। रोज के इस्तेमाल में आने वाली पानी की बोतलें, कॉफी कप्स और पेपर नैपकिन्स ही काफी हैं हमारे गुनाहों को साबित करने के लिए। हम सिर्फ उत्पादों को देखते हैं, परंतु उसमें शामिल पेड़ों के अवशेषों को नहीं। कुदरत को बिना सोचे समझे नुकसान पहुंचाने वाले हम यदि अपनी आदतों में थोड़े बदलाव करें तो संसाधनों का सही उपयोग करके पर्यावरण को बचाने में हमारी भागीदारी निभा सकते हैं। किराने का सामान हो या फिर सब्जी की खरीदारी या फिर लाना हो घर का छोटा मोटा सामान, इन्हें लेने के लिए हम अक्सर घर से खाली हाथ निकल पड़ते हैं, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि प्लास्टिक बैग मिल जाएगा। जब प्लास्टिक का धरती माँ से बैर है तो फिर हमसे दोस्ती कैसी। इसलिए प्लास्टिक बैग को कहें ना और उपयोग में ले कपड़े का बैग। पुरानी वस्तुओं के पुनः उपयोग के तरीके सोचें। पेपर कप्स की जगह मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। निजी वाहनों के इस्तेमाल की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें और यदि नजदीकी दूरी हो तो इसके लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। इससे पर्यावरण का संरक्षण तो होगा ही, साथ ही सेहत भी सुधरेगी। श्रोताओं, पर्यावरण हम सभी का है। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ और ऊर्जा की जरूरत हम सभी को है। इनकी कमी से हमारा जीवन, हमारा परिवार प्रभावित हो रहा है। अपने पर्यावरण की परवाह करना, उस पर कम बोझ डालना और उसकी बेहतरी के लिए काम करना हमारी सभी की निजी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का मतलब महज पर्यावरण का उत्सव मनाना नहीं है, मतलब है इन संसाधनों को बनाए जिलाए रखने से, जैसे ये हमें मिले हैं
वैसे आने वाली कई कई वर्षों तक ये आने वाली पीढ़ियों को मिलते रहे।

इस प्रयास से है। केवल अपने लायक अपने उपयोग जितना ही उपभोग करें और फिर संसाधनों को सहेजना शुरू करें। पौधे लगाएं, उन्हें सहेजें, उन्हें वृक्ष रूप में पल्लवित होता देखें, उनका मान करें, वृक्ष सा सब्र रखें।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में

कार्यक्रम में आइए अब एक नज़र डालते हैं शहर की गतिविधियों पर और मौसम के हाल पर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त भागीदारी से जिले में विटामिन ए कार्यक्रम का 50वां चरण शुरू हो चुका है। ये विशेष अभियान 29 जून तक चलेगा। इसके तहत 9 माह से 5 साल तक के आयु के बच्चों को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर विटामिन ए की खुराक निःशुल्क पिलाई जा रही है। विटामिन ए की खुराक बच्चों को रतौंधी और अंधता जैसी आंखों की बीमारियों से बचाती है, साथ ही ये हड्डियों की मजबूती और शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। इससे खसरा, डायरिया और श्वसन संबंधी संक्रमण से होने वाली शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। और आइए जानते हैं मौसम का हाल। शहर का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में 5 से 7 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। वहीं कोटा जिले समेत आसपास के जिलों में मौसम साफ रहने के साथ ही हल्के बादल छाए रह सकते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार कोटा में आज बस इतना ही। कार्यक्रम में संयोजन रहा तेजरा मीणा का, प्रस्तुति राजेश महावर की। और अब दीजिए रीना को अनुमति। नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा कड़ी संख्या 27, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन।

श्रोताओं नमस्कार। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इससे विभिन्न प्रसंग आप सुन रहे हैं। आज का प्रसंग सफाई आंदोलन और अकाल कोष। समाज का एक भी अंग का निरुपयोगी रहना मुझे हमेशा अखरा है। जनता के दोष छिपाकर उसका बचाव करना अथवा दोष दूर किए बिना अधिकार प्राप्त करना मुझे हमेशा अरुचिकर लगा है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों पर लगाए जाने वाले एक आरोप का, जिसमें कुछ तथ्य था, इलाज करने का काम मैंने वहां के अपने निवास काल में ही सोच लिया था। हिंदुस्तानियों पर जब तब यह आरोप लगाया जाता था कि वे अपने घर बार साफ नहीं रखते और बहुत गंदे रहते हैं। इस आरोप को निशेष करने के लिए आरंभ में हिंदुस्तानियों के मुखिया माने जाने वाले लोगों के घरों में तो सुधार आरंभ हो ही चुके थे, पर घर घर घूमने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब डरबन में प्लेग के प्रकोप का डर पैदा हुआ। इसमें म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों का भी सहयोग और सम्मति थी। हमारी सहायता मिलने से उनका काम हल्का हो गया और हिंदुस्तानियों को कम कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि साधारणतः जब प्लेग आदि का उपद्रव होता है तब अधिकारी घबरा जाते हैं और उपायों की योजना में मर्यादा से आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग उनकी दृष्टि में खटकते हैं उन पर उनका दबाव असह्य हो जाता है। भारतीय समाज ने खुद ही सख्त उपायों से काम लेना शुरू कर दिया था, इसलिए वह इन सख्तियों से बच गया। मुझे कुछ कड़वे अनुभव भी हुए। मैंने देखा कि स्थानीय सरकार से अधिकारों की मांग करने में जितनी सरलता से मैं अपने समाज की सहायता कर पा सकता था, उतनी सरलता से लोगों से उनके

कर्तव्य का पालन कराने के काम में सहायता प्राप्त न कर सका। कुछ जगहों पर मेरा अपमान किया जाता, कुछ जगहों पर विनयपूर्वक उपेक्षा का परिचय दिया जाता। गंदगी साफ करने के लिए कष्ट उठाना उन्हें बहुत अखरता था। तब पैसा खर्च करने की तो बात ही क्या। लोगों से कुछ भी काम कराना हो तो धीरज रखना चाहिए। यह पाठ मैंने अच्छी तरह सीख लिया। सुधारक की गरज तो सुधारक की अपनी ही होती है। जिस समाज में वह सुधार करना चाहता है उससे तो उसे विरोध, तिरस्कार और प्राणों के संकट की भी आशा रखनी चाहिए। सुधारक जिसे सुधार मानता है, समाज उसे बिगाड़ क्यों न माने, अथवा बिगाड़ न माने तो भी उसके प्रति उदासीन क्यों न रहे। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में घर बार साफ रखने के महत्व को न्यूनाधिक मात्रा में स्वीकार कर लिया गया। अधिकारियों की दृष्टि में मेरी साख बढ़ी। वे समझ गए कि मेरा धंधा केवल शिकायतें करना या अधिकार मांगने का ही नहीं है, बल्कि शिकायतें करने या अधिकार मांगने में मैं जितना तत्पर हूँ उतना ही उत्साह और दृढ़ता भीतरी सुधारों के लिए भी मुझमें है। पर अभी समाज की वृत्ति को दूसरी एक दिशा में विकसित करना बाकी था। इन उपनिवेशवासी भारतीयों को भारतवर्ष के प्रति अपना धर्म भी अवसर आने पर समझना और पालन करना था। भारतवर्ष तो कंगाल है, लोग धन कमाने के लिए परदेश जाते हैं, उनकी कमाई का कुछ हिस्सा भारतवर्ष को उनकी आपत्ति के समय में मिलना चाहिए। सन 1897 में यहाँ अकाल पड़ा था और 1899 में दूसरा भारी अकाल पड़ा। इन दोनों अकालों के समय दक्षिण अफ्रीका से अच्छी मदद आई थी। पहले अकाल के समय जितनी रकम इकट्ठा हो सकी थी, दूसरे अकाल के मौके पर उससे कहीं अधिक रकम इकट्ठा हुई थी। इस चंदे में हमने अंग्रेजों से भी मदद मांगी थी और उनकी ओर से अच्छा उत्तर मिला था। गिरमिटिया हिंदुस्तानियों ने भी अपने हिस्से की रकम जमा कराई थी। इस प्रकार इन दो अकालों के समय जो प्रथा शुरू हुई वह अब तक कायम है। और हम देखते हैं कि जब भारतवर्ष में कोई सार्वजनिक संकट उपस्थित होता है, तब दक्षिण अफ्रीका की ओर से वहां बसने वाले भारतीय हमेशा अच्छी रकम भेजते हैं। सफाई आंदोलन और अकाल कोष, महात्मा गांधी द्वारा रचित सत्य के साथ मेरे प्रयोग से आज आपने ये संदर्भ सुना। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अब सुनिए महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा कड़ी संख्या 27, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन। वाचन स्वर राजेश महावर का था। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए सदाबहार नगमे सुहाना सफर में। श्रोताओं, आज का सुहाना सफर केंद्रित है दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर पर। आज सुहाना सफर में हम आपको वो चंद सदाबहार नगमे सुनवाएंगे जिन्हें सुमन कल्याणपुर ने अपनी आवाज दी और इन गीतों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। साथ ही बात करेंगे संगीत की दुनिया में उनके करियर की। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 फरवरी 1937 को सुमन हेमादी के रूप में हुआ था। वे 1954 से 1988 तक एक पार्श्व गायिका के रूप में सक्रिय रहीं। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली और ओडिया सहित कई भाषाओं में गीत गाए। ग्लैमर की चकाचौंध में कभी अपने सिद्धांतों से समझौता ना करने वाली सुमन कल्याणपुर का जीवन उनकी गायकी से कहीं आगे एक मिसाल है। आजादी से पहले जन्मी सुमन कल्याणपुर का फिल्म जगत में आना कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। रंगों और कैनवास से सजी उनकी दुनिया में संगीत का मोड़ अचानक तब आया जब कॉलेज के कार्यक्रम में गाते हुए उन्हें दिग्गज गायक तलत महमूद साहब ने सुना। तलत महमूद ने उनकी आवाज के जादू को पहचाना और फिर कड़ियां जुड़ती चली गई और उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुलते गए। सन 1954 में आई फिल्म मंगू से उनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई। फिल्म अंजाना का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत में आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं।

हिंदी फिल्मों के जिस दौर में सुमन कल्याणपुर ने कदम रखा वो लता मंगेशकर का दौर था। लता मंगेशकर ने अपनी कठिन साधना से फिल्म संगीत की जमीन को सींचा था। ऐसे समय में किसी नई आवाज के लिए अपनी अलग पहचान बनाना लगभग असंभव था, लेकिन उनकी आवाज का जादू जब चला तो वे संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। उनकी आवाज का ठहराव और रेंज काफी हद तक लता मंगेशकर के समकक्ष थी, और एक वक्त ऐसा भी आया कि मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की जोड़ी ने कई हिट गाने दिए। शंकर जय किशन, रोशन, मदन मोहन जैसे चोटी के संगीतकारों ने उनके हुनर का भरपूर इस्तेमाल किया। फिल्म सूरज का गीत सुनिए, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की है। हसरत जयपुरी के बोल हैं और ये धुन है शंकर जय किशन की।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आज सुबह 8:15 पर आप सुन सकेंगे सजीव फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण कार्यक्रम में। आज का विषय है कीट पतंगों का अनूठा संसार। हमारे विशेषज्ञ होंगे उप वन संरक्षक श्री अनुराग जी भटनागर और डॉक्टर हर्षित शर्मा। श्रोता, इस विषय से संबंधित जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर हैं 2941142, कोटा का STD कोड 0744। फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है सुहाना सफर, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर के गाए सदाबहार नगमे। सुमन कल्याणपुर का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सिनेमा जगत में ऊंचाई छूने के लिए अपनी जड़ों को छोड़ना जरूरी नहीं है। वे एक पारंपरिक और संभ्रांत परिवार

से थी। उस दौर में महिलाओं का गाना अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसे माहौल में भी उन्होंने अपनी कला को जीवित रखा और अपनी गायकी में अनुशासन का ख्याल रखा। इसी मर्यादा का नतीजा था कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी कोई भड़काऊ या द्विअर्थी गाने नहीं गाए। जो भी काम मिला वो उनकी अपनी शर्तों और शालीनता के दायरे में ही था। साथी फिल्म का ये गीत है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, नौशाद की धुन और मजरू सुल्तानपुरी के बोल।

सुमन कल्याणपुर की करियर की सबसे बड़ी चुनौती थी उनकी तुलना लगातार लता मंगेशकर से करना या उन्हें लता मंगेशकर के विकल्प के रूप में देखना। परंतु सुमन कल्याणपुर का व्यक्तित्व असाधारण था। उन्होंने अपनी इस तुलना को कभी भी अहंकार की लड़ाई नहीं बनने दिया और न ही कभी इस चीज को लेकर असंतोष व्यक्त किया। उनका मानना था कि उनका काम सिर्फ अपनी साधना को ईमानदारी से निभाना है। जब जब फूल खिले फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी की धुन, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की।

0: बड़ा ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्हें से कर बैठे
1: ना करके प्यार तुम्हें से कर बैठे।
2: श्रोताओं, आज सुबह 8:15 पर आप हमसे लाइव जुड़ सकेंगे फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण में। कार्यक्रम में आज का विषय है कीट पतंगों का अनूठा संसार। हमारे विशेषज्ञ होंगे उप वन संरक्षक श्री अनुराग जी भटनागर और डॉक्टर हर्षित शर्मा। श्रोता, इस विषय से संबंधित जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 07442941142। सदाबहार गीतों का यह कार्यक्रम है सुहाना सफर। सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी, मुकेश और हेमंत कुमार सहित कई प्रमुख गायकों के साथ काम किया। सन 1968 में बनी फिल्म ब्रह्मचारी के गीत आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, 1965 में आई फिल्म जब जब फूल खिले का गीत नाना करते प्यार, फिल्म राजकुमार का गीत तुमने पुकारा और हम चले आए, फिल्म दिल एक मंदिर का शीर्षक गीत, साथ ही फिल्म का गीत मेरा प्यार भी तू है, शगुन फिल्म का गीत पर्वतों के पेड़ों पर और सन 1974 में आई फिल्म रेशम की डोरी का गीत बहना ने भाई की कलाई पर इनके लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। फिल्म अप्रैल फूल का ये गीत है, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

सुमन कल्याणपुर को अपने समय की हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण युग की प्रसिद्ध गायिकाओं में गिना जाता है। उन्होंने कुल 857 हिंदी गाने गाए। उन्हें हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय गीत के लिए प्रतिष्ठित सुर श्रृंगार संसद पुरस्कार 1966 और 1970 में दो बार मिला। बीते दिन 31 मई की शाम को उम्र संबंधी समस्याओं के कारण उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुमन कल्याणपुर का संगीत का ये सफर इस बात की मिसाल है कि भारी प्रतिस्पर्धा वाली फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई कलाकार बिना किसी गॉडफादर और बिना किसी विवाद के सिर्फ अपने हुनर और सादगी के दम पर दशकों तक राज कर सकता है। सुहाना सफर की ये आखिरी प्रस्तुति है। फिल्म है मेरी सूरत तेरी आंखें। इस गीत में आवाजें सुमन कल्याणपुर और मुकेश की हैं। शैलेंद्र ने ये गीत लिखा है, एस डी बर्मन की धुन है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुहाना सफर। आज का ये कार्यक्रम पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर पर केंद्रित था। FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से श्रोता सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। 4 से 8

0: जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं

0: ही के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है। किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम

0: किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है। सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी।

0: FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा।
2: राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरक, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, चिंकारा, चीतल एवं नील गाय को गोद ले सकते हैं। मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर, नयापुरा, कोटा।
0: क्या जाने किस और ग्रह पर जीवन है या नहीं, लेकिन जैसा हमारा ग्रह है वैसा कोई और हो ही नहीं सकता। ना ऐसी हवा, ना माटी, ना सागर, ना फल फूल, वन उपवन, ना नदी, ना पहाड़, ना पशु पक्षी और ना ही इस धरा पर मिलने वाले कीट पतंगे। नमस्कार, कार्यक्रम वन संरक्षण में हमारे विशेषज्ञों के साथ हम हाजिर हैं जीव जगत के उस महत्वपूर्ण जैविक घटक के बारे में बात करने के लिए जो दिखते तो छोटे से हैं लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में उनका काम बेहद आवश्यक और अनोखा होता है, कीट पतंगों का अनूठा संसार। श्रोताओं, यही कार्यक्रम में हमारा आज का विषय, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे आज के विशेषज्ञ उप वन संरक्षक श्री अनुराग जी भटनागर और साथ में है डॉक्टर हर्षित शर्मा। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: थैंक यू मैम।
4: थैंक यू मैम
0: जी। अनुराग जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि हम कीट पतंगे किन्हें कहते हैं और एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझे कि ये कीट पतंगे हैं?
3: देखिए, कीट पतंगे हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और जितने भी हम सोसाइटी में रहते हैं हम सब लोगों को आइडिया है कि क्या होता है, लेकिन टेक्निकली यदि देखें तो ये समझ में आता है कि एक जो कीट पतंगा जिसको हम कह रहे हैं, इंसेक्ट कह रहे हैं, उसके एक तो 6 उसके पैर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 6 उसके वो होंगे, उसका स्केलेटन नहीं होगा यानी कि उसके अंदर हड्डियां नहीं होती हैं, और उसका एक एक्सोस्केलेटन स्केलेटन होता है यानी कि बाहर का एक बाहरी एक उसकी बॉडी होती है जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक हार्ड शेल होती है उसको, जो प्रोटेक्शन देती है थोड़ी सी, और ये इनवर्टिब्रेट होते हैं यानी कि इनकी मेन बात यह है कि इनकी बैकबोन नहीं होती है, जैसे हमारे हड्डियां होती है ना उस तरह की इनकी बैकबोन वगैरह नहीं होती, हड्डियां नहीं होती है, तो उसको हम मानते हैं कि भाई ये हमारा एक इंसेक्ट है। जैसे उसके अंदर बीज आ गई हैं, उसमें हमारे स्पाइडर्स आ गए हैं, चींटियां आ गई हैं, ये सब उसके अंदर आते हैं,
0: तितलियां भी हैं,
3: तितलियां भी इसके अंदर है, बहुत

0: बहुत बड़ा ग्रुप है, मतलब ये
1: जी
0: ह्यूमन बीइंग तो हम खाली मानते हैं, 1 करोड़ तरह के जीव
1: जी
0: रहते हैं उसमें,
1: जी
0: इनका रोल बहुत बड़ा है, हम तो उसमें 1 करोड़ में से एक ही है खाली।
1: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है कीट पतंगों का अनूठा संसार, और खासकर आज हम बात करेंगे दीमक, चींटियों और मधुमक्खी की। यदि इस विषय से संबंधित आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 07442941142। हर्षित जी, आपकी तरफ रुख करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि दीमक का सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या ये भी घर बनाते हैं?
2: देखिए, अगर दीमक की हम बात करें तो आमतौर पर जो लोग हैं इसको एक लकड़ी में लगने वाले कीड़े के रूप में जानते हैं, तो लोग बाग इसको एक तरह से मतलब बुरा कीड़ा मानते हैं, लेकिन अगर हम जंगल की दृष्टिकोण से इसको देखें तो ये जो है इसकी खास बात यह है, ये जो मरी हुई लकड़ी रहती है उसमें यह लगता है, अपना घर बनाता है, उसको यह खाता है, और जो उसका सेलुलर है जो उसको ये डाइजेस्ट करता है उसके थ्रू भी, मतलब ये अपने जो है मिट्टी में कार्बन साइकिल के रूप में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको रिसाइकिल करता है, और ये जो है अपना मिट्टी का घोंसला बनाते हैं, जितना ये जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा ही जमीन के नीचे होता है। और पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इंसेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर जो है दूसरे इंसेक्ट्स हैं, मैमल्स हैं, वो इसके ऊपर फीड करते हैं
1: जी।
2: और इसकी कॉलोनी में 4 तरह के ये जो हैं वर्कर्स होते हैं, तो सबका अलग अलग इम्पोर्टेंट होता है अपने जो इसका जो नेस्ट रहता है, इस तरीके से हम दीमक को देखते हैं
1: जी। अभी आपने कहा कि ये जो सड़ी गली लकड़ी होती है इन्हें खाते, तो क्या इनके जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो कुछ ऐसा खास होता है कि ये लकड़ियों को पचा सकता है?
2: बिल्कुल, ये सेलुलोज को पचा सकता है, सेलुलोज को ह्यूमन बींग नहीं पचा सकता, तो इनका डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो खास तरीके से होता है
1: जी। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी तरह की प्रजातियां दीमक की पाई जाती हैं?
0: देखिए, दीमक की प्रजातियां तो 2700 तरह की हैं, पर हम मेन बात यह है कि हमारे पहले समझ में आना चाहिए कि दीमक होती क्या है
1: जी।
0: एक दीमक जब आप देखें, हम सभी ने देखा होगा कि घर में हमारे दीमक होती हैं, और अभी जैसे डॉक्टर हर्षित जी ने बताया कि ये जो एनिमल है, ये जो इंसेक्ट है, ये हमारे फॉरेस्ट में बहुत अच्छा होता है। हम ये कहते हैं फॉरेस्ट के अंदर कि जितने ज्यादा दीमक के माउंट्स हैं उतने अच्छा फॉरेस्ट है। आप जिम कॉर्बेट में जाइए, आपको हर 50 मीटर पे 20 मीटर पे एक बांबी मिलेगी और लगभग 1.5 से 2 मीटर ऊंची भी मिल जाएगी वहां पे, तो ये तो बड़ा कंट्राडिक्शन हो गया। तो मैं बताना चाहूंगा, इट डज नॉट मीन कि मैं घर में अपने दीमक पालने लगूंगा, घर में आएगी तो डेफिनेटली हमें उसको हटाना है, वहां पे नहीं रखना है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये जितने न्यूट्रिएंट्स है ना उन सबको रिसाइकिल करता है। आप देखिए, हम अपने खेतों में खेती कर रहे हैं, हम अपने गार्डन्स के अंदर पौधे लगा रहे हैं, उसमें हम कहते हैं कि हमने वहां पे लौकी उगाई, हमने वहां पे फल उगाए, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे, वो न्यूट्रिएंट्स आ कहां से रहे हैं? 200 सालों से 500 सालों से हम उसी खेत के ऊपर खेती कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मेरे फादर भी करते थे, उनके दादा भी करते थे, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स आ कहां से रहे हैं भाई? खत्म हो जाएगा ना, आप लगातार निकालते रहेंगे तो एक टाइम आएगा खत्म हो जाएगा, ये खत्म कभी नहीं होता, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी को दीमक बढ़ा रही है। दीमक है, चींटियां हैं, ये लोग इंसेक्ट जितने हैं ये अपना रेगुलर काम, और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये 24/7 काम करते हैं, दे डू नॉट स्लीप, वो सोते नहीं है,
1: सोते नहीं है,
0: रात भर काम करते हैं, वो ब्लाइंड होते हैं, जितने वर्कर्स हैं दे आर ब्लाइंड, उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है। और देखिए, जब वो बच्चे एक दिन में जो इसकी जो क्वीन होती है, वहां पे अंदर पूरा पूरा सिस्टम है, अंदर पूरा सिटी चल रहा है, एक शहर है वहां पूरा, वहां पे एक रॉयल चैम्बर है, उसके अंदर एक तो क्वीन रहती है, एक किंग रहता है। क्वीन का एक ही काम है कि उसको रोज अंडे देने हैं, और कितने अंडे देती है? 36,000 से 40,000 अंडे पर डे देती है, पर डे। और फिर जो वहां पे वर्कर्स हैं उनका काम है कि उन अंडों को उठा के वो अलग चैम्बर्स में नर्सरी में लेके जाएंगे, उनका वो देखरेख करेंगे। एक वहां पे वर्कर्स हैं जो क्या करते हैं, वहां पे गार्डन जो फंगस गार्डन्स होते हैं, यानी खेती करते हैं वो, क्योंकि उनको खाना भी तो चाहिए ना, खाना बाहर से भी लाते हैं लेकिन वो खाना उगाते भी हैं अपना फंगस गार्डन से अंदर, उनको मेंटेन करते हैं। और एक अलग है कास्ट जो है सोल्जर्स
1: जी,
0: वो बाउंड्री पे रहते हैं, क्योंकि जो एंट्स होती है ना
1: प्रोटेक्ट
0: करती है, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, एंट्स की और जो ये अपने जो टर्माइट्स हैं दीमक है, इनकी लड़ाई है, ये दोनों दुश्मन एक दूसरे,
1: हाँ,
0: तो वो चींटी जब अंदर आएगी तो ये आके अटैक करेगा उसको। तो ये 4 तरह की कास्ट होगी, उसमें एक क्वीन होगी, एक किंग हो गया, एक वर्कर हो गया और एक सोल्जर हो गया। सब मेहनत करके अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई वहां पे आदमी की तरह नहीं कि अब मुझे बड़ा होकर कलेक्टर बनना है, मुझे बड़ा होकर टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, उनका सबका फिक्स है कि तुझे भैया सोल्जर बनना है, तुझे वर्कर बनना है, ये क्वीन है, ये राजा। देखिए, क्वीन अंडे दे रही है, बाकी सारे भी वहां पे फीमेल्स ही हैं, लेकिन कोई भी अंडे नहीं दे सकती, उनकी ओवरी नहीं है, दैट इज अ डिफरेंस। ऐसे ही आपको बीज के बारे में बताएंगे, वो अंडे देने की क्षमता जो है ओवरी जिसके पास है वो सिर्फ फीमेल के पास है, फीमेल कौन सी, जो क्वीन है। और क्वीन का बाकी सबको आपने देखा होगा चींटी जैसी होती है छोटी सी, लेकिन जो क्वीन है

0: उसकी उसका साइज कितना बड़ा हो सकता है, जितनी हमारी उंगली है, और उंगली से भी बड़ा यानी कि जितना मेरा हाथ है, लगभग इतनी बड़ी वो हो जाती है, साइज बढ़ता रहता है, लेकिन उसके पैर नहीं बढ़ते, पैर उसके वो छोटे छोटे रह जाते हैं। अब देखो वो ऐसा हो गया कि एक ट्रेन है और ट्रेन के नीचे आपने स्कूटर के पहिए लगा दिए तो वो चल नहीं सकती अब। तो अब क्या होता है, कहीं पे आग लग गई और वहां पे गर्मी हो गया, पानी आ गया, बरसात आ गई, उसके माउंट के अंदर पानी भर गया। अब इसको कैसे बचाएंगे, वो जो उसके बाकी जो वर्कर्स हैं उस फीमेल को क्वीन को उठा के फटाफट फटाफट नीचे लेके जाएंगे या नीचे से उसको ऊपर लेके आएंगे। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, वो खाना भी खुद नहीं खा सकती, उसको लाके कोई खाना खिलाता है, और वो एक्सक्रेटा जो उसका पूप निकलता है वो भी कोई दूसरा सफाई करता है, वो तो सिर्फ लेटे रहती है और रोज के 40,000 अंडे देती रहती है। देखिए कितना कितना सिस्टमैटिक है, दे आर वेरी यू सोशल एनिमल। हम तो सोशल एनिमल्स हैं लेकिन ये यू सोशल यानी कि मोर सोशल, एक नॉर्मल वैसे भी जो ज्यादा सोशल होते हैं दीज आर द एनिमल्स।
1: जैसा कि अभी आपने कहा कि श्रमिक भी होते हैं, सोल्जर्स भी होते हैं, क्वीन भी है और नर भी है, तो अभी जो इनके जो वर्क्स होते हैं कि ये प्रोटेक्ट करेंगे और ये श्रमिक हैं, ये घर बनाएंगे, ये कैसे डिसाइड होता है इनमें?
0: ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पावर लाइज विद क्वीन। जैसे बीज के अंदर भी होता है और इसके अंदर भी होता है।
1: एक कॉलर है
0: जी, ले लीजिए।
1: हेलो,
2: नमस्ते पवन जी।
1: नमस्कार,
2: कीट पतंगा के बारे में पूछना है
1: जी, क्या प्रश्न करना चाहते हैं?
2: कीट पतंगा में तो मक्खी भी आता है, बिरना भी आता है
1: जी,
2: वैसे पूछना है।
0: किसके
1: किसके बारे में जानना चाहते हैं?
2: और बिरना भी आता है।
1: आपकी आवाज स्पष्ट तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आप पूछेंगे प्रश्न? हेलो,
2: पतंगा का अनूठा संसार है ना?
1: जी जी बिल्कुल
2: जी, तो उसमें मधुमक्खी भी आती है।
1: हाँ हाँ, मधुमक्खी भी है,
2: बिरना भी आता है। जी, जो कुछ भगवान फायदे के लिए पहुँचा है, बनाए हैं कुछ तकलीफ देने के लिए, यही पूछना चाहता हूँ।
0: देखिए देखिए, जितने भी इंसेक्ट्स बनाए हैं वो सब हमें फायदा देने के लिए ही बनाए हैं। भगवान ने जो भी चीज बनाई है, अल्लाह ने जो भी चीज बनाई है ना, वो कोई भी नुकसान देने के लिए तो बनाई नहीं है। ये हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारी सोच है कि हमें वो नुकसान पहुंचा रही है। देखिए आप बीज की बात कर रहे हैं, मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, हमें उसका ही तो लगता है काट लेगी हमारे, लेकिन कोई उससे पूछेगा आपसे शहद क्यों ले रहे हो, वो शहद क्या आपके लिए बना रही है? वो शायद आपके लिए यानी कि ह्यूमन के लिए नहीं बना रही है, वो अपने बच्चों के लिए बना रही है। वो अपने खाने अपना उसको जो खाना है वो इकट्ठा कर रही है कि जब कभी ऐसा सर्दी का मौसम होगा, गर्मी का, हम बाहर नहीं जा पाएंगे तो हम ये पॉलेंस और ये खा के अपना काम चलाएंगे, अपने बच्चों को पालेंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं ह्यूमन बींग कि भैया ले लो इससे सामान। टर्माइट्स हैं, टर्माइट्स को एक काम दिया हुआ है कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स को जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसमें से निकाल के मिट्टी में मिलाएंगे, फर्टिलिटी बढ़ाएंगे। लेकिन वो हमारे यदि थोड़ा सा आके हमारा फर्नीचर खराब कर देता है तो हमें लगता है दुनिया का सबसे खराब चीज यही है। भाई हमें थोड़ा अपना प्रोटेक्शन रखना चाहिए। ये जो पृथ्वी है, देखिए पृथ्वी पे 1 करोड़ तरह के जीव रहते हैं, इस पे सबके इक्वल राइट्स हैं। इस पे मैं ये नहीं कह सकता मैं ह्यूमन बीइंग हूं, सारे राइट्स मेरे हैं, बाकी सबको हटाओ। हाँ ठीक है, आपके यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक पर्टिकुलर एरिया से उनको हटा सकते हो, बट इट डज नॉट मीन कि हम कहें कि भाई टर्माइट ही बेकार है। टर्माइट तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और एक चीज और बताऊं मैं टर्माइट्स के लिए, टर्माइट्स यदि पूरी पृथ्वी टर्माइट को आप इकट्ठा कर लें और एक तराजू में एक तरफ रख लें और एक तरफ सारे ह्यूमन बीइंग को इकट्ठा कर लें, एक तरफ तराजू में उनको रख लें, तो टर्माइट्स का वजन ज्यादा है। हमारे ह्यूमन बींग सारे 900 करोड़ आदमियों को आप बिठा लेंगे, उनसे ज्यादा वजन है इनका, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और यदि ना हो ना तो एक चीज और बताऊं मैं आपको
1: जी।
0: पूरी पृथ्वी पे इतना कचरा हो जाएगा, कचरा से मेरा मतलब जो पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना, दो बहुत तरह की चीजें गिरती हैं, फीके से हैं, और जो सब कचरा है वो 3 मीटर ऊंचा हो जाएगा, आप रह नहीं पाएंगे, आप जब इन पे इस आपका सर्वाइवल नहीं रह पाएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, जितने इंसेक्ट्स हैं ये उन सबको खाते हैं और उनको कन्वर्ट कर करके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते रहते हैं, साइज छोटा करते रहते हैं।
1: एक प्रश्न मैंने अभी आपसे किया था कि ये किस तरह से अपने काम को डिवाइड करते हैं?
0: ये देखिए वहां मैं बता रहा हूँ, बचपन से जब उनका जन्म होता है तब जो फीमेल है, जो मदर है, उसको ये पावर है कि इसको मैं वर्कर में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे सोल्जर बनाना है। और एक तीसरा जो होता है, जैसे आप बीज की बात करें, बीज के अंदर क्या होता है कि मदर जो होती है, यदि वो उसके पास 2 तरह के एग्स हैं, एक तो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं और एक अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, तो जो फर्टिलाइज्ड एग यदि हैं तब तो बनेगी फीमेल और उसका काम होगा वर्कर वाला। यदि वो है अनफर्टिलाइज्ड एग्स, अनफर्टिलाइज्ड एग्स भी होते हैं ना जैसे, तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स यदि डेवलप होगा तो वो बनेगा ड्रोन यानी कि मेल बनेगा वो। तो इनका काम सारा, और यदि उसको क्वीन बनना है, क्वीन बनने के लिए वहां पे रॉयल जेली यूज करते हैं, वो बीज के अंदर रॉयल जेली यूज करते हैं, वही रॉयल जेली जो खाएगा उसको, वही जो है ओवरी

0: डेवलप होगी उसकी। बाकी 20 सारी फीमेल है। देखिए 20 की यदि बात करें तो पूरा पूरा जो उनका स्ट्रक्चर है सारी सारी फीमेल्स ही है, लेकिन ओवरी किसी के पास नहीं है, ओवरी सिर्फ क्वीन के पास होती है वहां पे।
1: हर्षी जी, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी कीट पतंगे पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो उम्र होती है वो रानी दीमक्खी होती है।
2: जी जी, रानी जो मधुमक्खी होती है इसकी जो एज होती है वो लगभग 2 से 5 साल होती है। और इसके अलावा हम बात करें जो श्रमिक होते हैं इनमें सोल्जर्स, इनकी महीनों में एज होती है, यही सबसे ज्यादा लाइफ जीती है, इसीलिए इसको रानी मधुमक्खी कहते हैं। और जो है एग्स देने का काम ये करती है, इसलिए इसको रानी मधुमक्खी कहा जाता है।
1: अनुराग जी, अभी आपने इनके घरों की बात करी, ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा है कि इतने सुंदर तरीके से ये घर बनाते, बहुत अच्छे वास्तुकार होते हैं कि बाहर का टेम्परेचर चाहे जो हो लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर होता है इनके घरों का वो बिल्कुल समान होता है। और एयर कंडीशनिंग की बात करें तो वो भी बेहद वातानुकूलित होती है। ऐसा किस तरह से मतलब ये निर्माण करते हैं और इनके घर को हम क्या कहकर पुकारते हैं?
0: इनको टर्मिटोरियम बोलते हैं
1: जी,
0: टर्मिटेरिया भी बोलते हैं। ये देखिए, आपने बहुत अच्छी जो आपका ऑब्जर्वेशन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है कि इसके ऊपर तो आज साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। आज हमारे एसी सिस्टम जो हम लगा रहे हैं और अरब कंट्रीज के अंदर काफी इस पे वर्क हुआ है कि किस तरह से इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ वैसा ही हम अपना घर बनाए जिससे हमें एसी ना लगाना पड़े और ठंडा उतना ही रहे। तो ये क्या करते हैं, नीचे की तरफ होज छोड़ते हैं, उसमें से हॉट ठंडी हवा वहां से आती रहती है, हॉट एयर ऊपर से निकलती रहती है, ठंडी नीचे से आती रहती है। और नीचे बहुत सारी टनल्स बनाई हुई इन्होंने। आप कभी कोई अबंडेंट हो जो लाइफ है उसे तो हमें नहीं तोड़ना चाहिए, और वैसे तो अबंडेंट को भी नहीं तोड़ना चाहिए, पर कभी उस पर रिसर्च के पॉइंट ऑफ से आप खोल के हम उसको देखते हैं ना, तो अंदर एक के नीचे एक के नीचे एक पूरी सारी टनल्स बनी हुई है और सारा अंदर पूरा एक सिटी बसा हुआ है। आप देखिए कितने ये ऑर्गेनाइज्ड है, चाहे एंट्स हो चाहे टर्माइट्स हो, कितने ऑर्गेनाइज्ड है, कितने सिस्टमैटिक वे में, ब्लाइंड है, दिखता नहीं है, फेरोमोन्स छोड़ते हैं। फेरोमोन्स से हम आज हमारे पास आंखें भी हैं, दिमाग भी है, और देखिए ट्रैफिक का हमारा क्या हाल हुआ पड़ा है, हम एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं। वो कभी टक्कर नहीं मारेंगे एक दूसरे से। आप चींटियों को देखा होगा आपने, चींटियां चलती हैं, एक दूसरे को मिलती है, हमें लगता है क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा उनको, लेकिन वो क्या है, फेरोमोन से पूरा मैसेज ले लेती हैं, व्हाट वी हैव टू डू, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और ये एसी वाला, इसके ऊपर तो साइंटिस्ट आज की तारीख में वर्क कर रहे हैं और कई बिल्डिंग्स ऐसी बन रही हैं आज की तारीख में जिसमें हमें एसी नहीं लगाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर हम ऐसा बनाएंगे कि एयर अपने आप अंदर से नीचे ठंडी एयर आती है और बाहर वो हॉट होकर निकल जाती है, रूटीन में चलता रहता है।
3: उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा।
4: राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरक, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, चिंकारा, चीतल एवं नील गाय को गोद ले सकते हैं। मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर, नयापुरा, कोटा।
1: सजीव फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है कीट पतंगों का अनूठा संसार। जानकारी दे रहे हैं अनुराग जी भटनागर और डॉक्टर हर्षित शर्मा। डॉक्टर हर्षित, आपसे जानना चाहेंगे, फूड चेन की हम बात करते हैं तो फूड चेन में इनकी क्या भूमिका है और क्या दीमक किसी दूसरे जीव का भोजन बन सकते हैं या होते हैं?
2: बिल्कुल, फूड चेन में हम टर्माइट्स की बात करें, बीस की बात करें तो इनका अहम रोल है। दीमक की हम बात करें तो दीमक जो है, दीमक के ऊपर कई सारी जो बर्ड्स हैं वो फीड करती हैं, मैमल्स हो गया, स्लोथ बियर सबसे ज़्यादा इसको खाता है, और मधुमक्खी का जो शहद है उसके ऊपर भी स्लोथ बियर है वो फीड करता है इंसेक्ट के ऊपर, मतलब अदर इंसेक्ट भी इनको खाते हैं
1: जी।
2: तो और बीज की हम बात करें, बीज जो है इनका इम्पोर्टेंस है अपने इकोसिस्टम में। अगर जो हम फूड के रूप में जो खाते हैं, हमारी जो एक तिहाई हम जो वेजिटेबल्स हैं या फसल्स की हम बात करें, क्रॉप से, उनका पोलिनेशन बीज के द्वारा होता है
1: जी।
2: तो इस तरीके से ये हमारे इसमें इकोसिस्टम में बहुत अहम, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये नहीं हो बीज तो ह्यूमन की जो लाइफ है वो 3 से 4 साल बाद खत्म हो जाएगी।
1: हेलो हेलो हेलो,
5: नमस्कार
1: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
5: अर्जुन दान चरण बोल रहा हूँ, कर्मावास बरोदरा से
1: जी।

0: निकी जी आप
1: तो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि दीमक का प्रकोप ज्यादातर सूखी लकड़ी पर होता है
0: जी,
1: जबकि मैं तो देखता हूँ नीम के जीवित पेड़ों पर भी, जो कड़वा पेड़ है उस पर भी दीमक चढ़ी हुई है।
2: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए दीमक को क्या होता है कि जहां पे भी यदि उसको कोई वीक एरिया मिलेगा, जैसे कोई बीमारी, किसी नीम के पेड़ की आप बात कर रहे हैं, यदि सपोज उसको इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, देन दे विल गेट द मैसेज, मतलब उसको दीमक को ये आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे कोई डिजीज इस ट्री को

0: करके वो उसके अंदर अपना पूरा खाना जो भी उसको खाना है जैसे वो उसको खा जाएगी उसका मतलब। लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, वो ट्री जो है वीक होता है जनरली, जो इस पर स्टडी किया गया है उसमें वीक ट्रीज के ऊपर भी अटैक करती है। वैसे जनरली डेड ट्रीज पे रहती है, लेकिन 100% ऐसा नहीं कि 100% डेड भी जाएगी। यदि कोई ट्री इन्फेक्टेड है, कोई डिजीज हो गया है, किसी तरह की बीमारी उसको हो रही है और वो कमजोर हो गया है, तो उस पर डेफिनेटली वो अटैक करेगी और नुकसान पहुंचाएगी। नहीं ये तो आप मानिए, जहाँ पे यदि ये क्या कहते हैं टर्माइट ज्यादा है तो वो तो नीचे की मिट्टी को उर्वरक बनाती है, वो उसका एरिएशन बढ़ा देती है। नीचे बहुत सारी टनल्स जब खोदेगी वो और जितने भी वहां पे पत्ते पड़े हुए उनको खाएगी, तो उसके न्यूट्रिएंट्स, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट है, कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, उन सब चीजों को मिट्टी में मिला रही है, वो तो वहां की फर्टिलिटी बढ़ा रही है। हम क्या देखिए, हमारा बहुत छोटा सा विजन होता है, हम सोचते हैं हमने एक पौधा लगाया यार इसको बचाना, वो हजारों लाखों पौधों के लिए काम कर रही है वो।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो हमें इस पे ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। हाँ ये बात अलग है, आपकी खेती यदि आप कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ अनाज बो रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना ट्रीटमेंट छोटा मोटा कर सकते हैं। लेकिन हम जंगल की यदि बात करें, जंगल के अंदर आप वैसी प्रकृति के अंदर कोई भी चीज देखिए गलत नहीं होती है। यदि हमें ऐसा लगे कि यार ये टाइगर है,
1: ये तो पूरा बात है, भगवान जो कुछ बनाया
0: जी बनाया, बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये तो समझने की बात नहीं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी जी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए,
1: धन्यवाद जी, आपका
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, कुछ लोग दीमक और चींटी को एक ही समझते हैं, तो इनमें अंतर क्या है मुख्यतः?
0: इसमें बहुत बड़ा अंतर है, दोनों ही अलग ग्रुप है, ये अलग मतलब जिसे कहेंगे ना कि ये अलग जाति के हैं और ये अलग जाति। यदि हम टर्माइट की बात करें तो कॉकरोच फैमिली से आती है, कॉकरोच और टर्माइट एक ग्रुप में आते हैं। हाँ इनके एंसेस्टर्स आप जाके देखेंगे तो दोनों के एंसेस्टर्स एक थे। और यदि हम वैसे देखेंगे तो आप देखें टर्माइट जब देखोगे तो उसकी वेस्ट यानी कि कमर मोटी होगी, वो बीच में से बिल्कुल एक जैसी होगी, और जब आप चींटी को देखेंगे तो उसकी कमर बिल्कुल पतली सी होगी, एक धागे जैसी होगी, तो ये हम मेन उसमें देख सकते हैं। दूसरा जो उसका एंटीना होता है, तो जब हम देखेंगे कि दोनों के पास रख के देखेंगे तो इसका जो एंटीना होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा टर्माइट का, और उसका जब देखेंगे एंड का तो वो थोड़ा सा टर्न लिया हुआ होगा। ऐसी पंखों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इनके पंख भी आते हैं, इनका मीटिंग पीरियड के अंदर पंख आते हैं और ये उड़ उड़ के बाहर जाते हैं, और वहां पे मेल फीमेल का मीटिंग होता है। और जैसे चींटी की बात करें तो लाइफ में, या मधुमक्खी की बात करें, लाइफ में एक बार ही मीटिंग करती है, मीटिंग करने के बाद जिसके उसके स्पर्म्स होते हैं वो अपने पास रख लेती है उसको, और उनसे ही वो फिर एग को फर्टिलाइज करती रहती है रेगुलर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि उसको मेल बनाना है तो वो अनफर्टिलाइज एग्स को बाहर निकालेगी, और यदि उसको फीमेल ही बनानी है सारी तो वो अनफर्टिलाइज को निकालेंगे। और जैसे अभी आप कह रहे थे ना, दुनिया का सबसे लंबी उम्र वाला जो इंसेक्ट है वो टर्माइट ही है। टर्माइट की क्वीन जो है ना, उसकी एज 20 से 50 साल तक हो सकती है, बाकी तो सब 1 से 1.5 साल में मर जाएंगी, पर 50 साल किसको कहते हैं, एक छोटा सा इंसेक्ट आप देखिए, और उसकी उम्र कितनी ज्यादा हो सकती है। और दुनिया का कोई बड़ा ऐसा इंसेक्ट नहीं है जिसकी उम्र इतनी हो। एक दूसरा होता है सिकाडा, सिकाडा भी एक झिंगर की तरह का एक वो होता है, कभी आप जंगल चलेंगे तो वो जो आवाज आते रहते हैं जिंग जिंग, वो सिकाडा है बेसिकली। और उसका क्या होता है, उसका एक लाइफ जो सिस्टम चलता है वो 17 साल तक होता है वो, यानी कि वो ब्रीड करेगा, वो फीमेल को बुला रहा है और मेल फीमेल को दोनों को अटैक कर रहे हैं, वो चींची चींची जो कर रहे हैं, उनका मेटिंग होता है, उसके जब वो अंडे देती है, अंडे उसके देने के बाद वो मर जाते हैं, बस उनका इतना ही रोल है। उसके बाद वो अंडे वहां पे जो पत्तों पे गिरे हैं वहां से वो जमीन पे नीचे गिरते हैं अंडे, वहां से प्यूपा बनता है और उसके बाद वो रूट्स में चले जाते हैं। अब वो वहां 17 साल तक रहते हैं, 13 से 17 साल तक वो जमीन के नीचे रहते हैं, और 17 साल बाद फिर वो बाहर निकलते हैं और फिर ये आवाज करेंगे। ये रोटेशन चल रहा है, हर एक का नंबर अलग अलग आ रहा है।
2: चींटियों की बात चली तो मुख्यतः हमारे आसपास दो तरह की हम चींटियां देखते हैं, तो रेड होती है और एक ब्लैक होती है, तो सिर्फ इनमें क्या कलर का ही डिफरेंस है या काम में भी इनका है कुछ अंतर?
0: इसमें बहुत तरह की चींटियां होती है, आपने दो तरह की देखी है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपके घर में 10 तरह की चींटियां मिल जाएंगी, क्योंकि हजारों तरह की चींटियां होती है। पर जैसे आप कह रहे हैं जो रेड वाली होती है उस पर थोड़ा सा वेनम होता है, वो बाइट कर सकती है, जो ब्लैक वाली होती है वो जनरली बाइट नहीं करती है नॉर्मल वे में। एक जो मकोड़ा होता है थोड़ा सा बड़ा होता है
2: जी,
0: है ना, गॉडजिला बोलते हैं उसको, वो भी बाइट कर लेता है, उसके मैंडिबल्स होते हैं वो आगे से आपके बाइट कर सकता है। तो इनका अलग अलग होता है, अलग अलग इनका रहन सहन होता है। जैसे आप लाल चींटी की बात करें, वो एक अलग तरह की चींटी होती है, वो पेड़ों पर रहती है
2: जी,
0: अर्बोरियल रहते हैं उसको, और वो पत्तों को सिल लेती है, पत्तों के बीच में वो धागा बांध बांध कर, धागा कहाँ से लाती है वो उसके अपने मुंह से जो सलाइवा है उससे निकालती है, और वो पूरा धागा सिल्क की तरह दो पत्तों को बांध के पूरा, आपने देखा आम के कभी पेड़ पे आप ध्यान देंगे, काफी लोग जो सुन रहे देखेंगे, आम के पत्तों को ऐसे पूरा बांध के वो एक पूरा बॉक्सा बना देती है, मतलब एक जिसे कहना चाहिए पर्स की तरह बना देती है, और उसके अंदर वो अपने अंडे रखती है, अपने बच्चों को उसमें रखती है और पूरा पैक करके रखती है। अलग अलग चींटियां रहती हैं, अलग अलग रोल रहता है उनका सबका।
2: एक ये भी देखने में आता है कि जैसे ही गर्मी का ये

0: सीजन शुरू होता है ये बारिश का, मुख्यतः तभी हमें हमारे आसपास घरों के अंदर पेड़ पौधों में गमलों तक भी चींटियां नजर आती हैं।
1: बिल्कुल, देखिए गर्मियों का इनका मेन मौसम होता है, ये जून से ज्यादा स्टार्ट करती हैं। बारिश की बारिश वाले टाइम में ज्यादा आएंगे, क्योंकि जैसे इनके जो नीचे जमीन पे रहती हैं जो उनके जो घोंसले हैं, बारिश का पानी जैसे उनमें जाता है तो उनके अंडे वगैरह सब डिस्टर्ब होते हैं। तो वो आप देखेंगे मुंह में कुछ सफेद रंग का चीज लेके चलती है, वो अपने अंडे लेके जा रही है। वो सब अपने सबको बोला गया है कि फटाफट उठो यहाँ से, क्वीन बोलती है, और सब अपने अपने अंडे लेके चलो नई जगह ढूंढो। तो नई जगह ढूंढते हैं जाके, इधर उधर भागते हैं और वहां जाके फिर वो अपने नया घर बनाते हैं वहां पे।
0: इनके सोशल स्ट्रक्चर की हम बात करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे अर्षित जी, सोशल स्ट्रक्चर क्या है चींटी का?
2: चींटी तो जमीन के अंदर रहती है, जो मिट्टी है, मिट्टी को ये ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर करती रहती है, ताकि जो मिट्टी में है हवा का जो है आदान प्रदान हो सके। और इसी के दौरान ये जो सीड्स रहते हैं उनको भी ये नीचे लेके जाती है, जिससे पौधारोपण में मतलब ये जो अपने प्लांट्स है इनके जर्मिनेशन में हेल्प मिलती है।
0: यानी कि मिट्टी को खोखला
2: कर से पोला करती है, जैसे केचुआ करता है उसी तरीके से ये अपना रोल प्ले करती है।
0: जी हेलो,
3: नमस्कार सभी को।
0: नमस्कार भूपेंद्र जी, प्रश्न कीजिए आप।
3: मेरा प्रश्न ये है कि कीट पतंग संबंधित है कि शंख और सीप, ये भी किसी की
1: शंख और सीप
0: जी जी,
3: और इनका क्या रोल है इस पर्यावरण से?
0: जी उत्तर आप रेडियो पर सुनिए।
1: शंख और सीप की बात कर रहे हैं ना, हाँ, ये भी बहुत, ये भी एक एनिमल है जो कि समुद्र के अंदर रहता है। इसका इसको बहुत सारे लोग इसका नुकसान भी करते हैं, इसको खा भी जाते हैं, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग भी खाता है इसको। आप देखिए इतना सा वो शंख है, उसके अंदर जानवर है पूरा पूरा, उसको काट के निकाल लेते हैं और उसको भी खाए। उसका अपना एक बहुत बड़ा रोल है वेजिटेशन के अंदर, जब वो समुद्र के अंदर रहता है तो या पानी के अंदर रहता है या हमारे तालाबों में वो रहता है, तो वहां पे बहुत तरह के वेजिटेशन है, उन सबको वो अंदर अंदर वहां से लेता है, न्यूट्रिएंट्स को वहां से लेता है और न्यूट्रिएंट्स का पूरा पूरा साइकिल पूरा करता है। जैसे अंदर कोई वहां पे काई लगी हुई है, वहां पे कोई एक्वाटिक प्लांट है, वो उसको फीड करता है। वहां के जो छोटे मोटे जो जानवर है वहां पे जैसे कि ब्लड वॉर्म्स होते हैं, दूसरे वॉर्म्स होते हैं, उनको वो फीड करता है और उनका एक पूरा साइकिल पूरा होता है। एक्वाटिक लाइफ का एक बहुत बड़ा रोल है ये, बहुत बड़ा उसका मतलब रोल प्ले करता है। वो आपको सब जगह मिलेंगे, आपको तालाबों में मिलेंगे, आपको डैम्स में भी मिलेंगे, जहां भी पानी होता है वहां पे वो अपना रहते हैं और उनका एक वही जो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने वाला जो काम है वो ही अपना रोल प्ले करता है।
0: अनुराग जी, हम देखते हैं कि जैसे कोई चीज नीचे गिर जाती है, रोटी या कुछ भी, तो एक चींटी आती है, उसके बाद धीरे धीरे धीरे एक कतार से लग जाती है, तो कैसे एक चींटी दूसरे चींटी को मैसेज कन्वे करती है, किस तरह से इनका संवाद होता है?
1: ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप चींटियों के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको एक अलग ही जीवन देखने को मिलेगा। देखिए एक छोटा सा जानवर है, कितना सा छोटा, कितने क्या साइज होता है उसका। आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पे कोई कॉकरोच मर जाए आप दबा दो उसको, मर जाएगा वो, आपको कोई स्मेल नहीं आ रही है। आप यहाँ पे थोड़ी चीनी डाल दो, कुछ डाल दो, आपको स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन अभी यहाँ कोई चींटी नहीं दिखाई दे रही और अभी 5 मिनट के अंदर अंदर उस चींटी को वहां पे खुशबू पहुंच जाएगी कि यहाँ कोई चीज खाने की है। अभी फटाफट एक आएगी वहां पे और आने के बाद वो इन्फॉर्म करेगी सबको, फेरोमोन्स छोड़ेगी, वो खड़ी होके उसको मुंह में लेने के बाद इन्फॉर्म करेगी सबको कि यहाँ पे खाने की चीज है और आप आ जाइए। आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर उन सबको मैसेज, फेरोमोन्स बोलते हैं, स्मेल छोड़ते हैं, वो फेरोमोन्स छोड़ेंगी, दूसरे के पास मैसेज पहुंच जाएगा कि यहाँ पे खाने की चीज मिल गई, बहुत अच्छा स्टॉक है, लाइन लग के सिस्टमेटिक वे में आएंगे।
0: लेकिन अभी तो आसपास चींटी दिख ही नहीं रही,
1: हाँ,
0: उसके बाद
1: वो मैं बता रहा हूँ ना, फेरोमोन छोड़ेंगे, स्मेल छोड़ती हैं वो, और देखो उनकी स्मेल पावर कितनी स्ट्रांग है। हम इतने बड़े जानवर हैं, हम इतने बड़े ह्यूमन बीइंग हैं, है ना, हमें वो स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन वो इतना छोटा सा जानवर, भगवान ने अल्लाह ने उसको कितनी बड़ी ताकत दी है कि उसको वो मैसेज पहुंच जाता है। इसकी चिड़ी, आप उसकी मधुमक्खी की बात कीजिए, वो 1 किलोमीटर दूर तक जाती है अपना नेक्टर लेने के लिए, वो 1 किलोमीटर दूर तक जाती है, वापस उसी जगह कैसे लौट के आ रही है? आपको मैं ये हम जाए जंगल में आपको छोड़ दें और 1 मीटर पे मतलब 100 मीटर पे लाके छोड़ दें, वापस आने में आपको परेशानी आ जाएगी, आप पहुंच नहीं पाएंगे।
0: अनुराग जी, ये प्रश्न हम आपसे जरूर करेंगे, फिलहाल चींटियों का जिक्र कर रहे हैं तो हर्षित जी से जानना चाहेंगे कि इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो कितना लंबा इनका जीवन होता है और अपने जीवन चक्र में ये कितने अंडे दे सकती हैं?
2: इनके अंडों की हम बात करें तो ये अपने पर डे में ये 20,000 अंडे लगभग देती हैं
0: जी।
2: और लाइफ साइकिल जो इनका है वो कुछ महीनों तक ही चलता है, इतना लाइफ साइकिल लंबा नहीं चलता है
0: जी।
2: और जैसे हम बीज की अगर बात करें, बीज में जो है जैसा सर बता रहे थे कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन बीज का मैं एक बार बता दूं, ये दो तरीके से डांस करती है बीज।

0: जिसमें वेगल डांस और एक राउंड डांस। अगर फूड इनका फूड पास में है तो ये राउंड डांस करेगी 100 मीटर के अंदर अंदर, अगर 100 मीटर से ज्यादा है तो ये वेगल डांस करेगी, यानी कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है 8 उसके समान ही डांस करती है। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन करती है और फिर हॉर्मोन्स छोड़ती हुई जाती हैं।
1: काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया आपने चींटियों के बारे में।
2: उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा।
3: राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरक, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, चिंकारा, चीतल एवं नील गाय को गोद ले सकते हैं। मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर, नयापुरा, कोटा।
1: हेलो।
4: हेलो
1: जी, नमस्कार, नाम बताइए।
4: जी मैं अर्जुन जाट बोल रहा हूँ।
1: जी प्रश्न कीजिए आप।
4: जी मुझे सर से पूछना है कि जैसे बारिश का समय आते हैं छोटे छोटे मेंढक कहाँ से आ जाते हैं?
1: जी
5: देखिए, ये जो मेंढक आ जाते हैं ना, ये क्या होता है कि जब पानी रहता है, पूरा पानी रहता है, तो ये ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग करने के बाद ये एग लेइंग करते हैं, और एग लेइंग करने के बाद जैसे टाइम के साथ साथ जब चलता रहता है ये, तो पानी खत्म हो गया। जैसे जैसे अभी उन्होंने अंडे दिए, फिर अगस्त में भी दिए, सितंबर में भी दिए, अक्टूबर में भी दिए, अंडे दे रहे हैं वो, मतलब मेटिंग करते जा रहे हैं और अंडे देते जा रहे हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब आ गया उस टाइम में पानी कम होते होते ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनके एग्स पड़े रहते हैं। और एग्स की इनकी खास बात क्या होती है कि वो ख़राब नहीं होते हैं, वो पूरे साल तक वेट करेंगे कि भाई अब अभी उनको जर्मिनेट नहीं होना है, यानी निकलना नहीं है, अब वो पड़े रहेंगे वहीं पे। और जब अगले साल फिर जब जून, जुलाई, अगस्त जैसे आएगा और फिर जब बारिश पड़ेगी, बारिश पड़ती वो वापस उसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं। आपको जैसे लग रहा है ना, इस टाइम कहाँ से आ गए, अभी तो इनका ब्रीडिंग भी नहीं हुआ, अभी तो बच्चे भी नहीं हुए, कहाँ से अंडे निकल आए? तो वो जो अंडे पहले पड़े हुए हैं वो अब यहाँ से निकलने शुरू हो गए, और हमें लगेगा यार ये तो बहुत सारे यहाँ पे आ गए।
1: जी

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हर्षित जी, अब मधुमक्खी की बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दीमक की तरह इनमें भी नर, मादा, रानी और श्रमिक मधुमक्खी होती है और इनकी पहचान कैसे होती है?
3: बिल्कुल, इनमें भी अलग अलग तरह की जो स्पीशीज होती है, सॉरी, अपने अलग अलग होती है जिसका काम अलग अलग होता है। दीमक की बात करें तो दीमक में सर ने चार तरीके की बताई थी, इसमें तीन तरीके की रहती है
2: जी।
3: इसमें रानी मधुमक्खी रहेगी, श्रमिक रहेंगे और क्या नाम अपने ड्रोन रहेंगे। और जो है वो इसमें भी वही कार्य होता है, रानी जो मधुमक्खी है वो अंडे देने का काम करती है, वही रॉयल जेली खाती है। उसी तरीके से जो सोल्जर्स होंगे वो उसकी रक्षा करेंगे अपने छत्ते की, और जो ड्रोन्स होते हैं वो इसके साथ रानी मधुमक्खी के साथ में मैटिंग करेंगे, यानी कि प्रजनन करेंगे, जिससे वो अंडे देती है
2: जी।
3: जिस तरीके से टर्माइट में होता है उसी तरीके से इसमें भी होता है। तो जो है एक इनका जो नेस्ट रहता है छत्ता, वो होता है हेक्सागोनल
2: जी,
3: सेल्स का बना होता है, जिसमें ऊपर की तरफ तो ये शहद इकट्ठा करती है और जो नीचे की तरफ है वहां पे ये अंडे देती हैं। जैसे हम जैसे कभी उसको काटते हैं तो नीचे की तरफ उसमें सफेद कलर के अंडे दिखाई देते हैं, तो वो इनके एग्स ही होते हैं। इस तरीके से ये इनका जो नेस्ट है जिसको हम छत्ता बोलते हैं, और ये जो मोम का ये जो छत्ता रहता है ये मोम का बना हुआ रहता है। इसका ये प्रोटेक्शन एक प्रोपोलिस नाम का केमिकल होता है जो ये पेड़ पौधों से कलेक्ट करके बनाती है, जिससे ये इनमें बैक्टीरिया नहीं लगता, इन्फेक्शन नहीं होता है, वायरस जो है वो अटैक नहीं करते हैं इनके इस पे एग्स के ऊपर या इनके छत्ते के ऊपर। उस तरीके से अपने उसको छत्ते को प्रोटेक्ट करती है
2: जी। अनुराग जी, एक छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खी हो सकती है और श्रमिक मधुमक्खी कितनी हो सकती है?
4: देखिए, एक एक छत्ते के अंदर एक ही रानी मक्खी हो सकती है, दो नहीं हो सकती। हाँ, एक छत्ते का राजा या रानी जैसे बोले हैं, रानी हो, और वो सारी फीमेल्स ही हैं। जो रानी है वो तो फीमेल है ही, और जितनी भी है दे आर ऑल डॉटर्स एंड सिस्टर्स, वो सारी उसकी डॉटर्स हैं जो मेल जो रानी है, और बाकी आपस में सिस्टर्स हैं, वो मेल कोई नहीं है।

0: वहां पे, मेल का कोई रोल ही नहीं
1: रोल
0: है पूरे, सिर्फ वो ड्रोन जो होता है वो ड्रोन मेटिंग करता है, उसके बाद वो जितने स्पर्म्स होते हैं वो प्रिजर्व कर लेती है, उसके बाद ड्रोन की डेथ हो जाती है, काम खत्म उसका। अब पूरा पूरा सिस्टम जो चल रहा है, और एक छत्ते के अंदर 10,000 से लेकर 75,000 तक मधुमक्खियां रहती हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग उसमें होती है। जैसे एपिस जो फ्लोरिया होती है उसके अंदर तो 10,000 तक ही रहती है, ज्यादा बड़ा छत्ता नहीं होता है, लेकिन जो डॉर्सेटा है और जो सिरेना है हमारे, दो तीन तरह की जो होती है, उसमें तो मतलब 75,000 तक होती है, और उसमें शहद भी 40 से 50 किलो तक हो जाता है। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए, छत के ऊपर ऐसे आपने लगाया है,
1: 50 किलो
0: लटका हुआ है और नीचे नहीं गिरता है,
1: नीचे नहीं,
0: आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, वो नहीं गिरेगा। वो जैसे सर ने बताया कि प्रोपोलिस जो है वो बनाती है, और इतना स्ट्रॉन्ग एडिसिव है वो कि उससे वो कभी टूटेगा नहीं, और वो मतलब हम भी ऐसा इतना केमिकल स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए, हमारे फेविकोल लगाते हैं सब नीचे गिर जाता है, पर इनका जो प्रोपोलिस है वो नहीं टूटता।
1: इनमें जो सबसे लंबा लाइफ साइकिल होता है वो किसका होता है?
0: जो फीमेल क्वीन है, जो
1: क्वीन
0: वो 2 से 5 साल तक रहती है,
1: और मुख्यतः इसका काम क्या होता है?
0: सिर्फ एग्स लेइंग,
1: एग्स,
0: ये कहीं नहीं जाती है, ये नेक्टर इकट्ठा करने नहीं जाती है, ये मकरंद लेने नहीं जाएगी, ये अपना छत्ता छोड़ के ही नहीं जाती है, ये वहीं रहती है। और इसका पूप यानी कि इसकी पॉटी जो है वो भी दूसरी जो वर्कर मधुमक्खियां हैं वो ही उसकी क्लीनिंग करती हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं जाएगी, और दूसरी जो मधुमक्खियां हैं वो कोई भी वहां पे अंदर पूप नहीं करेंगी, वो सब बाहर के, बहुत नीट एंड क्लीन जानवर है, बिल्कुल बहुत ही मतलब इतनी सफाई कोई हम ह्यूमन बींग भी नहीं रख सकते जितनी सफाई ये लोग रखते हैं।
1: अनुराग जी, ये कैसे जानेंगे कि ये जो मधुमक्खी है ये रानी है?
0: ये
1: क्योंकि 3-4 साल का आपने जो इसका लाइफ साइकिल बताया, उसकी डेथ के बाद फिर रानी?
0: वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यदि आप एक नेकेड आई से जाके देखेंगे छत्ते के अंदर, जैसे आप एपिस जो मेलिफेरा होता है जिसकी हम एपिकल्चर करते हैं, जिसको हम पालते हैं, उसमें यदि आप वैसे वाली को तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो अटैक भी कर सकती है और आपको डिस्टर्ब करेंगे आपको। लेकिन यदि हम मेलिफेरा की बात करें जिसका मक्खी मधुमक्खी पालन करते हैं, उसमें आप देखेंगे तो उसका साइज लगभग उससे 1.5 गुना बड़ा होता है। तो सारी मधुमक्खियां आपको एक साइज की दिखेंगी, एक मधुमक्खी आपको बड़ी साइज की दिखेगी। तो आप जब उसको बार बार देखेंगे एक्सपर्टीज के बिना तो देखो एकदम से नहीं पहचान सकते, हम कहेंगे एक लेमन जाएगा और पहचान लेगा, नहीं पहचानेगा। थोड़ा सा उसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसका साइज बड़ा दिखेगा, वो लगभग मतलब 150 से 2 mm तक की होती है, सॉरी 2 सेंटीमीटर तक की होती है, मतलब इतनी बड़ी हो जाती है 2 सेंटीमीटर की, तो इतनी बड़ी वो आपको अलग ही दिख जाएगी उसके अंदर, तो उसको आप पहचान सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसे कोई। और आप क्या पूछ रहे थे दूसरा क्वेश्चन?
1: अपने मतलब उसको पहचानेंगे कैसे, और लाइफ साइकिल में वो क्या काम करती है? सिर्फ एग लेइंग, ये तो आपने बता ही दिया,
0: एग लेइंग का ही काम है। हाँ, यदि वो मर जाती है, आपने वो क्वेश्चन पूछा,
1: मर जाती है,
0: देखिए रूटीन में 2 से 5 साल इसकी उम्र होती है, लेकिन 2 साल के बाद इसका एग लेइंग कम होना चलो शुरू हो जाता है। जैसे अभी हमने कहा 36,000 से 40,000 देती है, पर फिर वो कम होकर 30,000 रह जाता है, फिर वो 15,000, तो बाकी मधुमक्खियां जो हैं वो उसमें फिर रोल प्ले करती हैं, वो देखती हैं। दो तरह से हो सकती हैं, या तो वो खुद ही छोड़ के चली जाए वहां से, या फिर ये लोग कई बार उसको मार भी देते हैं, और फिर जो नए अंडे देगी ना उसके अंदर, उन अंडों को ये पूरा फुल टाइम रॉयल जेली खिलाएंगे। मधुमक्खियां अंडों को रॉयल जेली खिलाएंगी, प्यूपा को रॉयल जेली खिलाने से जो बच्चे पैदा होंगे उसमें से जो निकलेंगे उनके ओवरी आ जाएगा, ओवरी आ जाएगा मतलब वो क्वीन बन सकती है। अब वो मान लो एक बनती है, 4 बनती है 10 बनती है, उनमें जो बेस्ट होगी वो क्वीन बनेगी, यानी कि वो आपस में लड़ाई होगी, या तो अपने आप छोड़ के चले जाओ, नहीं तो जो उसमें जीतेगा वो फिर क्वीन बनेगी। तो ऐसे ये नई क्वीन बना लेती हैं और पुराने वाले कई बार मार भी देती हैं, जो अच्छे अंडे नहीं दे रही है ना, तो जो पूरे कॉलोनी है, एक्चुअली दीज थिंग दे आर डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉलोनी, वो पूरी कॉलोनी के लिए कुछ बेटर करना चाह रहे हैं। यदि कोई बाइट भी करती है ना आपको मधुमक्खी, तो आपको आपसे कोई उसका झगड़ा नहीं है
1: जी।
0: वो बाइट इसलिए कर रही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसके छत्ते को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि बाइट करने के बाद इट हैज टू डाई। मधुमक्खी जितने भी होते हैं ना, हनी बीज जितनी होती है, वो बाइट करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, और उनको पता है ये बात, तो तभी बाइट करेंगे जब उनको लगेगा कि बहुत ही जरूरी है, ये हमारे छत्ते को नुकसान पहुंचाने आया है, चाहे फिर वो कोई भी हो, आदमी हो, भालू हो, या कोई भी जानवर हो, वो उसको बाइट करेगी।
1: तो डेथ का कारण क्या होता है?
0: डेथ का कारण ये होता है, जो उसका स्टिंग होता है ना, वो जब चुभाती है आपके और जब आप खींचते हो तो वो उसमें फंस जाता है, वो आगे से हुक शेप में होता है, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसका पूरा जो अंदर से इंटेस्टाइन है सब बाहर आ जाता है खींच के, उसकी डेथ हो जाती है।
1: जी हर्षित जी, छत्ता बनाने का काम कौन करता है और शहद बनाने का काम कौन करता है?
2: जो वर्कर्स और सोल्जर्स अपने जो श्रमिक रहते हैं मधुमक्खी में, वो शहद इकट्ठा करने का काम करते हैं, और जो वर्कर्स रहते हैं वो भी प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि सोल्जर्स और श्रमिक ड्रोन, ये दोनों ही छत्ता बनाने का काम करते हैं इनमें। हम जैसे अगर जो शहद बनाते हैं, मधुमक्खी अगर अपने एक जो मधुमक्खी है अपने जीवन काल में पूरा, जिसका

0: लाइफ स्पान है, एक चम्मच का जो 12वां हिस्सा होता है इसके बराबर ही शहद इकट्ठा कर पाती है। अगर हम जैसे 1 किलो शहद की बात करें तो 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को कम से कम 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है, तब जाके 1 किलो शहद इकट्ठा कर पाती है। और जो ह्यूमन बींग है वो तुरंत जाता है और उसके छत्ते को
1: जी
0: बर्बाद करके और उसका शहद ले आता है। शहद की अगर हम बात करें, शहद जो है कई हजारों सालों तक
1: खराब
0: नहीं होता, इसके कई सारे रिकॉर्ड्स हैं मिस्र में, जो अपने पिरामिड्स हैं वहाँ पे इसके रिकॉर्ड्स मिले हैं। वैसे तो उन्होंने कहते हैं कि 100 साल 200 साल तक नहीं होता, लेकिन हजारों साल तक का भी इसके रिकॉर्ड है। ये एक ही ऐसा जो प्रोडक्ट है जो कई सालों तक खराब नहीं होता है, इसको बिना किसी अपन प्रिजर्वेटर के रख सकते हैं।
1: अनुराग सर, हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिली लगे आपको, लेकिन फिर भी पूछना चाहेंगे कि शहद ही क्यों बनाती है और ये शहद होता क्या है? वॉमिट होती है या स्लाविया होता है, क्या होता है ये?
2: देखिए, कोई भी, पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं होता है, हमें हर क्वेश्चन पूछना चाहिए। और बच्चों को तो खासतौर से मैं कहता हूँ कि आप कितना भी स्टूपिड कैसा लगे क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो जो ये होता है, ये ना तो उसका पूप है, ना तो उसका सलाइवा है, और ना तो उसकी वॉमिट है। ये क्या होता है, भगवान ने, ऊपर वाले ने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि हनी स्टमक बनाया हुआ है, जिसको इंसेक्ट को वो अपने प्रोसोपिस से सक करने का, यानी कि उसमें से खींचती है वो उसमें से मकरंद को, और उसको खींच के उस अपने स्टमक के अंदर स्टोर करती रहती है। उसके फूड पाइप से, यानी खाने वाले सिस्टम से वो किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि उसके पूप से, सलाइवा से और उसके वॉमिट से कोई कनेक्शन नहीं है। नीट एंड क्लीन ये बिल्कुल फूड है एक तरह से, अच्छा वो बनाती है। और ये मकरंद है, ये शहद नहीं इकट्ठा करती है, वो मकरंद इकट्ठा करती है। मकरंद में और शहद में बहुत बड़ा फर्क है। 5 kg यदि आप लेके आओगे मकरंद, तो उसका 1 kg बनेगा, 1:5 का रेशो है, तो थोड़ा सा जो कंसंट्रेट होता है वो बन के फिर शहद बनता है। और शहद के अंदर पानी की मात्रा वो कम कर देती है, वो 5 से 8 से 10% तक रह जाता है, तब वो उसको शहद को रखती है।
1: छत्ते भी हम दो तरह के देखते हैं, पेड़ों में जो नेचुरल तरीके से बनते हैं, गुफाओं में, चट्टानों में, और जो एक आर्टिफिशियल तरीके से बॉक्स तैयार किए जाते हैं स्पेशली, और उनमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अब कई सारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि कौन सा शहद खाने में ज्यादा उपयुक्त होगा।
2: देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आपको सिर्फ एपिस मेलिफेरा का ही खाना चाहिए, जिसका हम पालन करते हैं। क्योंकि यदि आप जंगल वाला तोड़ के लाते हो तो वो तो आप हनी हंटिंग कर रहे हो, यानी कि उन सबको मार रहे हो, और आप पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। देखिए, उस शहद से आप कोई अमर तो हो नहीं जाओगे, मरना तो फिर भी सबको पड़ेगा। तो हम मेलिफेरा वाला शहद है वही खा के अपना काम चलाएं, और जंगल वाले जो फ्लोरिया जो है और दूसरे जो डॉर्सेट है उनको बिल्कुल भी ना तोड़ें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों को मार देंगे
1: आप। अनुराग जी, अभी बातों बातों में आपने थोड़ी देर पहले ये जिक्र करा था कि मधुमक्खी मकरंद लेने जाते हैं कई किलोमीटर की यात्रा करके, उसको कैसे पता होता है कि यही मेरा छत्ता है, मुझे यहीं आना है, कोई मैप वगैरह और संवाद किस तरह से करती है?
2: ये बिल्कुल, ये जो है, ये जो उसकी रानी मधुमक्खी होती है वो एक फेरोमोन्स छोड़ती है
1: जी।
2: और हर मधुमक्खी भी फेरोमोन्स छोड़ती है, वो जहां से मकरंद लेती है वहां पे भी फेरोमोन्स छोड़ती है, जिससे कि वहां पे स्मेल रहे और पीछे से दूसरी मधुमक्खी आ रही है उसको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़े और वो सीधे वहीं पे आ जाए। वो 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर दूर तक जा सकती है और लौट के वापस उसी जगह पे आती है, बिकॉज इट इज गेटिंग द स्मेल ऑफ फेरोमोन्स, उसको फेरोमोन्स की खुशबू आती रहती है। इतने छोटे से जानवर के अंदर इतने स्ट्रांग उसके वो होते हैं, उसके जो अंग उसको दिए हुए हैं, सेंसरी एंग्स दिए हुए हैं, वो सारे सारे उसको ऑब्जर्व कर पाती है और उसको ले पाती है। वो फेरोमोन्स रानी मक्खी छोड़ रही है और सब मधुमक्खियां छोड़ रही है, वो पूरी ट्रेल बन रही है, उसके थ्रू आना जाना करती है।
1: और आखिरी प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस है आज, तो कुदरत अपने आप में पूरे विश्व को समेटे हुए और इस पूरे विश्व को हम इंसानों ने समेटा हुआ है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब बात आती है इस कुदरत के संसाधनों को सहेजने की, तो वो जिम्मेदारी किसकी है और इस जिम्मेदारी को हम कैसे निभाएं?
2: देखिए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की है, क्योंकि बाकी सारे जितने भी जानवर हैं उन सबको ये जो हमें समझने की रीजनिंग जो पावर दी है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग को दी है गॉड ने, तो हमें उसका यूज करना चाहिए, अपने ब्रेन का यूज करना चाहिए। बाकी सारे जानवर, 1 करोड़ थे, बाकी 1 को हम ह्यूमन को निकाल दें तो बाकी सारे जानवर इंस्टिंक्ट से काम करते हैं, उनका एक सिस्टम है उससे काम करते हैं। सिर्फ ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो रीजनिंग कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है, ये करूं या नहीं करूं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सबकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें और पर्यावरण को बचाने में सहयोग करें।
1: तो श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी इस बात के प्रति जागरूक हों कि प्रकृति, ये पर्यावरण, इसका हर एक घटक हमारी साझी धरोहर है, हम सभी के जीवन की जरूरत है। इसका समझदारी से दोहन करें, जरूरत है फिर से प्रकृति की ओर लौटने की। और अब समय है हमारे विशेषज्ञों से अनुमति लेने का। अनुराग जी और डॉक्टर हर्षित जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम को आप तक

0: पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग मिला मनोज भारद्वाज और नरेश कुमार मीणा से, संयोजन हिमांशु नामा का, प्रस्तुति सहायक मोहम्मद फैजान और अब मैं रीना हमारे दोनों विशेषज्ञों के साथ आप सभी से अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा।
2: राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरक, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, चिंकारा, चीतल एवं नील गाय को गोद ले सकते हैं। मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर, नयापुरा, कोटा।
0: अब समय है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का।
3: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ये दिवस वर्ष 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत से प्रेरित होकर हम सभी मिशन लाइफ की भावना से काम करते रहेंगे, साथ ही हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया है। इस अवसर पर प्रदेश में आज से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान शुरू होगा। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर करेंगे। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत होगी। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के दौरान इस मानसून सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यावरण दिवस पर समारोह रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। प्रदेश में गंगा दशमी से शुरू हुए 15 दिन के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भी आज समापन हो रहा है। अभियान के तहत आज जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिए जाएंगे। अजमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बूढ़ा पुष्कर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के तहत जन भागीदारी से जल संरक्षण से जुड़े कई कार्य किए गए।
4: जिले भर में अभियान के दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी की कई प्रेरक सफलताएं सामने आई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की सफाई, जल संग्रहण संरचनाओं के पुनर्जीवन और पौधरोपण गतिविधियों में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज समापन अवसर

0: और जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन, तुलसी पौध वितरण, हरियाणा राजस्थान अभियान की तैयारियां तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने विश्वभर के खिलाड़ियों से चैंपियनशिप के बाद भी लोगों को योग के प्रति जागरूक करते रहने का आग्रह किया।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: 8 जून तक चलने वाली इस योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। गौरतलब है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को अलग अलग श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किए। योजना के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में राजस्थान को मई महीने के दौरान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन और वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में दूसरा पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों की श्रेणी में दिया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन वाले 10 जिलों की श्रेणी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। ऊर्जा सचिव और राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिली है। वे कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत, सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए उनकी सरकार बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जालौर झालावाड़, श्रीगंगानगर कोटपुतली, अजमेर बांसवाड़ा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाकर उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मीडिया से बातचीत में श्री डांगी ने कहा कि वे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। श्री डांगी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्र और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। दूसरी ओर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने कल रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। गौरतलब है कि इन 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में एक नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से कल राजधानी जयपुर सहित 7 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं भी चलीं। सवाईमाधोपुर में रात से ही रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। भीलवाड़ा में कभी रिमझिम और कभी तेज बरसात का दौर जारी रहा। जिले के गुलाबपुरा, आसींद, शाहपुरा, जहाजपुरा और मांडलगढ़ सहित भीलवाड़ा में हुई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों का कहना है कि कपास की फसल में ये बारिश फायदेमंद साबित

0: होगी। पाली में अल सुबह तेज अंधड़ से पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। भरतपुर में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई। कोटपुतली बहरोड के नारायणपुर, विराटनगर और पावटा सहित विभिन्न स्थानों पर कल रात बारिश हुई। इससे कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आंधी और बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका जताई है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरलम पहुंच गया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 जून तक मॉनसून दस्तक दे सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले। और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 102, 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में सुनिए फिल्म बलमा का ये गीत। नदीम श्रवण की धुन पर गीत के बोल समीर के हैं।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये आप सुन सकेंगे सजीव फोन इन चौपाल कार्यक्रम में। आज का विषय होगा बागवानी और सब्जी वाली फसलों में कीट नियंत्रण। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कैलाश चंद अहीर। हमारे किसान भाई इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें डायल करने होंगे हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 07442941142। जुदाई फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आवाजें अलका याग्निक हरिहरन जसविंदर नरूला की। गीत के बोल समीर के हैं और ये धुन है नदीम श्रवण की।

जुदाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक, हरिहरन और जसविंदर नरूला की आवाजों में। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी प्यारी सखियों को और सारे श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी सखी प्रथमा और बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम महिला जगत में। सखियों, आज है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। हर वर्ष हम 5 जून को मनाते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को प्रकृति के प्रति रक्षा के लिए प्रेरित करना है। सखियों, पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाना, जल वायु वन और वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देना, सतत विकास के लिए लोगों को प्रेरित करना, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पानी की बिजली की सभी की बचत करें, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम, हरित धरती हमारे काम, स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन। और ये तो हुई पर्यावरण दिवस की बात सखियों। तो आज हम जब पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण अनुकूल होम डेकोर, आज इस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। सखियों, पर्यावरण अनुकूल होम डेकोर का मतलब है ऐसी सजावट के तरीके जो प्रकृति हितेशी हैं, कम कचरा पैदा करें और प्राकृतिक चीजों का हम उपयोग करें तो पर्यावरण को हम अधिक से अधिक सुंदर और बचा सकते हैं। हम अपने घर को सुंदर और पर्यावरण अनुकूल दोनों बना सकते हैं, जैसे कि इंडोर पौधे लगाएं। अब ये दिमाग में आती है कि इंडोर पौधे कौन से होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बागबानी का, आजकल हम गूगल किया और बहुत सारी सर्च कर लेते हैं, लेकिन हम नर्सरी में जाकर शायद वहां भी पता लग कर सकते हैं कि घर में पौधे लगाने से सजावट भी होती है और हवा भी बेहतर होती है। जैसे स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, एरिका पाम है, पीस लिली है, आदि घर को ताजगी तो देते ही हैं, साथ में प्राकृतिक सौंदर्य भी देते हैं। प्लास्टिक सजावट की जगह हम बांस, जूट, लकड़ी, मिट्टी की चीजें रखें, जैसे जूट मैट, बांस की टोकरी है, लकड़ी की शेल्फ है, ये टिकाऊ तो होती है सखियों, साथ में सुंदर भी होती है। पुराने सामान को भी हम नया उपयोग करके काम में ले सकते हैं, जैसे पुरानी कांच की बोतल है उनको हम फूलदान बना सकते हैं। पुराने जो डिब्बे हमें लगता है ये बेकार हो गए, अब हम कबाड़ी को दे दे, तो नहीं, उनसे हम प्लांटर भी बना सकते हैं। बात करें हम पुरानी साड़ी और दुपट्टे से कुशन कवर या टेबल कवर बना सकते हैं, इससे कचरा तो कम होगा ही, घर भी थोड़ा सा यूनिक सा लगता है। मिट्टी के गमले हैं, दिए हैं, हैंडमेड शोपीस है जो घर को प्राकृतिक और भारतीय लुक देते हैं। और इसके बाद हम सखियों बात करें कॉटन, खादी, लिनन या जूट के पर्दे और कुशन कवर चुने, सिंथेटिक की जगह ये ज्यादा पर्यावरण अनुकूल होते हैं। साथ ही प्राकृतिक रोशनी और ऊर्जा की बचत करें, दिन में अधिक से अधिक हम ऐसा करें कि घर में प्राकृतिक रोशनी आए, एलईडी लाइट्स का उपयोग करें, हल्के रंग के पर्दे हम लगाएं, क्योंकि हल्के रंग के पर्दे रोशनी देते हैं और ठंडा महसूस करवाते हैं। पुराने गमलों को हम पेंट कर सकते हैं प्राकृतिक सुगंध में, रूम फ्रेशनर की जगह सखियों फूल, कपूर या प्राकृतिक जो एसेंशियल ऑयल होते हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उनको जो स्वयं में मस्त हैं, छोड़ सकते हैं उन्हें जो प्रकृति

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं अब ये भेंट वार्ता जिसका विषय है योग और सौंदर्य। विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रेखा जैन।
3: सखियों स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ रहना किसे नहीं भाता है। और बात हम जब करते हैं योग की कि योग से भी हम स्वस्थ और खूबसूरत बन सकते हैं, तो योग का हमारे जीवन में क्या योगदान है, इस विषय पर हमने जानकारी लेने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रेखा जैन को। आप नेचुरोपैथिस्ट हैं और साथ ही साथ योग इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में। नमस्कार।
4: नमस्कार प्रतिमा जी।
3: रेखा जी, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि योग की परिभाषा आपकी नजर में क्या है।
4: मन से शरीर को आत्मा को जोड़ना योग कहलाता है
3: जी। तो ये तो सीधी सी सरल सी भाषा आपने समझा दी कि योग की परिभाषा क्या है।
4: बिल्कुल।
3: और आज हम महिला जगत कार्यक्रम में जब बैठे हैं बात कर रहे हैं तो हम खासकर बात करना चाहेंगे महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए योग कैसे फायदेमंद है?
4: महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है प्रतिमा। योग आप देखें कि महिलाओं को कई सारी ऐसी विशेष रूप से प्रकृति ने उनको कुछ चीजें प्रदान की है, लाइक एक माँ बनने का अधिकार। उस समय आप देखिए कि जैसे ही उनको ये मासिक धर्म शुरू होता है उस समय पर कई बार तो लड़कियां बहुत डर जाती हैं, इनसे पेन होता है कि उससे उस दर्द को वो असहनीय पीड़ा वो सहन नहीं कर पाती हैं। तो आमतौर पर मैंने ये कई बार देखा है कि 70-80% लेडीज को ये प्रॉब्लम रहती है कि मासिक धर्म के पहले बहुत सारा दर्द होना, कभी कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, कभी कम ब्लीडिंग होना, अनियमित होना
3: जी,
4: ये सारी चीजें आती है। और यदि हम योग करते हैं, योग के कुछ आसन है विशेष रूप से, यदि हम उन आसनों को करें जैसे कि हम लोग बोल सकते कि धनुरासन आप करें हर दिन प्रॉपरली और सही एक गाइडेंस में करें योग इंस्ट्रक्टर की जब भी आप करते हैं धनुरासन है। और साथ साथ यदि हम स्वयं भी हैं, हमारे घर में भी यदि हम लोग काम कर रहे हैं और इतनी ज्यादा पीड़ा होती है तो घर के न तो कामों में बिल्कुल मन भी नहीं लगता है, साथ साथ हम अपने काम को एक नॉर्मल रूटीन में जैसे करते हैं वैसे नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप धनुरासन करिए, हलासन करिए, प्राणायाम करिए, जब हम इनको रेगुलरली करते हैं जो दर्द है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है
3: जी। क्यों?
4: इसीलिए अपनी जितनी श्रोता सखियां इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, जिनकी टीनेजर्स बेटियां हैं या घर में ऐसे हैं, तो उन्हें जरूर आप योग के आसन करवाइए, प्राणायाम करवाइए, उससे ये बेनिफिट 100% होगा, मैं आपको कह रही हूँ।
3: ये बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात बताई कि योग से देखिए हम मेडिसिन लेते हैं किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, तो वो साइड इफेक्ट जरूर करती है आपका। उस वक्त तो शायद बीमारी ठीक हो जाती है बट कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर जाती है।
4: एग्जैक्टली।
3: सखियों योग ऐसी चीज है जो बगैर खर्चे के, लेकिन वही है रेखा जी ने बताया कि योग इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शन में करें है।
4: एक बार आप उनके सानिध्य में कर लीजिए, उसके बाद आप अपने आप से करिए।
3: मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी कि आपने बताया योगा मासिक धर्म में समस्या कई बार होता है, महिलाओं के गर्भाशय में कुछ ना कुछ समस्या जरूर होती है, तो उस परिस्थिति में भी क्या वो योगा कर सकती है?
4: बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है तो

0: आप कर सकती हैं। साथ साथ कई बार ये भी होता है कि यदि कोई समस्या है आपको बहुत ज्यादा किसी हाई लेवल पर नहीं पहुंची है और आप करती हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती है। कंटिन्यू करते हैं आसन और प्राणायाम तो सबसे अच्छी चीज होती है कि ये सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। साथ साथ आपको गर्भाशय से रिलेटेड कोई बीमारियां होती भी नहीं है
1: जी,
0: और इवन यूरिन इन्फेक्शन है ये सारे सब भी क्लियर हो जाते हैं आपके। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत सारा रिलीफ करती है।
1: चलिए ये तो हुई योग की बात, एक हम आपसे जानना चाहेंगे प्राणायाम के बारे में, इसके किस तरह से फायदे हैं?
0: देखिए प्राणायाम प्राणों का आयाम है ना, जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो वायु जो है ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है, हमारे एक एक रोम कूप तक पहुंचती है
1: जी
0: बराबर, और जब वो एक एक रोम कूप तक पहुंचती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसी मात्रा में बाहर निकलती है शरीर से, तो कहते हैं ना कि टॉक्सिन्स आपके रिमूव हो रहे हैं। और जब भी आपके टॉक्सिन्स रिमूव होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर से
1: जी,
0: तो कई सारी कोशिकाएं हमारी जो है वो रिपेयर होती है, कई सारी नई बनती है, तो एक मरम्मत का काम बहुत अच्छा हो जाता है
1: जी।
0: और उसका ये सबसे बड़ा फायदा होता है आप जब प्राणायाम करते हैं कि ऑक्सीजन पूरा बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंच रही है आपकी, तो कई सारे ब्लॉकेज वो अपने आप में समाप्त कर देती है, क्योंकि विजातीय तत्व कैसे बाहर निकले, जब आपने सांस को छोड़ा, जब आपने सांस को भरा ऑक्सीजन अंदर, जब आप छोड़ती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो उसी के साथ साथ एक चीज और हाँ प्रथमा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी कभी आप प्राणायाम करें, प्राणायाम में जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम जो मुझे लगता है कि आज सभी को
1: पता
0: है,
1: जानते
0: है ना, जिसमें हम लोग एक नॉस्टिल को बंद करके एक नॉस्टिल से नोज से सांस लेते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं, है ना, यही प्रोसेस होता है इसका। तो जब हम ये करेंगे तो काफी सारे हमको अपने आप फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे, बट उसके लिए है कि थोड़ा सा फोकस्ड होके हमको करना होता है। हम क्या सोचते हैं कि आज हमने किया कल से हमको रिजल्ट मिल जाए, आप कोई दवाई भी खाती है तो 3 दिन में जाके आपको रिलीफ होता है, 3 डेज की तो डोज लेती है, लेकिन ये ऐसी चीज है कि जब आपने शुरू किया तो आपको किसी दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आई थिंक
1: जी।
0: और ये हमारी ब्यूटी को भी एनहांस करता है।
1: हाँ वही आ रही थी मैं बात करते करते कि सौंदर्य हर महिला की ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत दिखे, योग और प्राणायाम का असर होता है हमारे सौंदर्य पर?
0: बहुत असर होता है। जैसे हम आज एक प्लॉट के लिए कहीं जमीन खरीदते हैं और वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सालों बाद वो हमको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाता है। इसी तरह से यदि हम हमारे शरीर में आधा घंटा एवरीडे यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका तो आपको जीवन पर्यंत लाभ मिलने वाला है। और यदि हमने आधा घंटा एवरीडे दिया तो आप मानिए कि आप दिन के 12 घंटे इवन ज्यादा 15 घंटे आपके सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं आज की डेट में देखा जाए कि योग की वजह से आज वो 16-16 घंटे काम करते हैं और कोई थकान नहीं होती है। तो आपके स्ट्रेस को रिमूव करता है योग, आपके वर्किंग आवर्स को बढ़ाता है योग, दूसरा आपको हैप्पीनेस देता है, पॉजिटिविटी देता है और मन से आत्मा का संबंध होता है तो आप अपने आप से परिचित होते हैं
1: जी। वो कहते हैं ना हमारी गृहस्थी को तो हम 24 घंटे दे देते हैं लेकिन जब हमारी स्वयं की बारी आती है तो हमारे पास एक ही जवाब होता है समय नहीं है,
0: नहीं निकालना पड़ेगा।
1: मैं ये कह रही हूँ कि हमारी सखियों को निकालना पड़ेगा, खुद से हम प्यार करेंगे तो अपने परिवार से प्यार कर पाएंगे।
0: यही बात स्पेशली कहने का मेरा ये टारगेट है कि हमारी जो श्रोता सखियां हैं इसके योग के थ्रू सुंदरता पा सकती हैं, योग के द्वारा स्वस्थ रह सकती हैं, सुंदर रह सकती हैं, साथ साथ आप अपनी फैमिली को भी, बिकॉज आप स्ट्रेस में नहीं होंगी, आप तनाव में नहीं होंगी तो आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम दे पाएंगी
1: जी।
0: इनफैक्ट आपकी बॉडी अच्छी है, सुंदर है, स्वस्थ है तो आप देखिए कि आप इम्प्रेसिव लगती हैं, कहीं भी जाती हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो लोग आपको प्रायोरिटीज देते हैं, है ना, और अपने आप में भी एक कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ है और व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट तो आधा रास्ता तो आप वैसे ही पार कर
1: लेते हैं। बिल्कुल सही कहा ना। और रेखा जी जबकि आप एक ब्यूटिशियन भी हैं तो हम आपसे कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे जानना चाहेंगे हमारी सखियों के लिए कि हम उन नुस्खों से अपनी त्वचा में ग्लो पा सके।
0: सबसे पहले तो प्राणायाम और पैक की बात करते हैं, बेसन है उसमें दूध थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी ये मिक्स करके आप अपनी स्किन पर लगाइए अच्छे से और इसको आप एज अ क्लिंजर भी यूज कर सकते हैं और एज अ पैक भी यूज कर सकते हैं, है ना। यदि आप एज अ क्लिंजर यूज कर रही हैं तो आप सीधे चेहरे पर लगा दीजिए, यदि आप एज अ पैक यूज कर रही हैं तो पहले चेहरे को थोड़े से कच्चे दूध से क्लीन करके
1: जी
0: कॉटन डिप करिए कच्चे दूध के अंदर या ठंडे दूध के अंदर और उस गीली कॉटन से पहले वाइप ऑफ कर लीजिए पूरे फेस को अच्छे से ताकि जो डस्ट है मिट्टी है वो निकल जाए। उसके बाद आंखों के नीचे नहीं, होठों पर नहीं, आपको इस पूरे पैक को आप लगा सकती हैं
1: जी,
0: है ना, आंखों के नीचे छोड़ दीजिए, लिप्स छोड़ दीजिए,

0: और आप पूरे फेस पर लगाकर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, 10 मिनट्स इनफ है, आप लगाकर छोड़िए। और उसके बाद थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, गर्म पानी हल्का हल्का छींटे मारते हुए फेस पर धीरे धीरे से आप साफ कर देंगी। तो सबसे अच्छा इस पैक का ये फायदा होगा कि एक तो आपको वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी नहीं देगा और बहुत ऑयलीनेस भी नहीं देगा, बैलेंस कर देगा आपकी स्किन को। साथ साथ जो ब्लैकेट डिवाइडेड है आपकी नोज साइड में, वहां पे यदि आप हल्का सा प्रेशर देते हुए साफ करती हैं तो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे वो आपके। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको प्रथमा ये कहूंगी कि जो टीनेजर्स हैं उनको ये स्पेशली यूज करें, क्योंकि उनके लिए हम कई बार सोचते हैं कि उनको हम क्या बताएं,
1: कोई प्रोडक्ट लगा नहीं सकते,
0: क्योंकि उनको हम इतनी सुंदर स्किन होती है उनकी और हम डरते हैं कि कोई केमिकल यूज नहीं करें उनके लिए। तो ये हमारे घरेलू उपाय है जो कि हर घर में, हर किचन में बेसन और दूध तो अवेलेबल है। आप बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बालों के लिए सब्जी। तो बालों में भी हमारा यही प्रॉब्लम है सेम इसी से रिलेटेड। तो आप अच्छा सा हेड वॉश करिए अपना पहले। और शिका का ये आंवला रीठा आजकल सभी जगह अवेलेबल है, आप कहीं भी परचुनी की शॉप पर जाएंगे तो मिल जाएगी आपको
1: जी।
0: वो ले लीजिए, इसमें रीठे की मात्रा कम होनी चाहिए। शिका का और आंवला ले लीजिए, चलिए दोनों उसको 50-50% 50 ग्राम आंवला 50 ग्राम शिका का लेकर रात को आप भिगो दीजिए
1: जी।
0: और अच्छा सा मथते हुए उस पानी को निकाल लीजिए, फिर जो पानी आपके पास बच रहा है सुबह में रात को भिगोइए। सुबह आप उसे, कोई काली कढ़ाई में नहीं भिगोना है, नॉर्मल किसी भी कांच के या प्लास्टिक के बाउल में, मेटलिक का आप इस्तेमाल मत करिए। और उसके बाद उसे आप सुबह अच्छा सा मथ के छान लीजिए, पूरी स्कैल्प पे लगा के छोड़ दीजिए सिर्फ 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। और उसके बाद आप चाहें तो सादा पानी से वॉश कर सकती हैं, अदरवाइज आप शैम्पू वॉश भी कर सकती हैं। यदि आप मतलब हफ्ते में 2 बार भी आप इस्तेमाल कर लेंगी तो डैंड्रफ की बिल्कुल समस्या से आपको निजात हो जाएगा। साथ साथ शिका का और आंवला इस तरह की चीजें जो आपके बालों को मजबूत भी बनाता है, लंबा भी करता है, झड़ने से भी रोकता है, तो ये सारे बेनिफिट्स मिल जाए।
1: डॉक्टर रेखा जैन, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने योग और प्राणायाम के साथ साथ जो ब्यूटी थेरेपी आपने बताई, हमारे घरेलू नुस्खे हमारी सखियों को बताए, वो जरूर इससे लाभान्वित होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: थैंक यू प्रथमा, थैंक यू सो मच।
2: सखियों, अभी आप और हम मिलकर सुन रहे थे ये भेंट वार्ता जिसका विषय था योग और सौंदर्य, और विषय विशेषज्ञ थी डॉक्टर रेखा जैन। और ये हमें यकीन है कि आज सखियां ये फेस पैक अपनाकर अपने आप को खूबसूरत जरूर बनाएंगी और साथ में ये गीत भी गुनगुनाएंगी।

0: FM 102.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: आज पिटारा में
2: हेलो
1: हेलो फरमाइश।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं यूनुस खान बोल रहा हूँ। स्टूडियो नंबर एक वो स्टूडियो है जहाँ हम अपने फोन इन कार्यक्रमों के लिए आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288 यानी 2867 0288 और 0224002466 यानी 400-24662। सोमवार को दिन में 11 बजे से रिकॉर्डिंग होती है। देश भर के श्रोता फोन करते हैं और कई श्रोता इस बात से निराश होते हैं कि उनका फोन नहीं लगता। दरअसल फोन लाइंस की अपनी सीमाएं हैं ना। देश के कोने कोने से जब हजारों लाखों श्रोता एक साथ कॉल करते हैं तो कुछ खुशनसीब श्रोताओं का कॉल लग जाता है और उनकी हमसे बात हो जाती है। बस ये है कि आप कोशिश करते रहिए। और हाँ, जहां से फोन कर रहे हो वहां शोर नहीं होना चाहिए। नेटवर्क अच्छा हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, कैसी हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं, मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए हम आपको कॉल कर रहे हैं सर जी।
0: गर्मी का मजा, ये बड़ा तंज है ये।
1: हर मौसम का अपना मजा है सर जी। यदि अपन बारिश से फिर ये गर्मी धूप ढूंढेंगे तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा ना।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल की गर्मियां कहर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?
1: नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सभी मौसम के आदी हैं और हमें हर मौसम में अपना उनका मजा लेना बहुत अच्छा लगता है।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, फिल्म का नाम है हम आपके है कौन।
0: अच्छा,
1: उस फिल्म में लता मंगेशकर SP बाल सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत है सर जी, उस गीत को प्ले कीजिएगा
0: जी।
1: गीत के बोल मैं थोड़ा गुनगुना के बता दूं क्या सर जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: से जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, कुछ पल की जुदाई फिर लौट आना है। ये वाला गीत सर जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम पूनम नायडू है और आप बस्तर से हैं, तो बस्तर में कब से हैं आप या यहीं पैदा हुई हैं?
1: नहीं, हम यहीं पर पैदा हुए सर जी। जब MP था, मेरे पापा का जॉब यहाँ आंध्रा से यहाँ हो गया तो हम लोग यहीं पे बस गए, मम्मी पापा, और हमारी पैदाइश जो है यहीं पे हुई MP में। बाद में डिवाइड हुआ ना छत्तीसगढ़ और MP।
0: अच्छा, तो आपको तेलुगु आती है?
1: हाँ, तेलुगु पूरा बोलते, घर में तो हमारी मातृभाषा है ना सर जी।
0: तो बताइए तेलुगु में इस बात को कैसे बोलेंगे कि सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गाना।
1: पाटा।
0: अरे बाप रे बाप। नहीं, इसको को थोड़ा छोटा बोलिए। वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा। सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश,
1: राकेश यादव बोल रहा हूँ, सासनी के टलीगढ़ से।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, ठीक है।
0: क्या काम करते हैं?
1: दुकान करते हैं मोबाइल के, टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
0: जी,
1: बहुत काफी समय पहले से रेडियो भारती सुन रहे हैं।
0: अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: आशा पिक्चर का ही गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आखिर टूट जाता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, तू ही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी की बोल नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच नहीं रही और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर।
0: जी चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे
1: हैं? हम अपने एमपी सागर से बिक्रम सिंह और चालू राजा।
0: बिक्रम सिंह सागर में कौन से इलाके से बोल रहे हैं?
1: सागर इलाके में तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
1: क्वायला क्वायला।
0: अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं आज?
1: अब बैठे हैं सर, छोटी सी किराने की दुकान है भी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है, अभी आपको थोड़ी राहत मिल चुकी है।
0: काय बारिश हो गई का?
1: जी बारिश हो गई दो दिन तक में।
0: अच्छा कितनी बारिश हुई, बहुत सारी हुई या थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी हुई है सर, ज्यादा तो नहीं भाई है।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: अभी तो नौ तपा चल रहे, ये खत्म हो गए?
1: जी सर, बिल्कुल। तीन दिन बाकी
0: तनक बाकी है, तीन दिन बाद तो फिर बारिश आ जाए, फिर मौज हो जाए। काय
1: जी सर।
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं ये बताओ?
1: हमको सुना है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा तो हमारा।
0: ए दद्दा रे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? का होगा हमें तो बताओ।
1: आपसे बात करके
0: मजा आ गया, हमसे बात करके हमें सो ही मजा आ गया, आपसे बात करके
1: आनंद आया सर।
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया, हमें जितने भी अपने श्रोता हरण है ना, सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है।
1: आपका बिल्कुल सर, बुंदेलखंड जैसा वक्त का है बिल्कुल आपका।
0: बुंदेलखंडी आए अपन शुद्ध वाले। हाओ तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।
2: क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों

पेड़ खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है, ये मच्छर दीन बजाते हैं, वो अपना राग सुनाती है, वो ठुमक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं, एक तारा मेरे भैंस को डंडा।

हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो रेल के डिब्बे हैं वो अपनी इंजन गाड़ी है। वो गुस्सा जब भी करती है तो बन जाती है अंगारा। मेरी भैंस को डंडा

जान से बढ़कर प्यारी है, क्या बोलूं एक कटारी है, वो जान से बढ़कर प्यारी है, क्या बोलूं।

0: दोनों का है नाम रखा, है नाम रखा जहां नारा। मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का बोझा करती थी।
1: मेरी भैंस को डंडा।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी कौन?
1: मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ।
0: ज्योति जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा बताइए, क्या हालचाल है पीतमपुर के?
1: जी बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़ रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं
1: जी?
0: अब हमें ये बताइए, हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
1: गर्मी के से बचने के लिए बाहर जाए तो तावील लेके जाए, छाता लेके जाए, पानी अपने साथ लेके जाए।
0: बहुत सही, बिल्कुल।
1: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले।
0: सही बात है। अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश है?
1: गाना फिल्म का नाम है सूरज, तुमसे इतना प्यार है।
0: क्या बात है, चलिए बातें करते हैं पूरी और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: अच्छा बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अनिल नाइक बोरोली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: पैसा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। पैसा
0: गाने के बोल बताइए।
1: जिन्हें ना जाए इन लोग पर वो कहाँ है।
0: क्या बात है, साहिर लुधियानवी के बोल, शानदार गाना, SD बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या गर्व था।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुलगोविंद मिश्रा उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने दिल्ली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर।
0: जी
1: बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा सर।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
1: जी
0: बताइए, क्या हालचाल है आपके इलाके के, उड़ीसा के?
1: जी हालचाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत, हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये तीन दिन से थोड़ा सा मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी जी, बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
1: जी जी,
0: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
1: जी हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश, और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर, वो वाला फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक जो शुरुआत किए है, एक बजे जो सुनता हूँ वो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी दोस्ती फिल्म का राही मनवा, दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपना

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश यूनिस साहब, कैसे हैं आप?
0: जी मैं अच्छा हूँ।
1: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे में नहीं। आप तो मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोले तो मजा आ गया। क्या बात है
0: मजा आ गया, क्या बात है। कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। आपके बड़े सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका। जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे, बड़ी जलन होती थी।
0: अरे बाप रे,
1: मैं भी बात कर रही हूँ। यस,
0: क्या बात है। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना।
1: पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और से, यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात।
0: ओहो, क्या बात है।
1: वो राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है, वैसे ही मैं, आप भी मेरे जहन में हो
0: जी।
1: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत। सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ
0: जी।
1: लोग मेरे से तंग आ गए, कितना बजाओगी करके।
0: अच्छा विविध भारती का साथ इसी तरह से बना रहा है आपके साथ, है ना?
1: मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूं, उनका यही लक्ष्य है बस।
0: क्या बात है जी। तो बताइए, कौन कौन से कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब रहे हैं?
1: सभी कार्यक्रम, ज्यादातर पिटारा के सारे प्रोग्राम
0: जी,
1: वो बहुत अच्छे रहते हैं
0: जी।
1: और हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, और सब आप अभी तो एकदम से मैं एक्साइट हो गई हूँ, प्रोग्राम के नाम ही याद नहीं रहे आपसे बात करते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: सबसे ज्यादा तो आज के फनकार मैं सुबह जरूर सुनती हूँ
0: जी।
1: सुबह 8 बजे से लेके मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है, न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
0: अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
1: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
0: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद है आपको।
1: अरे अरे, मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले याद है, पूरा गाना सुना सकती हूँ।
0: वाह वाह वाह, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो आप कहती है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्या बात है,
1: क्या बात है।
0: जी शुक्रिया।
1: आप बिलीव नहीं करो, आई एम 57 नाउ, और मैं

0: कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
1: ये लंबा सफर तय किया आपने विविध भारती सुनते हुए।
0: बस सब आप लोग पुराने गाने सब, मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बचती।
1: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
0: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात। थैंक यू।
1: शुक्रिया, हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यही करते हैं खत्म और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी बताइए।
1: एकदम बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेतीबाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है, और बरसात जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
0: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम?
1: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया, मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुत आयत सबके घर में मिल जाते हैं।
0: सही है सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
1: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। और कई इसके कारण होंगे भैया, सबसे ज्यादा तो यही अपन जो देखते हैं पर्यावरण में हस्तक्षेप करना, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
0: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म है राजा और रंग के गीत के बोल है, ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
0: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-24662। अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 4002-4662। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया दो महीने तक हमें फोन ना करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
3: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। मैं आपकी रेडियो सखी

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

है और जान इश्क है, इश्क सरमत इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, काक को बुत और बुत को

मिताली सिंह की आवाज थी। एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM 102.103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग कड़ी संख्या 1300।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार।
1: और

0: अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
1: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
1: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
1: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
1: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
1: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
1: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
1: जी,
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: जी,
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
1: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: क्या बात है!
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है! श्रोता, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गाँव में सरकारी प्राथमिक स्कूल है। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गाँव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी,
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के

0: डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: तभी तो ऐसा हो रहा है।
3: महाराज की
4: बहुत अच्छे से शासन कर रही
2: है। खास ऐलान।
1: शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
5: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
2: जी महाराज, बहुत कृपा।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं।

0: और ईमानदार भी हैं। परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
0: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
2: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
3: हुआ? मेरे साथ मिला, मुझे भी कैसे हो सकता है
2: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली, तुम
3: कैसे
2: हो
3: सकता है? नकली ही ना दे सकता,
2: नकली कैसे आ गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
0: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें। महाराज
1: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
0: धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
0: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
4: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
6: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलग रूम में चलती।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन

0: को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: आर बी सी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग कड़ी संख्या 1300 FM 102.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ।
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा।
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो?
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। श्रोताओं, दिन का एक बजने वाला है। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रकृति का संतुलन को बनाए रखना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने ये बात कही। श्री शर्मा ने कहा कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और ये हम सभी का दायित्व है कि हम भी उसे बदले में कुछ दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया।
3: प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ हमें देती है। जो आपकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हमारी ये प्रकृति करती है। सब कुछ हमें देती है, इसको कुछ हम भी देना तो सीखें। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते। चाहिए कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि इसके क्षेत्र में मैं ये काम करूंगा, या मेरे खुद के व्यवहार में चेंज लाते हुए मैं पानी की बिजली की बचत भी करूंगा और पर्यावरण में मेरा सहयोग करूंगा।
2: मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य को कई सौगात दी। उन्होंने अलवर और भिवाड़ी में

अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से इन औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पता लगाया जा सकेगा। इस दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल और सीएसआईआर सीरी पिलानी के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एमओयू किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासन में इको फ्रेंडली तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने चार औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए ग्रीन को रेटिंग पुरस्कार दिए गए। श्री शर्मा ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चार नए क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया। ये कार्यालय जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा और झुंझुनू में बनाए जाएंगे। उन्होंने 7 वन पौधशालाओं का भी लोकार्पण किया। साथ ही वन्य जीवों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए 8 प्री बेस एनक्लोजर का लोकार्पण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर शुरुआत की। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई। गंगा दशमी से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आज ही संपन्न हो रहा है। अभियान के तहत सभी जिलों में समारोह रखे गए हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को जल गौरव सम्मान दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा की खारी का लांबा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह गांव का भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री का गांव की प्राचीन बावड़ी में जल पूजन का भी कार्यक्रम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा का जयपुर में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने इसे सहकारी परिवहन पहल को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जयपुर के नागरिक अब भारत टैक्सी की बाइक, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर में लगभग 13,000 टैक्सी चालक इस प्लेटफार्म से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि नए ग्राहक ऐप के माध्यम से यात्रियों को सुलभ किराया, पारदर्शी और निश्चित दरें, एसओएस आपातकालीन सुविधा, स्थानीय और विश्वसनीय चालक तथा बेहतर ग्राहक सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

तो भी ये गाना आपने सुना फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी आई है और ज़्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार आई हैं और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा है मानी जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां। जहां दिन भर महुआ पर झूले, रात को चुपड़ते हैं फूल। जहां दिन भर महुआ पर झूल, रात को चुपड़ते हैं फूल। बांस के झुरमुट में चुपचाप जहां सोए नदियों के कूल। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां। विहग मृग का हो जहां निवास, जहां अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी काफी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूंकि टिप्पणियां आ रही, तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफर में एक खूबसूरत लड़की, पहाड़ देवदार के बगीचे में बहार के झरना, नदी चलता नीले नंबर अंबर, चांद जब आए हमको तरसाए, बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युति का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाजा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है, लेकिन कहीं उन जो वो लड़की है ख्वाबों वाली पहाड़ वाली लड़की, उसके साथ जो शब्द हैं उन शब्दों पर गाने लिए गए हैं। और उस इबारत से आपके मन में जो कविता आ रही है वो भी आप लिखिए, और आपके जहन में जो गाने आ रहे हैं वो भी सुझाइए, हो सकता है आपका गाना हम शामिल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुमराह फिल्म का गाना सुनवाते हैं, तो बताइए कि इस कविता से कौन सा वाला शब्द इसमें शामिल है। हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था, वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है, और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्झर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा की सरसराहट, नदियों की चंचलता को जीवंत कर दिया है। जरा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं, अगर तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। इस आज के इस प्रोग्राम के टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहे तो रोज एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, जरा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्ची में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ, हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी, ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्ची में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नज़ारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियां, आसमान, बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी, वातावरण वाली आवाज, मीठी आवाज।

तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थीं और फिजाएं थीं और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, जरा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफर में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले, तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं।

एक बजे भी शुरू हो चुका है कार्यक्रम और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो, पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ खास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढीला मार के फेंकते थे, टूट कर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म दो दूनी चार, बताइए किसकी है आवाज, किसका है संगीत और किसका है गीत।

दो दुनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है, या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहाँ एक खाने पीने की चीजें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहां पर जब पैरों में पॉलीथिन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ सफाई का ख्याल भी रखें। फिलहाल सुने ये गाना।

दिल्ली का ठग फिल्म का गाना, आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी, आज की इबारत से समझ में आ रहा है। भाई अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनूं उड़ते फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फेहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नजारे हैं, बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

0: फिनिल झरने सुंदर कुदरती नजारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, जरा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे नदी तालाब ही तो हैं, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं, गांव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: मर करे पुकार प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी की बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटकेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहाँ पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थी जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सबके सब कहाँ खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहाँ हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहाँ पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियां हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी जरा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार।

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़े और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं

फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी, ये गाना और नील गगन की छाँव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफर में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है, तो आप बताइए क्या था। हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गाने में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे। साधना और जॉय मुखर्जी, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफर। ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े

उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी, आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता चरण।

आओ सब भारतवासी, आओ सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग भंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

अपनी एक और कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो।

0: अधिवेशन विस्फोटक होगा इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
0: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
2: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा, इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी

0: 12 साल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
1: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहाँ के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
2: परंतु ये सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है, ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
0: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बैरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्थे भीड़ पर हमला कर दिया।

इस हमले के लिए फुलर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुलर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे।

0: पुलिस के निर्दय लाठी चार्ज से फणीन्द्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन गुह ठाकुर, अरविंद बाबू, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर लहूलुहान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठी चार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
1: आप अपनी पुलिस को रोकिए, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियां खड़ी होंगी। अपनी पुलिस को रोकना आपका कर्तव्य है।
0: कैंप ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया,
2: मेरा ड्यूटी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके सलाह का जरूरत नहीं है।
0: पर कुल मिलाकर घटना की गंभीरता समझकर उन्होंने लाठी चार्ज बंद किया और आसमान में बस दो ही शब्दों की गूंज बार बार आती रही।
3: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग समृति नाइक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 31वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी।

0: देखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। SOCHM के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति

0: पति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर भोकली है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को

0: इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी के बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए।

0: और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर हिसार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: तो हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है। मैम आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: बरगढ़ जिला उड़ीसा से संत प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ आकाशवाणी के, सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ, पढ़ाई तो खत्म है, कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो
0: हाँ।
1: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे, उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं, मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में कौन निकलना,
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो सिर डॉक्टर जाना है।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: आप बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने

0: जो बच्चे हैं उनको अब जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, वो सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को ही आता है 9 बजे। अच्छा, छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं घर में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं, क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से?
1: मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं मैम हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है।
0: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी मैम, अभी 2-3 महीने हुए।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं नहीं नहीं
0: नहीं नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं, मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: मैम अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़ा।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास हैं।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप

0: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी। तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।
2: तू कितनी अच्छी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ
0: जी। तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं?
1: तो सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, तो मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता है, भोले विष्णु संगीत सरिता, भोले विष्णु गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता है, किचन में चलता रहता है, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर रुचि है ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है,
0: ये अच्छी चीज है।
1: और हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना। घर में मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह,
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ। मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पिया जो है जबलपुर का है
0: जी,
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा, इतना पेड़, अमरूद।

0: खुद शरीफा आता है जबकि फलिया इतने पौधे में पेड़ में मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो हमारी हमारी जीवन देते हैं जवाब।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: गाना सुनूंगी जागो साइड खान का, नाचो तो बंसी बजा। हाँ
1: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सैगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपका बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती, पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी मतलब अब छोड़?

0: रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे डांस, बिल्कुल म्यूजिक तो ऐसी चीज है।
0: जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत।
0: जी, तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं रत्ना बोल रही हूँ। हाँ, रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा रत्ना जी बोल रही हैं, कहाँ से?
1: बाराबंकी से।
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं ऐसे तो हाउसवाइफ हूँ, मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है
0: जी। और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउसवाइफ है। क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है।
1: बिल्कुल बिना रुके बिना थके।
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए।
0: बिल्कुल।
1: जो है
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे।

0: है, बहू है, पोती है।
1: बहुत बढ़िया। तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से।
0: जी जी जी
1: जी। तो बताइए जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
0: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
1: अच्छा अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
0: हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है।

0: पानी वानी डालते हैं।
1: अच्छा अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
0: हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
1: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है ये।
0: और साथ
1: वही तो हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना।
0: तो बिल्कुल आती हैं, सब खेलती हैं,
1: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना?
0: जी।
1: तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
1: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है।
0: तो आप कहाँ से?
1: मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जाकवर सिंह ने का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: ये हो रही है कि आज सखी सहेली को मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो अच्छा। तो बर्थडे के गीत सुनाई देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जो सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा?
1: अच्छा
0: ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको, पसंद करिए ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई हैं पता है? कह रही थी जो हुकुम, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा।

मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। दो दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मिली। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया, ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर

उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था, इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना, अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी। भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं। और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है, मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ, आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे। अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

सुर्खियों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।

0: के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

FM 102, 103.6, 6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से, न केवल देश बल्कि विदेश में भी, कहीं भी और कभी भी। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी।

0: नई उमंग, नए जोश और नई सोच के साथ आपका स्वागत है आपके पसंदीदा युवा कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त खुशी
1: और मैं हूं मनीषा। तो सभी सुनने वालों को हम दोनों की ओर से हंसता खिलखिलाता प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, युवाणी एक ऐसा मंच है जहां हम बात करते हैं युवाओं के सपनों की, उनकी चुनौतियां, उनकी उपलब्धियों और उनकी प्रेरणादायक कहानियों की।
0: तो दोस्तों, अगले एक घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस दौरान हम लेकर आएंगे ढेर सारी रोचक बातें, उपयोगी जानकारियां और मनोरंजन का भरपूर तड़का।
1: जी हाँ दोस्तों, आने वाले इस एक घंटे में होगा ज्ञान, प्रेरणा और मस्ती और संगीत का खूबसूरत संगम।
0: तो दोस्तों, इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं संगीत के साथ और सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों ये लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हेल्थ ही हमारी असली वेल्थ होती है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम अक्सर पढ़ाई, काम, मोबाइल और भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शरीर ना जो हमें छोटे छोटे संकेत देता है, अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
1: लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाती है। कई बार लगातार थकान रहना, सिर दर्द होना, नींद पूरी ना होना, भूख कम लगना और बार बार बीमार पड़ना, ये सिर्फ मामूली बातें नहीं होती, बल्कि शरीर हमें चेतावनी दे रहा होता है कि अब अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।
0: आज के समय में युवा सबसे ज्यादा तनाव, अनियमित दिनचर्या और गलत खानपान का शिकार हो रहे हैं। रात भर मोबाइल चलाते हैं, घंटों स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत गलत है।
1: तो ऐसे में खुशी हमें जो है

0: हमारा जो बॉडी हमें जो चेतावनी दे रही होती है, तो हमें इसको समझना है, हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जैसा कि तुमने बताया, हेल्थ इज वेल्थ है, तो हम दोस्तों से यही कहेंगे कि अपना ध्यान रखिए दोस्तों। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: तो श्रोताओ, युवानी कार्यक्रम से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपको ले चलते हैं दिल्ली केंद्र की ओर, और आपको सुनवाते हैं विशेष कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गांव के निवासी हैं और ये छात्र हैं, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
3: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पी रहे थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
2: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
3: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
2: आप जब उस समय नदी की स्थिति या उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
3: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
2: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
3: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया 30 से 40 दिन

0: तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोटल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
0: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
0: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
0: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
0: हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
1: क्या ये आपको उपकरण से जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो जीरो फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह से यह कार्य करके साबित किए, बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है।

0: वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
1: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
0: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
1: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का भी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
0: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त खुशी,
5: और मैं हूं मनीषा।
4: दोस्तों अभी आपने सुना दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: मनीषा, आज सुबह ना मैं बाहर निकली तो मौसम बड़ा सुहाना लग रहा था।
1: अच्छा,
0: हल्की सी ठंडी हवा, पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की आवाज, सच में मन खुश हो गया।
1: खुशी वैसे मन तो खुश होना ही था क्योंकि मौसम ही आजकल इतना सुहाना सुहाना सा हो गया ना। सुबह सुबह कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा होती है और मौसम अब ठंडक आ गई है। इतने दिनों से जो हम गर्मी की तपिश सहन कर रहे थे ना, उससे हमें राहत भी मिली है। तो वाकई में मौसम अच्छा है, लेकिन सोचो अगर ये पेड़ पौधे, साफ हवा और प्रकृति ना हो तो हमारी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाए ना।
0: सही कहा तुमने मनीषा, और इसी वजह से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आज के हमारे जो सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर है, उसमें हम इसी खास दिन के बारे में बात करेंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत जो हुई थी वो आज ही के दिन से हुई थी। यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी और इसका मोटिव जो था, लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक करना और उसे बचाने के लिए प्रेरित करना था।
0: आज के समय में पर्यावरण से जुड़ी कई समस्याएं सामने आ रही हैं, जैसे बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, पेड़ों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग।
1: और इन सब का असर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी महसूस कर रहे हैं, है ना खुशी?
0: बिल्कुल,
1: कभी अत्यधिक गर्मी तो कभी अनियमित बारिश तो कभी पानी की कमी जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। और मौसम जो है ना, कभी हर कभी कुछ भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता, है ना खुशी?
0: बिल्कुल दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ जंगलों और पहाड़ों तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास की हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं।
1: और अच्छी बात यह है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे जो हमारे स्टेप हैं वो भी बड़ा चेंज ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे पानी की बर्बादी रोकना, बिजली बचाना, प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट के बैग इस्तेमाल करना और आसपास साफ सफाई रखना।
1: और दोस्तों, इसके अलावा अगर हम अपने जन्मदिन पर, किसी खास मौके पर या किसी यादगार दिन पर एक पौधा लगाए ना खुशी, तो और उसकी देखभाल करें, तो ये प्रकृति को जो है ना सबसे सुंदर उपहार होगा। वैसे तुमसे खुशी एक बात ये मैं कहना चाहूंगी कि यदि हम पर्यावरण की रक्षा करते भी हैं, हमें करनी भी है, तो ये हमारा प्रकृति पर कोई उपकार नहीं है, बल्कि ये तो हमारी अपनी सांसों और

0: आने वाली नस्लों की वजूद की जंगे, क्योंकि जब तक प्रकृति सुरक्षित है तभी तक हमारा अस्तित्व है।
1: बिल्कुल सही बोला तुमने, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, वो भी विदाउट एनी चार्ज, बिल्कुल फ्री हमें मिल जाता है ना, तो मुझे लगता है हमें तब भी उस चीज की कदर नहीं होती है, हम उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि इतनी आसानी से मिल गया तो। लेकिन हमारी भी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी प्रकृति की देखभाल करें।
0: बिल्कुल, तुमने कहा जैसा कि हमें बिना किसी चार्ज के मिल जाता है तो हम फ्री की उसकी कदर नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये बात याद रखनी है कि प्रकृति से हम है, हमसे प्रकृति नहीं है। और पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का काम नहीं है कि आज पर्यावरण दिवस है तो बस आज ही के दिन हम इसकी बात करेंगे खुशी। हम ऐसा नहीं करना है, बल्कि रोज की आदत होनी चाहिए कि हम ऐसा काम करें कि हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक का यूज कम करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे।

0: दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसी पर अब हम सुनते हैं डॉक्टर सबरीना अंसारी से विशेष भेंट वार्ता, जिसका विषय है पर्यावरण सुरक्षा का प्रण।
1: युवा दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और युवा दोस्तों, स्वागत की ये बात अगर हम आपसे कहें तो ये स्वागत लंबे समय तक हम तब कर सकते हैं जब हम अपने जीवन के लिए इस पर्यावरण को बहुत सुखद बना पाएं। बात बार बार पर्यावरण पर इसलिए आ रही है श्रोताओं कि हम कई मायनों में ऐसा मानते हैं, कई रास्ते इस तरह के हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत सजग नहीं हैं। अगर हमें जानकारी भी है लेकिन हम काम वैसे नहीं कर रहे हैं। आइए आज एक और हम कदम बढ़ाएं कि इस पर्यावरण की सुरक्षा हम कैसे रख पाए। हमारे साथ डॉक्टर सबरीना अंसारी मैम हैं, आप PhD इन लॉ। इसके अलावा खास बात यह आज की इस बातचीत का कि आप पर्यावरणविद हैं, क्योंकि आपने पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय हरित अधिकरण इस विषय पर PhD कर चुकी हैं। और इसके अलावा एक और खास बात है मानव वन्य जीव संघर्ष, इस पर यह विषय हमने क्यों कहा जानेंगे आज डॉक्टर सबरीना अंसारी मैम से। मोहतरमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच सर। नमस्ते, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 जून को इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस, हम एक उत्सव दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये उत्सव दिवस आज हमारे लिए एक आत्ममंथन का विषय बन चुका है कि हम हमारे इस पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर पाए और किस तरीके से हम सुरक्षित करके हम आने वाली पीढ़ी को ये सुरक्षित पर्यावरण सौंप पाए। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। अब इस चिंता के विषय के ऊपर हम सोच तो बहुत कुछ चुके हैं, लेकिन हम करने की कितनी पहल रखते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: वाकई आपने कहा कि चिंता का विषय है, तो इस पर हमें चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। वैसे कई लोगों को जानकारी होती है कि हमें पर्यावरण के लिए अमुक अमुक काम करने चाहिए, लेकिन शुरुआत कैसे करें और शुरुआत क्या हम ही करें, ये एक खास बात होती है। डॉक्टर सबरीना अंसारी जी, हमने आपके परिचय के तौर पर श्रोताओं को बताया कि आपने लॉ में PhD की हुई है, इसके अलावा आपने पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय हरित अधिकरण इस विषय पर भी PhD की है। ये दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन दोनों ही महत्व के विषय हैं। आपने इन विषयों का चयन कैसे किया?
2: इस विषय को चयन करने की वैसे एक बहुत लंबी कहानी है, फिर भी
1: आप जरा संक्षिप्त में
2: मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो सिंचाई विभाग में एक्शन रहे हैं। 2019 में वो रिटायर्ड हुए, तो कहते हैं कि जो आप चीजें देखते रहते हैं तो वो आप चीजें कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतार लेते हैं। तो मैंने अपने फादर से इंस्पायर्ड होकर इस टॉपिक को सेलेक्ट किया, चुना, और पर्यावरण कहीं ना कहीं ये चीज को भी दर्शाता है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में अगर सुरक्षित पर्यावरण नहीं रखेंगे तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी कुछ नहीं दे पाएंगे और अपने आप को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और आपने एक चीज मुझसे जो पूछा कि आप पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या पहल अपने आप से करें या फिर सामने वाले से अपन पहल करें, नहीं सर, शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी होगी।

0: क्योंकि अगर हम दूसरों को ये चीज सौंपने लगेंगे तो सामने वाला हमसे ये कह सकता है कि आपने अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या किया। तो सबसे पहले आप अपने जीवन में इस चीज को अनुशासित तौर पर उतारें कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कैसे करें। जैसे हम हमारे घर में अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को संरक्षित करके, संचित करके रखते हैं, वैसे हम पर्यावरण को संरक्षित करें।
1: क्या बात है, बहुत ही महत्व की बात कही है आपने कि हम अपने परिवार में जिस तरह से महफूज रहते हैं।
0: जी सर।
1: और आपने बताया कि परिवार के हर एक सदस्य को हमें अपना बनाना होता है, वैसे पर्यावरण को भी हमें अपना परिवार मानना चाहिए और उसके जो सदस्य हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो नदी तालाब हैं, हमें उन्हें सुरक्षित रखना होगा। हम आपसे ये बात करें कि एक वाक्यांश हमने और बोला था, मानव वन्य जीव संघर्ष।
0: जी, मानव वन्य जीव संघर्ष का अभी आपने देखा होगा सर कि सवाई माधोपुर के कई सारे किस्से हमारे सामने आए।
1: जी,
0: कि एक बाघ ने एक बच्चे को पकड़ा और वो लेकर चला गया और उसकी दादी देखती रही और वो इतनी निहत्ती थी कि वो अपने पोते को, अपने बच्चे को बचा ही नहीं पाई।
1: जी।
0: तो ये परेशानी आई तो क्यों आई, सबसे चिंता का विषय ये है क्योंकि आप देखें कि जो इस वातावरण के अंदर, जो पर्यावरणीय वातावरण है उसके अंदर संतुलन खत्म हो चुका है। अगर संतुलन प्रॉपर वे में रहेगा तो चीजें बिल्कुल बैलेंस रहेंगी, संतुलित रहेंगी, लेकिन उस बाघ का सड़क पर आना ये संकेत देता है कि जो उनका जंगल का दायरा था, वो जंगल का दायरा इतना था कि हम उन जंगलों तक अपनी औद्योगीकरण को लेकर इतने चले गए हैं सर कि उनका दायरा खत्म हो चुका है। और उनका दायरा जब खत्म हुआ तो वो सड़कों पर आने लग गए, रोड पर आने लग गए और हमारे ऊपर क्या करने लग गए हैं, वो बिल्कुल
1: प्रहार करने लग गए हैं। हमें आहार बनाने लगे हैं। जी, ये यहाँ एक बात ये मानी जाती है कि शेर जंगल का राजा होता है, उसका अधिकार क्षेत्र होता है जंगल, अगर वहां हमने अतिक्रमण कर लिया तो फिर हमने अपना दायरा तोड़ा तो फिर उन्हें भी अपना दायरा तोड़ना ही पड़ेगा। जी, ये आपने बहुत ही खास बात कही कि मानव और वन्य जीव का संघर्ष, इसके पीछे और हमें जानकारी लेनी पड़ेगी और जानकारी लेकर तदनुसार ही काम करने पड़ेंगे। आपने जो बात बताई कि हम अपने भरण पोषण के लिए या फिर अपनी उस भूख को मिटाने के लिए जो कभी मिट नहीं सकती, हम अंधाधुंध जंगलों पर
0: कटाई कर रहे हैं सर, वनों की कटाई से हमारी ओजोन जो लेयर है उसको हम लोग डिप्लीडेशन करते जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम हमारी मानवीय गतिविधियों से जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसका मुआवजा तो सर हमें भुगतना ही पड़ेगा।
1: वाकई, अब सवाई माधोपुर के जंगलों की आपने बात कही, हम क्योंकि कोटा शहर में रह रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि दिया तले अंधेरा अक्सर होता है, मगर ज्ञान उस अंधेरे को दूर कर सकता है। अब हम अपने इस ज्ञान का और ज्यादा विस्तार करें कि हमें ये जानकारी है कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल मानव कर सकता है क्योंकि इसकी असुरक्षा का केंद्र भी मानव ही बना है, तो ऐसे में हम अपने कोटा का जो क्षेत्र है इसे सुरक्षित कैसे करें पर्यावरण के तौर पर।
0: सर, जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बोला कि सुरक्षित पहले अपने घर से करना पड़ेगा, छोटी छोटी गतिविधियों को हमें नियंत्रित करना पड़ेगा। जैसे एक शुरुआत हम लोग कहें सर, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर पेड़ पौधे हम चाहकर भी नहीं लगा सकते, तो अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं क्या कि सीड बॉल्स बनाएं। सीड बॉल्स का मतलब होता है कि उस बीज को उस मिट्टी के अंदर छोटी छोटी बॉल्स बनाएं और जहां पर भी हम सफर कर रहे हैं उन बॉल्स को वहां पर डालें ताकि क्या है वो अंकुरित होकर और वहां पे जहां पहुंच भी नहीं पा रहे हैं उन चीजों को हम लोग इस तरीके से डेवलप करें ताकि वो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख पाए। दूसरा ये कि अगर मान के चले हम लोग हमारे कोटा शहर में रह रहे हैं तो सबसे पहले कोटा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, इंडिया की बात करूं या वर्ल्ड की बात करूं, सबसे पहले हमें हमारा घर सुरक्षित करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो चंबल रिवर, आप हमें पता है कि कोटा का सबसे जो बेसिक जो वाटर सोर्सेज है, लाइट सोर्सेज है, सब चीजों का जो बेसिक सोर्स है वो हमारा चंबल रिवर है। चंबल रिवर के अंदर चंबल अभयारण्य जो बना हुआ है सर, वहां पे घड़ियाल सुरक्षित नहीं है, कछुए सुरक्षित नहीं है, गोगोई डॉल्फिन से वो सुरक्षित नहीं है,
1: ऑटर्स भी
0: तो,
1: है जो
0: हाँ, तो ये सुरक्षित क्यों नहीं हो पा रहे और हम हमारे ही कोटा सिटी के अंदर उनको सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रहे। हम पहल तो हमें ही करनी पड़ेगी, बाहर वाला आकर नहीं।

0: सकता है, हमें ये पहल खुद करनी पड़ेगी। आपको पता होगा कि जो सूरज की जो रोशनी है वहां पे जो तट है, जो किनारे हैं, वहां पे इतनी काई जमी हुई है कि उन जीव जंतुओं के पास में उस सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और वो अंदर ही अंदर मर जाते हैं सर।
1: ओहो, क्योंकि जो स्वच्छ पानी होता है वहाँ नीचे तक सूरज
0: तो वहाँ पे काई इतनी जम गई है, उस काई की वजह से नीचे आपकी ना रोशनी पहुंच पा रही है ना हवा पहुंच पा रही है, तो वो वहाँ पे, तो इससे हमारा पर्यावरण तो नुकसान में है ही सही, हमारी अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही है। तो हमें इन सब चीजों को क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा। फिर अगर मान के चले हमारे जो एलिगेटर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, वो जो अपने बच्चे देते हैं, जो अंडे देते हैं, वो रेत्स के अंदर देते हैं, जो मिट्टी होती है, तो इल्लीगल माइनिंग इतनी हो रही है सर चंबल किनारे पर कि उस इल्लीगल माइनिंग की वजह से वो अपने अंडे नहीं दे पा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ जो एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर हम लोग फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे और जीव जंतु को हम लोग सुरक्षित कर रहे हैं, और जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उन विलुप्त प्रजातियों को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम कर कहां पा रहे हैं
1: जी।
0: तो हमें इनको सुरक्षित करने के लिए सारी चीजें करनी पड़ेंगी। दूसरा ये कि हमें ये पता है कि जो चंबल, पूरे कोटा के अंदर 26 नाले ऐसे हैं सर जिसके अंदर हम डायरेक्ट जो नालों का पानी है वो चंबल के अंदर डायरेक्ट उसका पानी जा रहा है
1: बिना किसी ट्रीटमेंट के।
0: लेकिन अब आप ये देखें कि पूरे कोटा के अंदर 312 मिलियन पर लीटर पर डे हम लोगों का जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी मतलब जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो गंदा पानी है, ओनली 50 मिलियन लीटर पर डे ही ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज हमारे पास है। तो जो 260 मिलियन लीटर पर डे का, वो तो हम गंदा ही उस पानी को अंदर डाल रहे हैं ना
1: जी।
0: तो हम लोग किस तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं, या तो हम हमारे जो पानी है उसके पानी के जो यूज को हम लोग कम करें, या तो, या फिर अगर हम कम नहीं कर पा रहे हैं तो जो ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटीज है उस ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज को हम लोग बढ़ाएं। तो हम संतुलित कैसे कर सकते हैं, हम कोटा को संतुलित इसी तरीके से कर सकते हैं सर
1: जी।
0: और नांदा रोड है, नांदा रोड पे पूरे कोटा का, पूरे कोटा शहर का कचरा हम लोग वहां पर लेकर जाते हैं, वहां पर डाल देते हैं, लेकिन उस कचरे का आगे करते क्या है। कोविड के बाद हम लोगों ने कितनी सारी चीजें सीखी हैं कि जो भी मिट्टी है उस मिट्टी को हम पॉल्यूट होने से किस तरीके से बचाएं। मिट्टी पॉल्यूट हो रही है, हम लोग खेतों के अंदर या कहीं पर भी जो केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स जो डालते हैं, तो उन फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स जो बारिश का पानी होता है वो बहकर दूसरी जगह पे चला जाता है, तो हम कहीं ना कहीं सारी चीजों को तो पॉल्यूट कर ही रहे हैं ना। तो हमें इनको बचाने के लिए काम करना पड़ेगा, और बचा भी ऐसे नहीं सकते सर कि हमने एक सेमिनार लगाया, हमने एक लेक्चर दिया, ठीक है बात काम खत्म हो गया, नहीं, हमें उस चीज को अपने अंदर उतारना पड़ेगा और एक्चुअल हमें करना पड़ेगा। और हम दिमाग में क्या सोचते हैं कि एक जने के करने से क्या होगा, हो सकता है सर मैंने एक बाल्टी आज पानी बचाया, ऐसे सब लोग पूरे कोटा के अंदर जितने लोग हैं अगर एक एक बाल्टी पानी बचाते हैं और पूरे 365 दिन अगर उस पानी को बचाते हैं, तो कितना पानी हम लोग सेव कर सकते हैं, हम कितनी मिट्टी को सेव कर सकते हैं, कितना कचरे को सेव कर सकते हैं, और हम लोग कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमें करना होगा
1: जी। आपने पर्यावरण संरक्षण पर और राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर पीएचडी की है
0: जी सर,
1: बहुत माइन्यूट आपने ये अध्ययन किए होंगे, और आपकी बातों की शुरुआत जो है वो इस बात का परिचय दे रही है। हम क्योंकि आपने लॉ में भी पीएचडी की है
0: जी सर,
1: तो हम आगे के पर्यावरण की अगर बात करें तो उसके पहले हम जरा ये भी बात करें कि वो कहते हैं ना कि कभी कभी दंड दे करके ही हम संभल सकते हैं, तो लॉ में कुछ इस तरह के प्रावधान है कि हम अगर इस तरह के दूषित माहौल को करें तो हमें किस तरह का दंड मिल सकता है।
0: लॉ के अंदर कई सारे एक्ट्स बने हुए हैं, सबसे पहला तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से बना। आपने एक बहुत फेमस इंसिडेंट सुना होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी।
1: बिल्कुल,
0: उस भोपाल गैस ट्रेजेडी के ही बात से पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए मांग आई, और वो मांग भी एमसी मेहता एक वकील थे, अभी भी हैं, तो एमसी मेहता ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पीआईएल का कंसेप्ट है उसके माध्यम से लोगों के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात कही है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है कि इसके पास इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट के पास में इतनी शक्ति है कि वो उस उद्योग को बंद भी कर सकती है, लाइट बिजली को भी काट सकती है, या

0: इंसिडेंट हो रहे हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो या सब लोगों ने सुना है आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, वहां पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, आप सबको जीने का अधिकार है लेकिन पशुव्रत जीने का अधिकार नहीं है।
1: क्या बात है।
0: तो जीने के अधिकार में एक तो होता है हम लोगों ने खाना खाया और एक होता है कि हम लोगों को ऐसे फेंक कर खाना दे दिया। डिग्निटी तो मेंटेन करनी है, तो जीने के अधिकार में हमारा स्वस्थ वातावरण और स्वच्छ हवा के साथ में जीने का अधिकार है। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 हमारा अधिकार हो गया। उसके बाद में आर्टिकल 48A हमारा फंडामेंटल राइट के साथ साथ में डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ये बताते हैं कि स्टेट की भी लाइबिलिटी है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। और एक आर्टिकल 51AG उसके अंदर भी डिफाइन किया हुआ है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है कि हम हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट से लेकर

0: दे दिया। डिग्निटी तो मेंटेन करनी है, तो जीने के अधिकार में हमारा स्वस्थ वातावरण और स्वच्छ हवा के साथ में जीने का अधिकार है। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 हमारा अधिकार हो गया। उसके बाद में आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A हमारा फंडामेंटल राइट के साथ साथ में डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ये बताते हैं कि स्टेट की भी लाइबिलिटी है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। और एक आर्टिकल 51AG उसके अंदर भी डिफाइन किया हुआ है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कि हम हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट से लेकर कई सारे ऐसे एक्ट्स बने हुए हैं जहां पर हम लोगों को अगर कोई भी ऐसा एक्ट किया जो इलीगल है तो हम लोग उसके अंदर हम पनिश कर सकते हैं। हर जगह पे सेक्शंस से प्रोवाइड किए हुए
1: जी। श्रोताओं, डॉक्टर सबरीना अंसारी जी हमारे साथ हैं और आज हम पर्यावरण के प्रति अपनी ओर से ली गई जिम्मेदारी का वर्णन करेंगे डॉक्टर साहिबा के द्वारा कि दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। और ये जो खास बात है कि हम सांस लेने से भी महरूम हो जाएं, तब हमें पता लगेगा कि काश हम एक कदम पहले से ही क्यों नहीं उठाया हमने। डॉक्टर साहिबा, यहाँ हम आपसे ये बात कहें कि जैसा कि आपने कहा कि एक तो हमारे कर्तव्य होते हैं, एक अधिकार होते हैं। अधिकार जब बहुत ज्यादा हम फैला लें तब हम अपने कर्तव्य भी कई बार नहीं निभा सकते, लेकिन कर्तव्य के बिना हमें जीने की खुशी नहीं होती। पर्यावरण में आपने जल के सुरक्षा की बात कही, जल को शुद्ध हम रखें इसकी बात कही, भूमि भी दूषित हो रही है और वायु भी प्रदूषित हो रही है। हमने देखा है कॉलोनीज में लोग अपने घरों की सफाई करके और बाहर उसे उस कचरे को अगर उनको लगता है कि अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए तो उसको जला देते हैं। यहाँ भी हमें लगता है कि ये अज्ञानता ही है कि हम भूमि के दूषण को बचाने के लिए वायु को प्रदूषित कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल सही है। अभी कई सारी जगह हम लोगों ने जब सर्वे करते हैं देखते हैं तो कई सारी जगह पे कंटिन्यू एक शब्द दिया हुआ, एक कंटिन्यू एम्बिटी एयर क्वालिटी एक इंडेक्स है। उस इंडेक्स का 85% जगह पर आपका सर्वे पॉइंट ही नहीं है। आप किसी एयर पॉल्यूशन को अगर आप सर्वे करते हैं या मेजर करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट है या नहीं है।
1: जी, जी।
0: तो आप जब तक पूरे
1: डिवाइस नहीं है तो हमें पता नहीं लगेगा।
0: नहीं है कोटा में, राजस्थान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो आप एयर क्वालिटी को मेजर कैसे करेंगे? जब तक हमें बीमारी नहीं पता होगी उस बीमारी का हम इलाज
1: नहीं कर सकते। जी।
0: और अभी 2026 की थीम है जो अजरबैजान बाकू के अंदर हम लोगों का एक थीम अभी 2026 के अंदर, उसके अंदर एक बहुत अच्छा दिया हुआ है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आर फ्यूचर। अगर हम हमारे क्लाइमेट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग आगे जी नहीं सकते और हमें आज ही उसके लिए काम करना पड़ेगा, कल के लिए हम लोग वेट नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, क्योंकि
0: तो ये थीम इस चीज को डिफाइन कर रही है कि आप अभी भी हैं, संभल जाएं। और जो फर्स्ट डिक्लेरेशन, एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था, उस डिक्लेरेशन के अंदर 119 देशों ने भाग लिया था और उस 119 देशों ने कंसर्न किया था कि हम किस तरीके से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा पाए। तो वो कंसर्न जो 20 साल 50 साल पहले हुआ था वो अभी तक भी है। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर सुधार नहीं हुआ और सुधार नहीं होने की वजह से हमें कदम कदम पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए क्या करने पड़ रहे हैं, स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जमीन की हमने बात कही, अब जमीन से ही हम खेती करते हैं
0: जी।
1: और खेती में भी कई इस तरह के कार्य होते हैं कि हम प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, विस्तार देते हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: खेतों में खेती करने के लिए अभी कई सारे हम किस्से देख रहे हैं कि तरबूज खाने से किसी इंसान की डेथ हो गई है, सब्जी खाने से इंसान की बॉडी के अंदर जहर फैल गए, ये इसी का ही कारण है। आपने कोई चीज खाई और उस खेती के अंदर इतने केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज किए हुए हैं कि मतलब जो भी सब्जियां उग रही हैं या जो भी फल हैं उसके अंदर तो केमिकल्स आ ही रहे हैं। दूसरा इम्पैक्ट आपके सॉइल इरोजन हो रहा है। तीसरा इम्पैक्ट आपका क्या हो रहा है कि किस तरीके से आपका वो केमिकल्स बारिश के पानी की वजह से वो बह रहा है और दूसरी जगह पर भी फैल रहा है। उसके बाद में पशु पक्षी हैं, वो पानी पी रहे हैं, वो डैमेजेस हो रहा है उनको। या फिर कोई गाय है या कोई बकरी है, कोई भैंस है, तो वहां पे

0: चाहिए, तो उससे जीव जंतु हम मर जाते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि वो गर्मी की वजह से मर गए हैं, इस वजह से मर गए, हम एक्चुअल पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो मर क्यों गए हैं
1: जी। और इसका प्रमाण गिद्ध से भी है कि वो भी नष्ट होते जा रहे हैं,
0: तो प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं।
1: बिल्कुल। अब इस विलुप्त प्रजाति को बचाने के लिए, क्योंकि हम शुरुआत कर सकते हैं युवाओं से, आप युवाओं को क्या यहाँ पर संकेत देंगे, किस तरह से उनको सलाह देंगे कि पर्यावरण को वो सुरक्षित रख पाए?
0: सबसे पहले तो मैं युवाओं को ये बोलना चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करें। जब तक हम हमारे से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पानी बचाएं, पानी इस तरीके से बचाएं कि आप अपने लिए भी बचाएं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक शब्द है, हम हमारे लिए जिए और हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी इतने रिसोर्सेस छोड़कर जाएं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कोसे नहीं कि पिछले जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे लिए कुछ छोड़कर ही नहीं गए।
1: बिल्कुल, क्योंकि बात बिल्कुल ये सही है कि एक समय पर पानी हम बहुत आयत में लेते थे और उस समय ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि बोतलों में पानी मिलेगा। आज बोतलों में है, हो सकता है फिर बोतलों में भी पानी नहीं मिले।
0: और ऑक्सीजन से अपन देखते हैं कि कोविड के टाइम पर लोगों को रोड पर मरते हुए देखा है, तो हम अगर ये एयर क्वालिटी सही नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में शायद हम लोग ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है हो सकते हैं हमारे कंधों पर हो।
1: वाकई। अब चलते चलते आप अपनी ओर से युवाओं को कुछ संदेश देना चाहें, कुछ विचार बिंदु ऐसे कि उनके जीने का संबल बन सके।
0: सबसे पहले तो आप अपने आप को मजबूत करें, तब आप पर्यावरण को मजबूत कर पाएंगे
1: जी।
0: दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक साहस है तब तक आस है।
1: क्या बात है, जब तक सांस है तब तक आस है। बहुत खूब। और सांस के साथ साथ साहस भी, जो कि युवाओं के कंधों पर होता ही है, और उन्हें ये वजन तो उठाना ही होगा कि पर्यावरण को सुरक्षित करें। और डॉक्टर सबरीना अंसारी जी, आप आज आकाशवाणी आकर युवाओं को पर्यावरण के इस विषय पर जो खास बात आपने आज के दिन कही उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: थैंक्स लॉट।
2: दोस्तों, अभी हमने पर्यावरण सुरक्षा का प्रण विषय पर डॉक्टर सबरीना अंसारी जी की ये भेंटवार्ता सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की भेंटवार्ता आपको जरूर पसंद आई होगी और कुछ नया सोचने की प्रेरणा भी दे गई होगी। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको एक बार फिर से सीधा लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर, और सुनवा देते हैं एक और प्यारा संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: उन्नीस सौ 1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका युवाणी में। मैं हूं आपके साथ खुशी।
1: और मैं हूं मनीषा।
0: दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मलयालम साहित्य के एक ऐसे महान रचनाकार की जिन्होंने अपनी लेखनी से साहित्य जगत में एक अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप जी की।
1: जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में हम आपको बता दें कि गोविंद शंकर कुरूप केवल एक कवि नहीं थे बल्कि एक विचारक, शिक्षक, अनुवादक, साहित्य के सच्चे साधक भी थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति, मानवता, अध्यात्म और जीवन के गहरे अनुभव का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है।
0: गोविंद शंकर कुरूप जी का जन्म 3 जून 1901 को भारत के दक्षिणी राज्य केरला में हुआ था। बचपन से ही उन्हें साहित्य और अध्ययन में विशेष रुचि थी। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अध्यापन कार्य भी किया और लंबे समय तक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की।
1: और इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उनकी जो साहित्यिक यात्रा थी ना, वो बेहद ही प्रेरणादायक रही। उन्होंने कविता को अपनी अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम बनाया। उनकी कविताओं में प्रकृति के सौंदर्य, मानवीय संवेदनाओं और आध्यात्मिक चिंतन की झलक देखने को मिलती है और यही कारण है कि वे मलयालम साहित्य के सबसे सम्मानित कवियों में एक हैं।
0: गोविंद शंकर कुरूप जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ आधुनिक विचार

0: विचारों का भी समावेश दिखाई देता है। वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का एक प्रभावशाली माध्यम है।
1: दोस्तों, उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक उड़द गुजल है, जो विशेष महत्व रखती है अपना साहित्य में। यह काव्य संग्रह इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके लिए उन्हें सन 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उपलब्धि इसलिए भी ऐतिहासिक थी क्योंकि वे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले मलयालम साहित्यकार थे।
0: दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इस सम्मान ने न केवल गोविंद शंकर कुरूप के साहित्यिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई बल्कि मलयालम भाषा और साहित्य को भी नई प्रतिष्ठा प्रदान की।
1: दोस्तों, गोविंद शंकर कुरूप जी ने केवल मौलिक रचनाएं नहीं की बल्कि विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अध्ययन और अनुवाद भी किया।
0: आज भी उनकी रचनाएं साहित्य प्रेमियों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी उनके जीवन काल में थी। उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर भी।

0: खुशी, देखते देखते अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं,
1: है ना? बिल्कुल मनीषा,
0: तो चलते चलते एक नजर करंट अफेयर्स की ओर डाल लें।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 4 राज्यों के साथ MOU साइन किया है। इसे जल जीवन मिशन 2.0 का नाम दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस MOU का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा देना है।
1: दोस्तों साथ ही भारत को रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का 4th स्क्वाड्रन सौंपा। S-400 लंबी दूरी का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है।
0: हाल ही में राजस्थान राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया।

0: खुशी घड़ी की फितरत भी बड़ी अजीब है ना, ना खुद टिकती है ना हमें टिकने देती है।
1: बिल्कुल मनीषा, सही कहा तुमने,
0: है ना। देखते देखते देखो बिल्कुल स्टूडियो की जो घड़ी की सुइयां हैं ये भी टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही हैं और इशारा कर रही हैं कि आज हम वाणी को वहीं विराम दें। लेकिन दोस्तों वादा करते हैं अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात नई चर्चा के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दीजिए अनुमति मनीषा को
1: और मैं खुशी को।
0: नमस्कार।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से

आशीष तानीपुरती ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is
1: FM 102, 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत की ओर।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी

0: लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए, हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.25% पर यथावत रखा है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत बाहरी झटकों का न्यूनतम प्रभाव के साथ सामना करने की स्थिति में है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। मौद्रिक नीति समिति आगे के फैसलों में आंकड़ों, आपूर्ति दबावों और आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखेगी। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिकों और अन्य पात्र विदेशी निवेशकों के लिए इक्विटी बाजारों में निवेश के अवसरों को भी बढ़ाया है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और इस तरह की कमी को तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा परिसर में निर्वाचन अधिकारी भारत भूषण शर्मा के समक्ष उन्होंने नामांकन पेश किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ने श्री डांगी की उम्मीदवारी को सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव के प्रति विश्वास का प्रतीक बताया है। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थान आर्द्र भूमि पक्षियों की विविधता से समृद्ध है, साथ ही कई तरह के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का आशियाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के साथ ही हरित भविष्य के लिए सहायक है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को इकोलॉजिकल संरक्षण की दिशा में अहम बताया है। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों आवश्यक

0: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूं, तीनों महत्वपूर्ण होती हैं। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है, और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने और प्रकृति का संरक्षण करने की अपील की है। आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में बोलते हुए श्री शर्मा ने सभी नागरिकों से पानी बिजली की बचत करने और राज्य को हरित तथा स्वच्छ बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस साल राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश भर में हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने के संदेश को लेकर कार्यक्रम रखे गए। अलवर में सशस्त्र सीमा बल की ओर से पौधरोपण और वितरण किया गया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाईमाधोपुर सहित अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों और आम लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। भरतपुर में पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। झुंझुनू में पर्यावरण संरक्षण संबंधी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रतियोगिताएं रखी गईं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 3 दिन की देरी के बाद कल केरलम से मॉनसून का प्रवेश हुआ। इस बीच राज्य में भी प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल शाम से ही कई जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून के राजस्थान पहुंचने के आसार हैं। विभाग ने 7 जून तक कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आज राज्य के 14 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। मौसम में आए बदलाव से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, बीते 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में गरज और चमक के साथ तेज बरसात हुई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 7.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू और राजधानी जयपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज अंधड़ से कुछ जगह हादसों की भी खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा में अंधड़ से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आज राजस्थान और पंजाब में 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीमों ने जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड और साइबर अपराध से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पकड़े गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। ईडी इन ठगों के वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से आज सोमनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत लगभग 1000 बुजुर्गों को रेल के जरिए सोमनाथ यात्रा पर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। मीडिया से बातचीत में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी।
2: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। पूरी सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
1: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर जिले के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम लगभग पूरा हो गया है।

0: है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प कर यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि स्टेशन के हाईटेक होने से पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
1: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो, और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से लोगों को सतर्क

0: इसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
1: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मंडल ने इन विज्ञापनों को फर्जी बताते हुए कहा है कि इनके जरिए बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी के प्रयास किए जा सकते हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा है कि भारतीय रेलवे सभी भर्तियां निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करता है, निजी माध्यमों से चयन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। प्रदेश में इबोला वायरस का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। युगांडा से राजस्थान आई एक विदेशी महिला में इस बीमारी से मिलते जुलते लक्षण पाए जाने के बाद उसे जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाओं को विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि फिलहाल महिला में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। महिला का सैंपल जांच के लिए पुणे की प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देशभर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष गोयल ने तैयार किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज से ही हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। वन विभाग की ओर से आज लोगों को पौधे वितरित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी आज संपन्न हुआ। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए इस अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों की साफ सफाई के कार्य किए गए। अभियान के तहत 577 जल संरचनाओं की सफाई की गई, वहीं 37 की मरम्मत और पुनर्जीवन के काम शुरू किए गए। 237 ग्राम सभाओं सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। कोटपुतली नगर परिषद इन दिनों पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोक कल्याण मेले लगाया गया है। 30 जून तक चलने वाले इस मेले में अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी संचालकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही छोटे व्यवसाय करने वाले वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में पुलिस की ओर से अवैध मोडिफाइड वाहनों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि इस दौरान वाहनों की बॉडी में परिवर्तन कर प्रेशन हॉर्न और अवैध रूप से लाल नीली बत्तियां लगाने तथा नंबर प्लेट में बदलाव करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जिले में पड़ रही तेज गर्मी के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पीने के पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने को कहा। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने को कहा गया है। जिला कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय महिला समाधान समिति, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और महिला सुरक्षा केंद्र की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। साथ ही जिला कलेक्टर ने नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बनाए गए जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की भी बैठक ली। पावटा में नया न्यायालय भवन बनाया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया।

0: इसके निर्माण पर 3,29,00,000 रुपए की लागत आएगी। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सर्वे और मकान गणना का काम लगातार जारी है। प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण और आवश्यक जानकारी का संकलन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से इस काम में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है। बीते दिनों राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ अभियान चलाया गया। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई गई। साथ ही संध्या चौपाल लगाकर आम जन को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत इन दिनों जिले के मंदिरों, मठों और निजी संग्रहों में मौजूद प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मिशन के जिला नोडल अधिकारी ने बीते दिनों मिशन के लिए बनाई गई क्रियान्वयन समिति के साथ बैठक की। उन्होंने समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों में जाकर पांडुलिपियों के सर्वेक्षण कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करने का आह्वान किया। उन्होंने इस काम को प्राथमिकता देते हुए डोर टू डोर सर्वे करने को कहा। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र तथा नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से बहरोड में एमएसएमई प्रोत्साहन जागरूकता कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को राज्य और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। इससे पहले नीमराणा, घिलोट और शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों को भी ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा चुका है। इसके साथ ही कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किन्नो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माए पौधा रोपण, वितरण अर जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। हरियाली बधावन अर आबो हवा ने बचावन रो संदेश दियो चियो। प्रदेश माए चौमासाओं पहली री हलचल सरूफी, कई जिला माए आंधी बारिश रो दौर जारी। अर प्रवर्तन निदेशालय ईडी साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ माए छापा मारिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट माए कोई बदलाव नहीं किन्नो है। मौद्रिक नीति समिति री समीक्षा बैठक माए इनने 5.25% रा लेवल माथे राखण रो फैसलो करी चियो। मीटिंग में स्थायी जमा सुविधा री रेट 5% और सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक रेट 5.5% रा लेवल में थई राखण रो फैसलो करी चियो। चालू माली साल में लगातार दूजी दफा ब्याज री खास दरा में कोई बदलाव नहीं करी चियो। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा आ जानकारी दीनी। वे कह्यो के बैंक चालू माली साल सारू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी माए बढ़ोतरी री रेट पहली री 6.9% घटार 6.6% करण रो फैसलो किन्नो। आरबीआई अनिवासी भारतीयां, भारतरा प्रवासी नागरिकां और दूजा पात्र विदेशी निवेशकां सारू इक्विटी बाजार माए निवेश रा मौका ही बधाया है। सरकारी दूजा देशां रा संस्थागत निवेशकां ने सरकारी शेयरां माथे भेवण वाला पूंजीगत फायदा माथे टैक्स माए छूट दीनी है। देश माए पॉलीमर आधारित नोट चलावण रा प्रस्ताव माथे विचार करियो जा रियो है। भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर संजय मल्होत्रा बतायो कि देश रा न्यारा न्यारा हलकाओं बैंका री शाखावां और एटीएम माए नोटा री कमी री शिकायता मिली ही। श्री मल्होत्रा बतायो कि बैंक कने जरूरी तादाद माए नकदी मौजूद है और इनरी कमी तुरंत पूरी कर दी जावेला। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव रा तहत राज्यों 3 सीटा माथे वेवन वाला चुनाव बाबत कांग्रेस रा उम्मीदवार नीरज डांगी आज पर्चो दाखिल कीनो। वह विधानसभा भवन में चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा स्वामी नाम

0: पानो भर्यो। ए बगत राज्य रा पहलीवाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा में विपक्ष रा नेता टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में कांग्रेस रा मुख्य सचेतक रफीक खान समेत कई आला नेता मौजूद हा। कांग्रेस नीरज डांगी री उम्मीदवारी ने पार्टी रा सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव रा प्रति भरोसा री निशानी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बलिया रा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल रे देश री 100वीं रामसर ठाड़ वेवन रा ऐलान माथे खुशी जताई है। माना संदेश में श्री मोदी कहो के ओ जैव विविधता ने बचावण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखण सागे हरित भविष्य सारू मददगार है। सुरहा ताल में भांत भांत रा प्रवासी और वठेरा परिंदा रो रहवास है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ई इन उपलब्धि ने पारिस्थितिकी बचावण ओड़ी खास बतायो है। वह कहो के पारिस्थितिकी संतुलन सारू वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों जरूरी है।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूं, तीनों महत्वपूर्ण होती हैं। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनताओं आबो हवारा मुजब जीवन रो तरीको अपनावण और धरती ने बचावण री अरज कीनी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके जयपुर में राखी जाए कार्यक्रम में श्री शर्मा जनताओं पानी बिजली री बचत करण सागे राज्य ने हरित और साफ सुथरो बनावण में योगदान देवण री अपील कीनी। मुख्यमंत्री कहो के एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तेत ई साल प्रदेश में 10 करोड़ पौधा रोपणु तय करी चियो है। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा राज्य में हरियाली बढ़ावण और कुदरत ने बचावण रो संदेश देता थका कार्यक्रम राखी जिया। अलवर में सशस्त्र सीमा बल री ओरों पौधा रोपी जिया और जनता ने पौधा बांटी जिया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाई माधोपुर समेत कई थोड़ा विद्यार्थी और जनता पौधा रोपिया और पर्यावरण ने बचावण री सोगन लीनी। भरतपुर में पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली जी। झुंझुनू में पर्यावरण बचावण जुड़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम और होड़ा राखी जी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माथे AIR News राजस्थान पर आई सुन सको हो। देश में चौमासारी बिरखा सरुभेवन रा हालात अनुकूल है। केरलम में चौमासारी बिरखा 3 दिन मोड़ी सरुफी। राज्य में ये चौमासों पहले री हलचल तेज वे की है। काल सिंजा हुई कई जिला में आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। मौसम विभाग रे मुजब आवता महीना रा पहला सप्ताह में राज्य में चौमासारी बिरखा सरुभेवन रा आसार है। ये बीचे 7 जून ताई प्रदेश रा कई हलका में आंधी बारिश री संभावना जताई ची है। आज राज्य रा 14 जिला में ऑरेंज और 8 जिला में येलो अलर्ट जारी करी चियो है। मौसम में आया बदलाव तेज गर्मियों थोड़ी साता मिली है। हालांकि तेज अंधड़ रे कारण कठे कठे हादसा री खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा में अंधड़ 2 जना री मौत वे की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी री ओर आज राजस्थान और पंजाब में साइबर अपराधा में शामिल फेवन री शंका वाला रे खिलाफ 7 ठोड़ा छापा मारी जिया। ईडी री टीमा जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में एक सागे करी जी कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद में मोबाइल फोन में लगन वाली सिम और साइबर अपराध माए काम आवन री शंका वाला

0: इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान पकड़िया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत करीब 1000 बुजुर्गों ने रेल रे जरिए सोमनाथ री यात्रा कराई जा रही है। इन सारू जयपुर कने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रेलगाड़ी ने हरी झंडी बतार रवाना कीनी। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत कहो के 6 दिन री ई यात्रा माए यात्रुआ सारू सगड़ा सुविधा मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेड़ द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। पूरी सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत बीकानेर कने लालगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रो करीब 85% काम पूरो वेक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के लगभग 20 करोड़ रुपया रा खर्चो वठे नुआ सुविधा विकसित करी चिया है। श्री सुदर्शन बतायो के इन स्टेशन रे हाईटेक मेवणो सैर सपाटा वठेरा हाथरी कारीगरी रा काम और कारोबारी हलचल ने बधावो मिलन सागे, नौकरी धंधा रा मौका ही बधेला।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे रो कोटा मंडल रेलवे माए भर्ती रा सोशल मीडिया माथा चाल रिया फर्जी विज्ञापनाओ सावचेत रहन री राय दीनी है। मंडल रा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन कहो के रेलवे माए सगली भर्तियां ते नियमा रा तहत साफ कोई सागे करी जावे है और गैर सरकारी जरिया चयन री कोई प्रक्रिया नी वे है। प्रदेश में इबोला वायरस री शंका वाला एक मरीज रीठा पड़िया पाछे स्वास्थ्य विभाग सावचेत वेक्यो है। अफ्रीकी देश युगांडा राजस्थान आई एक विदेशी महिला माए ई बीमारियों मिलता जुलता लक्षण रीठा पड़िया पाछे वाना जयपुर रा RUHS अस्पताल रा विशेष आइसोलेशन वार्ड माए भर्ती कराई ची है। RUHS अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता बतायो कि फिलहाल ई महिला माए इबोला संक्रमण री पुष्टि नी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज टोंक माए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रा AEN और कंप्यूटर ऑपरेटर ने 20,000 रुपया री घूस लेता थका पकड़ लीना। ACB रा एडिशनल SP ऋषिकेश मीणा बतायो के पकड़ी जिया लोगा माथे शिकायत करण वाला रा घर रो बिजली रो मीटर पाछो देवण और विजिलेंस जांच रपट नी भरण री एवज माए आ रकम मांगण रो आरोप है। ACB कोटा विकास प्राधिकरण माए संविदा रा आधार लाग्योड़ा एक कर्मचारी ने 15,000 रुपया री घूस लेता थका पकड़ लीनो। वा माथे शिकायत करण वाला रा बाप दादा रा घर माए भागीदार लोगा ने लिस्ट माए नाम मांडण सारू घूस मांगण रो आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी भेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। RBI रेपो रेट माए कोई बदलाव नी कीनो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माए पौधारोपण वितरण जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। प्रदेश माए चौमासाओं पहली री हलचल शुरू हुई, कई जिला माए आंधी बारिश रो दौर जारी। प्रवर्तन निदेशालय साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर नागौर और किशनगढ़ माए छापा मारिया। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
3: FM 102 103.6।

मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.3 एक मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। शाम के 7 बज रहे हैं। आप किसान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल सु कार्यक्रम सुन बाला सरक सान भाई और बणियान कताई दन्ना भाई कंडी से गणी गणी राम राम। भाई बड़ो आज जो छे पर्यावरण दिवस छे और पूरो विश्व जो छे पर्यावरण दिवस मना रहे छे। भाई वो पूरी दुनिया में जो प्लास्टिक छे उनकी गंभीर समस्या सु चेतावा का लेख और साथ ही आपको ताई बता दिया का हर इंसान में हर प्राणी में जागरूकता बढ़े, सामूहिक कार्रवाई करे और सतत विकास कर साथ ही प्रकृति और जो पर्यावरण छे उनका प्रति हर इंसान जागरूक बने ये लेकर पर्यावरण दिवस मनाए जाओ छे। आज के दिन आप देख रहे कि कई लोगों ने कई पौधा लगाया छे पर बहन भाई जो वो पौधा लगाया छे वहां की देखभाल करबो मेन छे क्योंकि आपने लगा तो दिया पर अगर उनको ताई पानी न पुआऊंगा टम टम न संभालूंगा तो एक छोटा शिशु की तरह छे छोटा बच्चा की तरह छे। अगर छोटा बच्चा है आप न संभालूंगा तो आप जानो जो कहीं आलो हो वो ही वो पौधा को हो जानो छे। तो मां तो आपसे यही कहा छा कि जिन्हें भी पौधो लगाए छे वो उनका बच्चा की तरह उनकी देख रेख करे यदि वो पौधो चाल पाओगे। भाई बनाओ आपन जो छे जैसे कई सारा बचाव आपन करा और आपन मानसिक रूप से स्वस्थ रहा श्वसन और पाचन तंत्र आपनो सही रहे एक लेकर आपन एक एकीकृत चिकित्सा पद्धति को उपयोग करा और एकीकृत जो चिकित्सा पद्धति छे उसे आपने जुड़नी चाहिए। भाई बनाओ किसान उत्पादक जो संगठन छे उनकी भी अपन बात कर लिया तो किसान उत्पादक संगठन छे यानी जो छोटा किसान छे वहां के लेके यो सबसे ज्यादा फायदेमंद छे। इमा कम लागत में अच्छी अपन सामग्री प्राप्त कर सका छा अच्छी तरह से अपन खेती बाड़ी कर सका छा बेहतर बाजार की पहुंच यानी अच्छो बाजार जो भी आपने करियो छे जो भी खेती बाड़ी करी छे आपने सब्जी करी छे फल करिया छे या मोटी फसल करी छे तो बेहतर आपने उनको मूल्य मिलनी चाहिए। साथ ही तकनीक और वित्तीय सहायता यह भी आपन कता इमें मिल जाओ छे और लाभ को जो बंटवारो छे वो भी बराबर हो जाओ छे यानी आपन एफपीओ बनावा यानी किसान उत्पादक संगठन बनावा और असें जो छे आपन कता काम करनी चाहिए। भाई बड़ा आज शुक्रवार को दिन छे और शुक्रवार के दिन प्रायोजित कार्यक्रम हो छे
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। आर के वी बाई कृषि विकास के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य है दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से जस्ता और लोहा यानी जिंक और आयरन की मात्रा बढ़ाकर मनुष्यों में पोषण सुनिश्चित करना और इसकी कमी से होने वाले एनीमिया जैसे रोगों की रोकथाम करना। राजस्थान कृषि विकास योजना राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज पर अनुसंधानों के द्वारा दालों में जिंक और आयरन यानी जस्ता और लोह तत्व के फसल सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रहा है। तो संपूर्ण कृषि विकास के लिए ARS कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़िए और देश के विकास में भागीदारी निभाइए।

0: भाई बनो जो यो कार्यक्रम छ एका पावना भी आपने स्टूडियो में आन भी रजिया तो सबसे पहले तो यहाँ को स्वागत करना डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में आया आपको बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब।
1: राम राम सर।
0: भाई बनो आपको तो बता दें कि यो जो कार्यक्रम छ आज को एको विषय छ बागवानी और सब जैली जो फसलां छ वहां में अपन कीट को नियंत्रण कैसे करा और विशेषज्ञ आपने साथ विराजमान छे आप जो डॉक्टर कैलाश चंद अहिर कृषि अनुसंधान उमेदगंज कोटा सु जो भी किसान भवन भाई डॉक्टर साहब से सीधी बातचीत करबो चाहो छे और बागवानी में और सब्जियां में कीट का संबंध में पूछबो चाहो छे वो सीधा आकाशवाणी का नंबर पर फोन कर सके छे और डॉक्टर साहब से बातचीत कर सके छे। तो माँ का एसटीडी कोड नंबर 0744 और फोन नंबर 294-1142। भाई बड़ा फोन करो और आपकी जो भी बागवानी सु और सब्जी सु संबंधित कीट का बारे में अपनी पूछनो छे उन समस्या को निदान आपके तय हाथों हाथ मिल जाओगे। तो डॉक्टर साहब आपने जो कार्यक्रम छे उनके तय अपन आगे बढ़ावा। डॉक्टर साहब एक फोन आए गयो अपना श्रोता को अपन करा राम राम। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी राम राम साहब।
2: हाँ राम राम साहब। राकेश मीना बोल रहे साहब बूंदी सु सब्जियाँ लगा मिली थे साहब
0: गन्ने लगा रखे होगी।
2: हाँ गन्ने छत में लगा रखी थे।
0: अच्छा
2: तो सर्दी में तो दिसंबर जनवरी में लगाई थी बढ़िया हुई पर बानू काये हुए वो सफेद सफेद साहब छोटा छोटा कीट खूब सारा आ गया रोज पानी से जड़ा देता वापिस आ जाओ।
0: अच्छा राकेश जी कहीं कहीं लगा मिली साहब ने
2: मैंने बैंगन टमाटर मिर्ची लौकी चीजें तो खत्म होगी बानू गर्मी से गुलाबी था सभी लगा रखे थे पूरे 1250 वर्ग फीट का छत थे उम्र सब में कम।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: चलो राकेश जी हाँ आपको
2: ट्रीटमेंट का
1: हाँ आप जो सब्जियां लगा रखी आप कह रहे सफेद सफेद जो कीट आ रहा है वो सफेद मक्खी है और सफेद मक्खी ऐसा कीट है जो क्या करता है एक पत्तियों से रस चूस के इन पौधे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और सब्जियों में अक्सर इसकी समस्या रहती है। तो इसका ऑर्गेनिक तरीका या जैविक तरीका मैं आपको बताऊं तो एक तो आपने पीले चिपचिपे पास के बारे में सुना होगा जो पीले रंग का आता है
2: वो उड़ने वाले नहीं है वो छोटे छोटे से सफेद
1: की हाँ सफेद हैं जो आपकी जो एक पीला चिपचिपा पास हो गया इसके साथ साथ जो नीम का जो आता है एनएसके नीम सीड कर्नेल एक्सट्रेक्ट हो गया या नीम ऑयल का आता है या फिर आप क्या करें कि एक ब्यूवेरिया बेशियाना नाम की एक कवक आती है उसको पानी के साथ मिला के उसके ऊपर छिड़काव करें। तो ये जो दो चार जो तरीके हैं इनको अगर आप काम में लोगे तो वो एक बार कम पड़ेंगे आपके। और अगर आप अगर अपन बात करें कि अभी तो वैसे बात ही ऑर्गेनिक की करनी चाहिए क्योंकि सब जगह ऑर्गेनिक की बात हो रही है तो ऑर्गेनिक तरीका ही आपको काम में लेना है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो पौधे एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जिसमें संक्रमण हो गया है या जो पौधे बहुत ज़्यादा अगर कहीं झुंड में उसके अंडे या ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही तो उसको भी अपने को हाथों द्वारा भी नष्ट कर सकते हैं अपन उसको।
2: जी यही कर रहा था साहब।
1: हाँ और कुछ
2: बस यही।
0: राकेश जी आपने कार्यक्रम में फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब हाड़ौती क्षेत्र च और इन हाड़ौती क्षेत्र में पानी की पर्याप्त मात्रा च घनी सारी सब्जियां बार यहाँ कोटा बूंदी में यहाँ में सब में चाल रही है। तो जैसे अपना बात करा कर जैसे टमाटर च मिर्ची च भिंडी च बहुत सारी कद्दू वर्गीय तो विशेष रूप से इन मौसम में सब्जियां में आप का ध्यान रखना
1: अभी इस मौसम में जो भी अपन ने सब्जियां लगा रखी है
0: जी।
1: तो ध्यान ये रखना है कि सब्जियों में साधारणतया जो कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं उसमें रस चूसक ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अभी जो किसान ने कॉल किया उसमें भी सफेद मक्खी की बात हुई या एफिड हो गया या आपका हरा तेला हो गया ये नुकसान करते हैं। इसके साथ साथ आपके जैसे टमाटर में फल छेदक हो गया आपके भिंडी के अंदर भी फल छेदक हो गया ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो समय पे आपको खेत का निरीक्षण करना है। जैसे जैसे समय पे आप निरीक्षण करें निरीक्षण के साथ साथ जो जैविक तरीके हैं उनको आपको पहले से ही अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कीड़ा आ गया और फिर आप कहोगे भाई मैं कोई स्प्रे करूं तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले से ही आपको उपाय तरीके अपनाने पड़ेंगे जैसे रस चूसक के लिए पीला चिपचिपा पास हो गया नीला चिपचिपा पास हो गया या नीम सीड कर्नेल एक्सट्रेक्ट का छिड़का

0: का हो गया
1: जी,
0: या ब्यूवेरिया का स्प्रे हो गया,
1: इनका
0: अपन जो है अपन शुरू से ही करें, या ट्राइकोकार्ड जो है जैसे टमाटर के अंदर जो है फल छेदक के नियंत्रण के लिए ट्राइकोकार्ड अपन खेत में लगा सकते हैं। तो ये तरीके अगर अपन पहले से ही जो है, जैसे अपन ने फसल ली, अपने को पता है सब्जियों में कीड़े आएंगे आएंगे, तो ये तरीका पहले ही अगर अपना लिया जाएगा तो बाद में कीट समस्या इतनी ज्यादा जटिल नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि समय समय पर आपको निरीक्षण करना चाहिए और उसके अनुसार उसके ऊपर उपाय अपने को अपनाना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, वह खर्चन का पानी का फल ही आपने पाल
0: है ना।
1: तो प्राथमिक में कई उपचार करें डॉक्टर साहब?
0: प्राथमिक में जैसे कहने का अर्थ है कि सबसे पहले तो आप जो सब्जी ले रहे हो या जो भी ले रहे हो, तो उसका बीज
1: जी,
0: जो आप फसल ले रहे हो उसका बीज कैसा है, आप बीज जो लाए हो प्रमाणित है या सही जो ऑथराइज्ड है या नहीं है। इसके साथ साथ कुछ बीज ऐसे भी आते हैं, कुछ किस्में ऐसी भी आती है जो कीट और रोग प्रतिरोधी भी होती है, वो अपने को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बीजोपचार करके अपने को उसकी नर्सरी तैयार करनी चाहिए। नर्सरी आपने लगा ली तो नर्सरी में भी आपको इंटेंसिव केयर उसकी करनी चाहिए। उसके साथ साथ आप जो है प्रारंभिक तरीके के तौर पर जैसे आप नीम का जो है एनएसके का स्प्रे आप कर सकते हो, इसके अलावा ब्यूवेरिया का, इसके अलावा बीटी का भी आप स्प्रे वहां पे कर सकते हो।
1: जी जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपने श्रोता जुड़बो चार्य कराचा राम राम। हेलो, हाँ प्रजापति जी, काय पूछ रहे जो बताओ?
2: बिंडी लगा
1: कतनी जो बिंडी आपका डेढ़ बीघो भिंडी लाग रही बहुत बढ़िया। बताओ डॉक्टर साहब, कहीं हो सके?
0: आप कह रहे हो आपका पौधा जो है जड़ से सूख रहा है, तो उसमें मेन कारण ये हो सकता है कि उस खेत के अंदर कोई न कोई ऐसी फफूंद या कोई रोग है जिसकी वजह से वो हो रहा है। तो आपने कभी ट्राइकोडर्मा नाम का पाउडर गोबर के साथ कहीं खेत में काम में लिया कि नहीं लिया? वहाँ पे
2: लगाने तो गोबर खाद डालते हैं साथ।
0: नहीं, उसके साथ ट्राइकोडर्मा मिलाया कि नहीं मिलाया?
2: नहीं,
0: तो देखो जड़ से जो भी पौधा सूखता है उसमें जड़ के अंदर एक जो है कवक रहती है, वो उसको सुखाने का काम करती है। तो आप जब भी खेत तैयार करो या कहने का अर्थ है कि आप जहाँ सब्जियां लगा रहे हो वहाँ पे गोबर की खाद हो गई या वर्मी कंपोस्ट के साथ ट्राइकोडर्मा जो हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र जो उमेदगंज कोटा है यहाँ पे भी मिलता है, तो उसके साथ उपचारित करके आप खेत में डाल दो और फिर आप सब्जी लो तो आपकी ये समस्या नहीं आएगी।
2: अच्छा,
0: हाँ
2: ये समस्या पिछली बार भी आ गई थी।
0: हाँ, तो ये तो रेगुलर रहेगी, उस खेत के अंदर वो बना हुआ है कीड़ा वो रोगाणु।
2: अच्छा ठीक है सर, थैंक यू।
1: डॉक्टर साहब, आपन अक्सर देख रहे जा के जो कीटा की समस्या छ वो जटिल होती जा रही है।
0: हाँ,
1: तो कई कारण मानो छो आप?
0: कीटों की समस्या जटिल होने के पीछे कारण ही एक प्रकार से अपन सारे ये जो किसान हैं अपन वो ही हैं, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि फसल लेने के लिए या सब्जियां लेने के लिए या कोई भी लेने के लिए अपन तुरंत उस पे कोई भी कीड़ा दिखाई देगा उसके लिए रसायनों का प्रयोग शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज से कई सालों पहले अपन बात करते थे इतने केमिकल नहीं हुआ करते थे, आज बहुत ज्यादा केमिकल आ गए, उसके बाद भी कीड़ों की समस्या बढ़ती जा रही, क्योंकि कीड़ों ने उन रसायनों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ली है। तो अपने को डायरेक्ट केमिकल काम में नहीं लेना है, पहले जैविक तरीकों को काम में लेना है, जो दूसरे तरीके उनको काम में लेना है, अंत में अगर नहीं रुके तब जाके अपने को कीटनाशकों को काम में लेना, यानी एक प्रकार से समन्वित नासी कीट प्रबंधन अपनाने की जरूरत अपने को है।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर बात यह चख वो मतलब इतना गाढ़ा हो गया आजकल आपने देखा चक कई किसान जैसे पाउडर भी फाक रहे
0: हैं,
1: तू पाउडर भी वो कीड़ो खा तो नट जा
0: गया।
1: तो आपन कताई का करनी पड़ेगा, अब खट्टी कहनी पड़नी पड़ेगा
0: अपने को? अब जो है रसायन को एक प्रकार से जैसा कि भारत सरकार भी चाह रही है और अभी एक अभियान भी चला रहा है खेत बचाओ अभियान, उसमें भी कहना है कि केमिकल को कम यूज करो और अपना स्वास्थ्य जो है वो भी सही नहीं रह पा रहा है, तो अपने को जैविक की ओर जाना पड़ेगा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अपन अब ये टर्म की बात करा तो ये टर्म पर कई सारी देखो करिया भी बाजार में आ रही है, आम भी आ रहा है, तो इमा अपन कहीं करना पड़ेगा बाहर जैसे आम का पौधा में?
0: आम के पौधे की बात करें तो आम में जो मेन कीड़े लगते हैं, एक तो आपका मैंगो होपर लगता है
1: जी,

0: उसके साथ साथ इसमें एक फल मक्की लगती है जो फलों के अंदर रहती है वो लगती है। इसके अलावा इसके पौधे के अंदर तना छेदक लगता है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ अभी जैसे कहने का अर्थ है अभी तो फल मार्केट में आ चुके हैं, उस केस में अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब उसमें फूल आने शुरू होते हैं उस समय से ही होपर का, तना छेदक का या फल मक्की का आक्रमण शुरू हो जाता है, तो उसी समय से आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट आ जाने के बाद उसका नियंत्रण आप नहीं कर पाओगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आप जब फसल आपकी रनिंग में है उस समय आपको अगर ध्यान दोगे और सही तरीके से वो उपाय अपनाओगे तो वो कीड़ा उसके अंदर नहीं लगेगा।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो टमाटर च, मिर्ची च, भिंडी च, ये भी बाजार में निरंतर आ रही च, फलाव आ भी रही हो, कुछ खेत में भी है ना, कुछ तोड़ भी रहा है, तो विशेष रूप से कई सावधानी रखना, जैसे कई बार आपने देखा जा किसान कोई दवा को स्प्रे कर दियो, छिड़क दी, तो कितना दिन बाद तोड़ा।
0: हाँ, वो बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी। नॉर्मली अगर जो है, अगर इसमें कहें तो मिनिमम से मिनिमम 10 दिन तो उसको रुकना ही चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि उस केमिकल का असर जो है उस सब्जी के अंदर बना रहता है, उतना ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कोई भी रसायन छिड़कते हैं तो एक समस्या ये भी आती है कि किसान क्या करते हैं कि पर्टिकुलर किसी दुकान पे जाते हैं, वो रसायन लेके आ जाते हैं और छिड़क देते हैं। वहां पे ये ध्यान रखना है कि आपने पहले एक प्रकार का रसायन छिड़क दिया
1: जी,
0: तो दोबारा जब रसायन छिड़क रहे हो तो उसकी प्रकृति दूसरी होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको किसी कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेकर ही रसायन का छिड़काव करना चाहिए। और इसमें जो है कई बार जो है दिक्कत भी आ जाती है कि आप भी जो रसायन उसमें रिकमेंडेशन में नहीं है, अनुशंसित नहीं है, उसका भी छिड़काव कर देते हो तो स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव उसमें आते हैं।
1: कुल मिलाकर आपको खबर मतलब ये हो चुका गलत भी रसायन छिड़क
0: गलत भी
1: है ना, मतलब जो न छिड़कनी चाहिए जो वो भी छिड़क रहे
0: छिड़क रहे थे।
1: किसान ये याद कोई ना भाई कशो छिड़कनो जो कशो न छिड़कनो, तो एक लेकर डॉक्टर साहब उनका सलाह लेनी चाहिए जो कृषि विज्ञान केंद्र में आर मलनी चाहिए, कृषि अनुसंधान में आर मलनी चाहिए, जो वैज्ञानिक वहां से भेंट वार्ता करनी
0: चाहिए।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कद्दू वर्गीय कद्दू वर्गीय की बात करा तो कद्दू वर्गीय में काई काई तो आ रही है बार, और ये टर्म पर हम काई करा।
0: कद्दू वर्गीय जो भी सब्जियां हैं उसके अंदर जो है रस चूसक कीड़ों का प्रकोप रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा फल मक्खी का प्रकोप रहेगा। इनके बचाव के लिए आपको यही करना है कि आप निरंतर तो है जो अभी पहले भी अपन ने बात की, एक तो आपको निरीक्षण करना है, उसके साथ साथ जैसे ही जो कीड़ा दिखाई दे या जो जैविक तरीके उनको साथ साथ ही अपनाते जाना है, और जैसे जो जो भी तरीका आप अपना रहे हो उस तरीके में ये ध्यान रखें रसायनों में कि सेम रसायन आप जो है दोबारा उसमें आप छिड़काव नहीं करें, और प्रतीक्षा अवधि का अवश्य ध्यान रखें कि प्रतीक्षा अवधि के बाद उसको मार्केट में ले जाएं आप।
1: बहुत बढ़िया।
2: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। RKVY कृषि विकास के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य है दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से जस्ता और लोहा यानी जिंक और आयरन की मात्रा बढ़ाकर मनुष्यों में पोषण सुनिश्चित करना और इसकी कमी से होने वाले एनीमिया जैसे रोगों की रोकथाम करना। राजस्थान कृषि विकास योजना राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज पर अनुसंधानों के द्वारा दालों में जिंक और आयरन यानी जस्ता और लोह तत्व के फसल सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रहा है, तो संपूर्ण कृषि विकास के लिए ARS कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़िए और देश के विकास में भागीदारी निभाइए।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई बनो सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहे छे और आज को जो कार्यक्रम छे इको विषय छे बागवानी और सब्जी वाली फसलों में अपन कीट नियंत्रण कैसे करा और विशेषज्ञ विराजमान छे डॉक्टर कैलाश चंद अहिर आप जो कृषि अनुसंधान केंद्र उमेदगंज कोटा सु डॉक्टर साहब सु सीधे आप बातचीत कर सको छो।

0: लेकर अपना फोन नंबर एसटीडी कोड नंबर 0744 और फोन नंबर 294-1142। तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम का तय आगे बढ़ावा। डॉक्टर साहब आप देख रहे था कि बाजार में अगर कोई किसान फल ले रहा हो सब्जी ले रहा हो तो अक्सर आपने देखा था कि सब्जी फल ये काणो हो जाओ और वो काणो हो जाओ तो उनका भाव भी कम मिले तो उनका तय का करनी छाजे।
1: देखो वो काणा या जो आप कह रहे हो उसमें छेद हो जाता है
0: जी,
1: तो उसका मुख्य कारण है कि उसमें कोई कीड़ा लग गया है और कीड़ा लग जाने की वजह से उस फल को कोई खरीद नहीं पाता
0: जी।
1: तो तरीका यही है किसान को कि समन्वित तरीके से एकीकृत तरीके से कीट नियंत्रण की विधि अपनानी
0: जी।
1: इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले जिस खेत के अंदर आप सब्जी लगा रहे हो फल लगा रहे हो सब्जियां लगा रहे हो बेसिकली उसमें एक तो आपको गहरी जुताई करनी चाहिए क्योंकि उसके भूमि के अंदर भी कीड़े रहते हैं
0: जी।
1: उसके साथ साथ अच्छा बीज आपको लेना चाहिए। अच्छा बीज आपने ले लिया उसके बाद उस बीज का बीजोपचार आपको करना चाहिए
0: जी।
1: समय पे निगरानी करते हुए आपको जैविक तरीके जो हो गए वो आपको अलग अलग जो अपनाने चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपको समय पे अगर आपको जैविक तरीकों से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो आपको रसायनों की ओर जाना है और रसायनों में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं कि जैसे उसकी विषाक्तता के आधार पर रसायन जो है अलग अलग प्रकार से लाल पीला नीला हरा रंग से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हरे रंग वाले रसायनों को आपको काम में लेना है फिर आपको पीला फिर नीला और लास्ट में लाल रंग वाले रसायनों को। तो इस प्रकार से अगर अपन काम में लेते हैं या समन्वित तरीका अगर एक तरीके से अपनाते हैं और फिर जाके अगर सब्जी या फल उत्पादन करते हैं तो ये समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और रखना चाहता हूँ कि आज के मार्केट के अंदर अपन जो फल और सब्जी देख रहे हैं वो सारी आपको बहुत कम ऐसी मिलेगी मार्केट के अंदर जो जिसमें आपको छेद देखने को मिले। उसके पीछे मेन कारण ये कि आज इतना रसायन का प्रयोग उसके अंदर हो रहा है कि वहां पे किसी भी प्रकार का कोई छेद आपको नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन वो रसायन सीधा सीधा अपने शरीर के अंदर जा रहा है और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने को ध्यान देने की जरूरत है कि अपने को जैविक तरीका अपनाना।
0: हेलो हेलो
2: राम राम।
0: हाँ जी राम राम साहब कौन बोल रहे जो
2: मैं समर बाग बोल रहा हूँ धनंजय मोहनलाल।
0: हाँ जी आपको कार्यक्रम में स्वागत है। काई पूछ रहे जो बताओ।
2: ये बोल रहे जो भाई हर्ष देवान गाँव जाओ तो मगा में क्यों ना हो
0: आपका गांव में भी आऊंगा। अब आर आपको प्रश्न है भाई जैसे कोई आपका कोई बागवानी या सब्जी आपने लगा रखे हो में कोई कीड़ा वीड़ा लाग रहा हो तो डॉक्टर साहब बैठे जा आप प्रश्न पूछ सको छो।
2: मान तो बीज बज रहा आज ये ऊंदो लगा पानी भर ऊंदो लगा बाजू काई दिक्कत को ना।
0: हाँ डॉक्टर साहब बताओ
1: क्या हो गया।
0: धान को बीज बोयो जो है तो मतलब काई करनी चाहिए जो भाई।
1: धान का बीज बो दिया है आपने।
2: हाँ
1: तो कैसे बोया है आपने सूखे में बोया है या फिर वो जो है ले ले करके फिर बोया है।
2: वही तो गला दिया।
1: अच्छा गला दिया है उसको आपने।
2: पानी भरे फोरो
1: हाँ तो ठीक है ना। कहाँ से बोल रहे हो आप।
2: सांबरबा से।
1: अच्छा सांबर से कोई नहीं वो तो सही है आपका तरीका।
0: तो डॉक्टर साहब कई बार आपने देखा था कि आपनों जो किसान छे वो किसान यह भी न समझ पावे कि समन्वित कीट नियंत्रण काय हो छे। तो आप ये बताओ कि समन्वित कीट नियंत्रण की आप बात कर रहे हो तो काय हो छे मतलब कशा करे हुआ।
1: इसमें यही है कि जो अलग अलग तरीके हैं
0: जी
1: उनको एक साथ काम में लेना है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप जैसे घरों में कोई आपने कोई बीज रखा है या कोई भंडारण किया है कोई दाना रखा है उसको अपन गर्मियों में भी धूप में लगाते हैं उसमें ताकि उसमें वो कीड़ा जो है वो मर जाता है। इसके अलावा अपन कहते हैं कि गर्मियों में खेत की गहरी जुताई अपने को करनी चाहिए। इसके साथ जैसे मैं अगर आम की बात करूं तो आम में जो होता है मिलीबग का प्रकोप होता है तो अपन कहते हैं कि भाई नवंबर दिसंबर महीने में उसके पौधे के चारों तरफ जो है हल्का 3 सीट लगानी चाहिए ताकि मिलीबग का प्रकोप नहीं हो पाए। इसी प्रकार से अनार में फल मक्खी का प्रकोप होता है तो उसमें भी आपने देखा होगा फलों को केप पहनाते हैं कागज पहनाते हैं ताकि वो फल मक्खी का प्रकोप नहीं।
0: डॉक्टर साहब एक श्रोता जुड़ पहुंचाओ। हेलो
3: हेलो।
0: हाँ जी राम राम साहब।
3: राम राम।
0: कौन बोल रहे जो
3: चेता हूँ तो देवलाल।
0: हाँ देवलाल जी काई प्रश्न चाहे आपको बताओ।
3: अरे मर्चा
1: मर्चा
0: मर्चा लगा रखे जा आपने। अच्छा काहे वो जो मर्चे हम
3: ऑटोमेटिक पौधा
1: नहीं पौधा उसकी

0: व्यक्ति है, मुड़ के सूख रहा होगा?
1: नीचे सूख तो अपना भी सूख जाएगा।
0: अच्छा, नीचे से सूख रहा है, जड़ से सूख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक ट्राइकोडर्मा नाम का पाउडर आता है, लिख लीजिए आप, उसको आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के आप जब खेत में जो भी रोप तैयार करते हो या पौध लगाते हो उससे पहले खेत में आपको डालना होगा उसको, तो वो जो जड़ वाली जो समस्या है वो आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है एक समस्या आती है वो माथा बंधने वाली समस्या, जिसमें पत्तियां मुड़ जाती है, पूरा ऊपर से सिकुड़ जाता है पौधा। तो उसके लिए जो है आपको जो नीम के जो उत्पाद हैं उनका आपको प्रॉपर जो है छिड़काव जो है हर 7-10 दिन में आप करते रहोगे तो वहां पे वो वाली समस्या भी नहीं आएगी।
1: पर बाहर फल आ रहे
0: हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो जड़ के अंदर वो लगा गया चला गया है, तो इस केस में आप जो है पानी के साथ जो है कार्बेंडिज्म प्लस मेनकोजेब जो है आप पानी के साथ दें, जड़ में जाएगा तो वो उभूख की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आपकी कम हो जाएगी, लेकिन जो पौधे चले गए उनका कुछ नहीं हो सकता।
1: हाँ, उनको तो घर का ही नहीं हो।
0: हाँ, उनका कुछ नहीं हो सकता। आपको ड्रेंचिंग करनी है कवकनाशी से?
1: ड्रिप वाली?
0: हाँ, ड्रिप वाली, तो उसी के साथ आपको कवकनाशी मिला देना है और पानी के साथ उसकी जड़ में चला जाएगा।
2: डॉक्टर साहब, बातें तो घनी सारी रहे छे और टर्म आपनों एक छोटो सोच है, तो अब आप मांगता ये बताओ कि बिना रसायन का भी अगर आपन कोई कीट कता ही नियंत्रण कर सका जाएगा?
0: संभव है ना
2: जी,
0: क्योंकि रसायन तो अभी के दौर में आए हैं। आज से कई सालों पहले बात करते तो रसायन नहीं थे
2: जी,
0: उस दौर में भी कीट नियंत्रण होता था, सब्जियां उगती थी, फल होते थे
2: जी,
0: खाते थे अपन और हष्टपुष्ट रहते थे
2: जी।
0: तो बिना रसायन के भी संभव है, लेकिन उसमें यही है कि आपको जो दूसरे तरीके हैं रसायन के अलावा, जितने भी तरीके हैं, भौतिक है, यांत्रिक है, कर्षण है, अलग अलग इसमें तकनीकें हैं, उनको आपको काम में लेना पड़ेगा। जो भी किसान भाई बिना रसायन के कोई खेती करना चाहता है तो वो अपने नजदीकी जो भी कृषि विभाग का जो ऑफिस है या अनुसंधान केंद्र है वहां जाके जानकारी ले सकता है और ये खेती आसानी से की जा सकती है।
2: अजय, मतलब बिना रसायन का भी
0: कर सकते।
2: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अजय डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं आपनो जो आसपास को वातावरण च या फिर आपने आसपास का गांव में शहर में ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो रहे छे और आपने देख रहे जाकर कैंसर की जो शिकायत छे आज आपन देख रहे जाकर 10 ग्राम से 1 ग्राम या 20 ग्राम से 1 ग्राम तो छे ही सही, तो मुख्य कारण काय मानो छो आप?
0: ये मुख्य समस्या है कि रसायनों का जो जमाव है आपकी फल सब्जी के अंदर चला गया है
2: जी,
0: आपके भोजन के अंदर चला गया है, वो ऐसा कैसा अपने शरीर के अंदर चला गया है
2: जी,
0: और शरीर के अंदर जमाव हो जाने से वो रसायन जो है अपने शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। आज अपने को इतनी बीमारियां देखने को मिल रही है
2: जी,
0: लेकिन अगर अपन 100 साल पहले की बात करते उतनी बीमारियां नहीं थी,
2: बिल्कुल
0: पहले हॉस्पिटल इतने नहीं थे, आज इतने सारे हॉस्पिटल है, फिर भी लोगों में बीमारियां दूर नहीं हो पा रही क्योंकि रसायन अपने शरीर के अंदर जम चुका है। अब समय आ गया है कि अपने को वापस जैविक खेती की ओर जाना पड़ेगा, परंपरागत जो खेती पहले की जा रही थी वहां जाने की आवश्यकता है।
2: कुल मिला रहे डॉक्टर साहब बात यह अपने बिना रसायन ही जो कीट मारना पड़ेगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, और आपका मनमसी कोई बात हो जो आपने किसान भाइयों से न करे हो तो वह भी बता दियो आप।
0: मैं किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगा
2: जी
0: कि आज अपना देश जो है खाद्यान्न उत्पादन या हर प्रकार के उत्पादन में अपन बहुत आगे चले गए हैं। अब अपने देश को उत्पादन की आवश्यकता नहीं है, मात्रा की आवश्यकता नहीं है, आज अपने देश को गुणवत्ता की आवश्यकता है, क्वालिटी की आवश्यकता है कि जो अपन पैदा कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। आज मैं बात करूं, आज अपन सारे जैविक बात कर रहे हैं, सरकार भी इसको और ध्यान दे रही है, सरकार ने भी अलग अलग योजनाएं ला रखी है, सरकार भी जैविक खेती का प्रमाणीकरण कर रही है, तो जैविक उत्पादों की मांग मार्केट में बढ़ रही है और अपने को बढ़ानी पड़ेगी अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, तो इस ओर अपने को विशेष ओर से ध्यान देना है।
2: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आया, आपके ताई बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।
0: राम राम
2: सर।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। RKVY कृषि विकास के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य है दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से जस्ता और लोहा यानी जिंक और आयरन की मात्रा बढ़ाकर मनुष्यों में

0: पोषण सुनिश्चित करना और इसकी कमी से होने वाले एनीमिया जैसे रोगों की रोकथाम करना। राजस्थान कृषि विकास योजना राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मीदगंज पर अनुसंधानों के द्वारा दालों में जिंक और आयरन यानी जस्ता और लोह तत्व के फसल सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रहा है। तो संपूर्ण कृषि विकास के लिए ARS कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मीदगंज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़िए और देश के विकास में भागीदारी निभाइए।
1: भाई बड़ाओ आपका धन्ना भाई कताई विद्यु आ गया चालना सा राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं आपको सुनवाते हैं पर्यावरण संतुलन के लिए मिलकर उठाए गए कदम पर परिचर्चा।
3: श्रोताओं कई बार हम सुनते हैं कि पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है, हमें पर्यावरण संतुलन के लिए कुछ कदम उठाने होंगे, लेकिन क्या है वो कदम, हमें कौन बताएगा कि हमें क्या करना है। जी हाँ, हम जानेंगे विशेषज्ञों से। इसी विषय को लेकर के आज हमने एक परिचर्चा आयोजित की है हमारे स्टूडियो में, और इस परिचर्चा में हमारे साथ रहेंगे श्री लेखराज शर्मा जी जो हैं वरिष्ठ पत्रकार, श्री ब्रजेश विजयवर्गीय जी जो हैं चंबल संसद के संयोजक, और डॉक्टर अमित सिंह राठौर जी, आप डायरेक्टर हैं ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर में। आइए श्रोताओं इनसे जानते हैं कि हम पर्यावरण संतुलन के लिए क्या कदम उठाएं। श्री लेखराज शर्मा जी, परिचर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। आपने कई लेख लिखे हैं पर्यावरण असंतुलन पर और पर्यावरण संरक्षण पर, आप कई लोगों से मिलते भी होंगे, कुछ आपके रिसर्च भी होंगे, क्या बातें आपको लगती है, क्या छोटी छोटी वो बातें हैं जिनकी वजह से आज हमें ये परिचर्चा आयोजित करनी पड़ी है, यानी पर्यावरण संतुलन के लिए हमें सजग होना पड़ा है।
4: जी मैम, एक्चुअल में क्या है, पर्यावरण की जो स्थिति है वो हमारे देश के अंदर बहुत ही गंभीर विषय होता जा रहा है।
3: बिल्कुल,
4: दिन प्रतिदिन वृक्षों की जंगलों की कटाइयां हो रही है, जिससे हीट वेव चलती हुई है, जो अपन जो कह रहे हैं ना गर्मी इतनी तेजी से पड़ रही है, उसका कारण क्या है, उसका मेन कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है वो वृक्षों की कटाई। जब तक हम इन वृक्षों की कटाई को नहीं रोकेंगे तब तक अपना ये जो पर्यावरण है वो सही नहीं हो पाएगा। इसको सही करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने पड़ेंगे अपने को। सेकेंडरी चीज क्या है, अपनी जो पॉलीथिन आती है ये इतना नुकसान करती है, अगर एक बार ये जमीन में चली जाती है तो वो जमीन भी बीमार हो जाती है और इंसान भी बीमार हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग बाग रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग कर रहे हैं खेती के लिए, वो जो फसल पैदा हो रही है वो फसल किस तरीके की है अपन उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अपन ज्यादा उसको ज्यादा अपने उसका वजन बैठे उसके लिए अपन उसको बोतो देते हैं, लेकिन वो कितनी बड़ी नुकसान दे, वो जहर होता है। तो इसलिए ये जो बहुत छोटी छोटी जो चीजें जिनका आप बता रहे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज पर बहुत गहनता से विचार करने के बाद में तभी अपने को ये पर्यावरण है जो अपना संतुलित रहेगा, और ये किसी पर्टिकुलर एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है।
3: बिल्कुल,
4: इसके लिए मैडम हर आदमी को अपने आप को खुद को अवेयर होना पड़ेगा। मेरे पास में जहां मैं रहता हूं वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, ग्रीनरी कैसी होनी चाहिए, वहां पर साफ सफाई किस तरीके की होती है, अपने जो पहाड़ है, खनन है, ये सब पर्यावरण की चीज है मैम। तो इनको सबको अपनी एक अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, अपना एक नैतिक दायित्व मानते हुए, किसी भी चीज को हर चीज को सरकार के ऊपर ही छोड़ देना वो नहीं है, अपनी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये है मैम जी,
3: बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा है सरकार से ज्यादा। श्री ब्रजेश विजयवर्गीय जी, आप चंबल संसद के संयोजक हैं, यानी जल से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आपके पास है, और जल से जुड़ा हुआ आपने काम भी कई वर्षों तक आपने जल संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है। ऐसा क्या हुआ कि जल के संरक्षण की नौबत आन पड़ी?
5: जल हमारे जो पंच महाभूत है उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में है, और हमारा शरीर भी अधिकांशतः जल से ही बना है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते।
3: बिल्कुल सत्य।

0: पत्रकार के रूप में जब मैंने रिपोर्टिंग की तो उसमें अपने आसपास के क्षेत्रों के सभी जल स्रोतों को अपनी आंखों से जाके देखा और उनकी स्थिति का अध्ययन किया, और जो उनकी हालत खराब हो चुकी थी उसमें को लेकर कहीं ना कहीं पीड़ा थी। जैसे तालाब हैं, तो इन सबको लेकर मैंने एक पुस्तक लिखी आज से करीब 30 साल पहले, जल निधि। तो कहते हैं कि लिखते लिखते लव हो जाता है, तो हमें भी पर्यावरण पर लिखते लिखते इसी जल जैसे विषय पर एक उसके प्रति एक प्रेम जैसी भावना होगी।
1: बिल्कुल
0: जब हम किसी से प्रेम करने लगते हैं तो उसमें संरक्षण का भी विचार आता है, कि केवल वो केवल यही नहीं होता कि हम उससे जो है अफेक्शन रखते हैं। तो इसी के नाते हमने देखा कि हाड़ौती क्षेत्र में सबसे बड़ा जल स्रोत है हमारा चंबल। हमने देखा कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जीवन रेखा है, और पूरे राजस्थान की निगाह चंबल के पानी पे है।
1: बिल्कुल
0: इवन जयपुर तक, जयपुर में भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अभी बीसलपुर से जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही है। सवाई माधोपुर के लिए बन चुकी है, बूंदी में चंबल से जा रहा है, और भी कई शहर जो है चंबल से पानी पे, चंबल के पानी के ऊपर निगाह जमाए हुए हैं। तो इसमें अर्थात जल राशि है। जल राशि इसलिए कहता हूं मैं कि जल एक वो नहीं है, एक राशि के समान महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हमारी राशि को काउंट करते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसको सेफ रखते हैं, उसी प्रकार हमें पानी को भी सेफ रखना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे हाथ में जो है कि इसको कौन करता है, जल स्रोतों को खराब सरकार करती है या समाज करता है या और कोई करता है। सरकार और समाज एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, और सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है और संवैधानिक दायित्व भी है कि उनको जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। अब बात आती है आम आदमी के हिस्से की, आम आदमी क्या करे। आम आदमी जल को प्रदूषण से मुक्त करने के उपाय अपने स्तर पर वो कर सकता है। जैसे कि हमारे साथी शर्मा जी ने बताया कि
1: जी
0: पॉलीथीन प्लास्टिक का कचरा एक जहर के समान है, जो हमारी नदियों को, हमारे तालाबों को, हमारी कुएं बावड़ियों को, सबको प्रदूषित कर रहा है। हमारी जो यूज एंड थ्रो की आदत है, यूज करो और फेंको, तो ये जो एक कल्चर के रूप में हमारी सोसाइटी के अंदर विद्यमान हो गया है, इस आदत को बदलने की बहुत आवश्यकता है। जब तक हम इस आदत को नहीं बदलेंगे, और इस आदत को बदलने के लिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हम नई पीढ़ी से ये उम्मीद करते हैं कि वह इस तरह की के उपाय करेगी। जब तक उसको शिक्षित नहीं किया जाएगा तो ये केवल दीवारों पे नारे लिखने से, केवल संगोष्ठियां सेमिनार करने से,
1: बिल्कुल
0: भाषणों से स्थिति में को हम ठीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारी शिक्षा में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का भाव जागृत होना चाहिए। हमारी शिक्षा नीति है उसके अंदर ये तत्व आने चाहिए। जब भी हम नई पीढ़ी से बदलाव की उम्मीद करेंगे, 160 साल के व्यक्ति को समझाना पानी का महत्व, यह कोई ज्यादा बेहतर बात नहीं होगी कि हम एक नए बच्चे को समझाएं, उसके परिणाम अच्छे आएंगे। और इसी जगह हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं कि हमारी नई पीढ़ी को हम सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड बनाते जा रहे हैं। कैरियर उनके जीवन में इतना हावी हो गया है कि उनको इन चीजों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि हम किसी बच्चे से पूछते हैं पानी कहाँ से आ सकता है, तो वो सीधा सा जवाब देता है टैप में से आता है,
1: बिल्कुल
0: उसके आगे उसके थॉट्स ही नहीं है। हमने जो पॉलीथीन प्लास्टिक हमारे यूज करके फेंका है, वो कहाँ फेंकना है, उसको एक चीज बता दी, ये डस्टबिन में फेंकना है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, उसके थॉट्स में वो चीज नहीं है।
1: बिल्कुल
0: हमारी नदियों को प्रदूषित करता है, हमारी जमीन को करता है, हमारे खेतों को करता है, और जब उसमें आग लगा के कचरे का निस्तारण किया जाता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में फैलता है, तो वो वायु प्रदूषण का भी कारण बनता है। और हमारे यहाँ बड़े बड़े पहाड़ कचरे के हो गए, और इतने ऊंचे

0: इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो गए हैं दिल्ली के वजीराबाद में कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है,
1: बिल्कुल
0: कचरे का ढेर।
1: बिल्कुल, ये तो स्थिति शोचनीय
0: और वहां के जो भूगर्भ जल भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है, और जो सतही जल है लेयर वाटर वो भी खराब हो चुका है। जब ये सारी चीजें खराब हो रही है तो वर्षा जल से हम कि एक एक बूंद को बचाना ये हमारे विचारों में आना चाहिए। जब भी हम जल की

0: ऐसा जलसे हूँ कि एक एक बूंद को बचाना ये हमारे विचारों में आना चाहिए। जब भी हम जल को आने वाली पीढ़ी के लिए बचा पाएंगे और कल को सुरक्षित कर पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अमित सिंह राठौर जी, आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, एक स्वाभाविक बात है कि उद्योगों में आना जाना आपका रहता है, तो उद्योगों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें पर्यावरण प्रदूषण में, जो एक सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो उद्योगों को माना जाता है, ऐसा क्यों है?
2: देखिए, जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो उद्योग कई प्रकार के हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जब काम होता है तो बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग होता है। वो केमिकल जब गैस छोड़ते हैं तो सीधा पर्यावरण के साथ मिलते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और उसका जो वेस्ट है, जो निकलता है, वो सब जल के साथ मिलता है। तो हम वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी करते हैं। जो अभी 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं, तो इस बार 2026 की जो थीम है वो भी यही है, क्लाइमेट एक्शन रिपेयरिंग अवर रिलेशनशिप विद नेचर, यानी जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई और प्रकृति के साथ संतुलित संबंध। इस थीम का मुख्य उद्देश्य केवल कार्बन उत्सर्जन कम करना नहीं, बल्कि जीवन शैली, उद्योग और विकास के तरीकों में पर्यावरण अनुकूल बदलाव लाना है। और जब तक ये बदलाव हम नहीं लेके आएंगे, हमको ये मानना पड़ेगा कि हम पर्यावरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे। हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की, यानी जैव विविधता, लेकिन मनुष्य ही इस जैव विविधता को बहुत तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। हम कहते हैं कि सरकार को, सरकार चाहे कोई सी भी हो, हम हमेशा ये कहते हैं कि सरकार को ये काम करना चाहिए। हम अपने अधिकार की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब हमारी कर्तव्य की बात आती है हम सब लोग पीछे हट जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज जो वृक्षों की कटाई की हम बात कर रहे हैं, यदि मैं कोटा शहर की बात करूं तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन लाखों वृक्षों को, जो बरसों पुराने वृक्ष थे, उनकी अंधाधुंध कटाई हुई है। हमने कॉन्क्रीट का जाल सब जगह फैला दिया है। यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो रोड के दोनों साइड्स, जहां पर पहले कच्चा हुआ करता था, आज हमने उसको सीमेंट कंक्रीट से पक्का कर दिया है। तो आप मुझे बताइए, जब वर्षा जल, जब बारिश गिरेगी तो वर्षा जल कैसे धरती के अंदर जाएगा और वाटर लेवल बढ़ेगा? आज वाटर लेवल हम देख रहे हैं कि पाताल तक पहुंच रहा है। तो ये स्थिति आने वाले समय में हमारे को जल बचेगा ही नहीं, और कहते हैं कि जल है तो जीवन है।
1: बिल्कुल।
2: तो हमारा जीवन किस तरह से आगे बढ़ पाएगा? आने वाली जनरेशन के लिए हम बहुत बड़ा मतलब घातक प्रयास कर रहे हैं। हमें अभी भी सचेत रहना चाहिए कि हमारा जो भूजल है वो इतना डेप्थ में जा रहा है कि हमारे लिए आज हम चंबल की बात करते हैं, हम चंबल के पास रह रहे हैं, लेकिन कई एरिया आज भी ऐसे है जहां पानी नहीं है। लोग सुबह सुबह डब्बे लेके, बाल्टी लेके घूमते रहते हैं, कई किलोमीटर तक जाते हैं तब जाके उनको पानी नसीब हो पाता है। चंबल की यदि हम बात करें, चंबल के अंदर डायरेक्ट सीवरेज के इतने सारे नाले डायरेक्टली मिल रहे हैं जो चंबल को जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके कारण यदि हम हेल्थ हैजार्ड्स की बात करें तो बच्चों के अंदर पेट से संबंधित बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है। उसका मेन कारण ही वाटर पॉल्यूशन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम जो सभ्य समाज की बात करते हैं, हम हवन सामग्री, पूजा सामग्री जो भी करते हैं वो सीधा पानी के अंदर प्रवाहित करते हैं। तो समझदार लोगों को ये समझना चाहिए कि कम से कम हम लोग तो वाटर को पॉल्यूट नहीं करें।
1: बिल्कुल।
2: तो मेरा आप सभी से, जो जो भी श्रोता है, जो सुन रहे हैं, मैं यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों को खुद को सजग रहते हुए सब तरह से प्रयास करने पड़ेंगे ताकि प्रकृति को बचा सके, वृक्षों की कटाई को, जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उनको रोके, और जो वाटर पोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं जाने अनजाने के अंदर वो नहीं करें। सीमित संसाधनों के साथ जितना उपयोग हमको पानी का करना चाहिए उतना उपयोग करें, ताकि हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति क्योंकि वृक्ष रहेंगे तो जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल होगा।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि ये जैव विविधता का कारण है, ये एक साइकिल है। यदि एक भी चीज को हम डिस्ट्रॉय करेंगे वो पूरे हर तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा।
1: बिल्कुल। लेखराज शर्मा जी, जैसा आपने कहा कि प्लास्टिक भी है और कई चीजें हैं, आपके लेख रहे हैं उनमें, मैंने भी कुछ लेख पढ़े हैं आपके, तो आप जब पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ कोई भी आलेख लिखते हैं उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आपको कभी मिली है?
3: जी,
1: सकारात्मक और नकारात्मक,

0: दोनों बताएं।
1: मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ आपके लिए। मैं एक बार किसी उच्च अधिकारी महोदय के पास बैठा था, तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था, तो वो बोले यार मेरे ताऊ जी को कैंसर है। तो मैंने कहा ये कैसे कहते पता चला, तो उन्होंने बोला कि वो जिस तरीके से वो थे वो चाहे होटल से और उस पॉलीथिन में पैक करा करके पीते थे। होटल पैसे जो चाय आती थी उसको पॉलीथिन में पैक करा करके लाते थे और कंटिन्यूसली में कई सालों से भी यही कर रहे थे
0: जी।
1: तो जब उनको जब चेक किया तो उसमें जहर पाया गया, कैंसर का लक्षण पाया। तो इसीलिए आपने जो कहा है कि मैंने उसी हिसाब से मैं आर्टिकल लिख करके मैं एक अवेयर करता रहता हूँ कि अपन को ये जो छोटी छोटी चीजें इन पर बहुत ध्यान दें। कई बार अपन होटल ढाबों वालों के पास में जाते हैं, विशेषकर हॉस्पिटल के आसपास आप ज्यादा देखिएगा, उसके मरीज अंदर हॉस्पिटल के अंदर हैं, वो उनको खाना लेकर के लिए किस में लेकर के जा रहे हैं,
0: पॉलीथिन
1: के अंदर लेकर के, वो स्लो पॉइजन जहर है, वो कैंसर आता है उससे, वो सीधा अपने किडनी पे इफेक्ट करता है उससे। इसीलिए अपने को सरकार बोलती है पॉलीथिन मुक्त, पॉलीथिन दोनों चीजें सरकार ने तो बोल दिया, उन्होंने तो अपना काम कर लिया, लेकिन कुछ अपनी भी जिम्मेदारी है। अपन कहीं भी जाते हैं जल्दी में जा रहा हूं भाई मैं होटल पे चाय दे दी पैक कर दीजिए फटाफट, समय नहीं है, ये नहीं है। आप चाय लेने के लिए होटल पे जा रहे हैं तो एक कोई केटली लेकर के जाइए, या वहां से इस तरीके की कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि वो एक ट्रांसपेरेंट से उस तरीके से होता रहे। तो सबसे पहले अपने को जो ये पॉलीथिन है, ये नारे लगाने से, स्लोगन लिखने से इससे कुछ नहीं, हर चीज को जब तक अपन अपने ऊपर किसी चीज का एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तब तक वो चीज संभव नहीं है। हर आदमी को सोचना पड़ेगा, प्रत्येक इंसान को सोचना पड़ेगा, किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि ये पर्यावरण के बारे में सोचना, इन छोटी छोटी चीज, पर्यावरण है क्या, पर्यावरण है क्या, यही चीज है पर्यावरण। परी एक संस्कृत भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण यानी चारों तरफ का आवरण, यही पहाड़ है, नदियां है, ये अपने वृक्ष हैं, यही पर्यावरण है। और इनको जब तक अपन सेफ नहीं करेंगे, अब आपने पॉलीथिन के लिए क्या है, पॉलीथिन एक उस तरीके के, वो जहां भी हो जाए वो कभी 100 साल में भी खत्म नहीं होगी
0: बिल्कुल,
1: और जिस जमीन में वो गड़ जाती है वहां की उसकी मृदा को खत्म कर देती है, उससे अपनी फसल भी नहीं हो पाती है, और फिर उसके धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जिसके जो अवगुण है वो उस जमीन के अंदर प्रभावित होते रहते हैं और वो जमीन बंजर हो जाती है, वो किसी काम की नहीं होती है। दूसरा मैंने एक निवेदन किया था रासायनिक उर्वरक
0: जी।
1: वर्तमान में क्या है, किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इन रासायनिक उर्वरकों का इतना विशेष इस्तेमाल कर रहा है कि अपन सोच भी नहीं सकते। पहले अपन देखते थे खेत के अंदर गेहूं बहुत कम मात्रा में होता था, लेकिन वो प्योर होता था, ऑर्गेनिक होता था वो। आज क्या हो रहा है, उसकी जो लागत है वो भी बढ़ गई, खाद, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ये वो इस तरीके करके, वो है क्या, वो सब जहर है
0: बिल्कुल।
1: उससे उसको अपने को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक अपन ये सबसे कम इनमें खाद खेत में कम से कम अगर जरूरत है तो ही डालो, नहीं तो बिल्कुल मत डालिए, तभी जाकर के ये भारत भी मजबूत होगा। ऐसे आज आदमी है बिल्कुल उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है, खाता क्या है, सब्जियां वो कहां से आ रही हैं, किस तरीके की आ रही हैं, वो सभी को पता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें है ना मैम, ये सारी चीजें पर्यावरण के लिए, इन्हीं सभी चीजों को मिलकर के पर्यावरण बनेगा ये
0: बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने जो बात की कि किसानों ने
1: जी
0: अनावश्यक जो रासायनिक प्रयोग किया, इस क्षेत्र में आपको कोई विशेष ऐसी बात नजर आई क्या, जब आप आलेख के लिए आप अगर रिसर्च करते हो तो कोई ऐसी विशेष बात जो बहुत ज्यादा जिसने पर्यावरण को रासायनिक खादों के अलावा बहुत बड़ी बात कोई ऐसी नजर आई जिसने असंतुलन को बढ़ावा दिया?
1: मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब से एक ट्रेन आती है बीकानेर के लिए
0: जी,
1: ठीक है, उसको उस ट्रेन का ही नाम कैंसर ट्रेन पर रख दिया लोगों ने।
0: ओहो,
1: और सबसे ज्यादा जो रासायनिक उर्वरक खादों का जो उपयोग होता है वो पंजाब के अंदर होता है। अब आप उसी से आइडिया लगा लीजिए कि किस तरीके से लोगों को वहां पर डेथ, मतलब वो ये हो चुका है इसके अंदर। तो कोई भी चीज आवश्यकता के अनुसार होती है वो तो होती है सही, बिना आवश्यकता के अनुसार उसको अपन ज्यादा लाभ कमाने के लिए, ज्यादा वजन बढ़ाने के लिए, कोई भी चीज हो उसका अगर ज्यादा से ज्यादा अपन इस्तेमाल करेंगे ना तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। लिमिट में होनी चाहिए हर चीज, क्योंकि लिमिट में क्यों होनी चाहिए कि ये भारत है, इसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, ये जनसंख्या भी अपने आप में बहुत बड़ा पर्यावरण का एक कारण है, जनसंख्या सबसे बड़ा कारण है। आज अपने अंदर जनसंख्या है वो बढ़ती हुई जा रही है देश की
0: बिल्कुल,

0: ये सबसे बड़ा जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वो जनसंख्या से हो रहा है। आप छोटे छोटे अन्य देशों में देखिए वहां की जनसंख्या किस तरीके से, वहां का क्षेत्रफल क्या है। अपने यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो जनसंख्या है। जनसंख्या पर सबसे पहले कंट्रोल लगना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। जनसंख्या कंट्रोल होगी तो पर्यावरण ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, और जनसंख्या के साथ शायद अपनी आदतें भी कंट्रोल करनी चाहिए, जिससे ज्यादा होगा।
0: जिससे ज्यादा होगा जी।
1: बिल्कुल, ब्रजेश विजयवर्गीय जी, आप जल के क्षेत्र में जो आपने काम किया और आपने अभी कुछ समय पहले उससे संबंधित बातें भी बताई, जल प्रदूषण किन किन कारणों से, क्या क्या वो चीजें हैं जो जल को अति प्रदूषित कर रही हैं, जिसकी वजह से आज हम सादा पानी नहीं पी सकते
2: जी? जल प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है हमारा म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट। जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसका निस्तारण की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया है नहीं। जो है उसको हम मन से स्वीकार करते नहीं हैं। जैसे कि चंबल में सैकड़ों गंदे नाले गिर रहे, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे हुए हैं, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट जब बनाए जाते हैं तो उनमें कितनी कैपेसिटी से वो पानी आएगा, कितनी कैपेसिटी से शुद्ध होगा, उसका सही आकलन होता नहीं है। तो हमारे यहाँ तीन जो ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं उनमें से एक भी फिट नहीं है। हम दावा नहीं कर सकते कि वह सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमने पैसा भी खर्च किया और गंदे नाले भी ट्रीट नहीं हो रहे, वह सब उसमें जा रहे हैं। जैसे हम चंबल की बात करें, हम कोटा की आबादी चंबल के किनारे बसती है, तो चंबल की अपस्ट्रीम में शहर का पेयजल स्त्रोत है और वहीं से पानी लिफ्ट करके उसको सप्लाई किया जाता है और सबसे बड़े बड़े गंदे नाले उसी जगह गिर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो ये हमें देखना होगा, का मतलब हमें भी देखना होगा और सरकार को भी देखना होगा, क्योंकि आम आदमी के हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। जब प्रदूषित जल सप्लाई हो रहा तो वो किस प्रकार से पिएगा? वो तो पिएगा ही सही जो आ रहा है उसको। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार के साथ शासन, समाज और संत और महाजन, इन सबका एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। जब तक तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का कंप्लीट समाधान नहीं कर पाएंगे।
1: डॉक्टर राठौर, आपने अभी जब उद्योगों की बात की, तो जब कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है, कोई भी उद्योग जब उसकी स्थापना होती है, तो उस वक्त मॉरल एथिक्स भी होते हैं, समाज के प्रति वो उसकी वैल्यूज जो है, उसके मूल्य है, वो भी निर्धारित होते हैं। तो उस वक्त क्या इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति हैं ये भूल जाते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री या जो हमारा उद्योग इस्टेब्लिश होने वाला है, स्थापित होने वाला है, उससे इस समाज पर या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उन्हें उस वक्त याद नहीं रहता है?
3: मेरा इस जगह ये मानना है कि जब भी किसी उद्योग का एस्टेब्लिशमेंट होता है
1: जी,
3: तो वो शहर से काफी दूर होता है इनिशियल लेवल पे, लेकिन जब उद्योग स्टार्ट होता है और वो अपनी गति से काम करता है तो उसके पास धीरे धीरे बस्तियां बसना स्टार्ट हो जाती है। और जब उद्योग स्थापित होता है तो उसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उनको एक एनओसी लेना पड़ता है ताकि वो उद्योग पे स्टार्ट कर पाए। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो ये जो गवर्नमेंट के जो मापदंड है उसको देखते हैं कि वास्तव में इससे जो कार्बन उत्सर्जन होगा उसका प्रॉपर वे के अंदर ये लोग सेटलमेंट करेंगे या नहीं। और उद्योगों को ये डायरेक्शंस दिया जाता है कि जितने वृक्ष आपको आसपास लगाने हैं वो उनके लिए मैंडेटरी है। यदि आज मैं आपसे बात करूं कोटा के अंदर, देखिए चारों तरफ वहां पर हरियाली का आवरण बिछा हुआ है और आए दिन वो काफी वृक्षारोपण भी करते हैं और जहां पर उनकी जो धूल वगैरह जहां निकलती है वाटर शावर का भी इंतजाम किया हुआ है ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के अंदर नहीं उड़े ताकि वायु प्रदूषण न हो सके। जब लोग आपस में बसेंगे तो आप जानते हैं कि कोटा या किसी भी शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीवरेज की।
1: बिल्कुल,
3: जो सीवरेज प्लांट है वो सफिशियंट नहीं है और जो घरों से निकलने वाला मल है वो डायरेक्टली नाली में मिलता है और नाली से मिलके नदी के अंदर प्रवेश करता है। आज भी यदि हम कोटा शहर की बात करें, मुश्किल से 1.5 लाख घर सीवरेज लाइनों से जुड़े हैं डायरेक्टली, जिसका जो मल है वो सीधा एचटीपी प्लांट के अंदर जाता है। बाकी जो वाटर है वो सीधा चंबल नदी के अंदर मिलता है। तो आप समझ सकते हैं जो पॉल्यूशन है वो किस तरह से विकराल

0: रूप से हम लोगों के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए खाली हम एक उद्योगों को जिम्मेदारी दें यह संभव नहीं है। उद्योगों ने तो अपने लिए आज की तारीख में बहुत अच्छे प्रयास किए। कार्बन उत्सर्जन यदि हम कहें तो वास्तव में इतना नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन मैं यदि बात करूंगा वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण है। और हम किसी भी शहर की बात करें, आज बड़े से बड़े शहर की बात करें, छोटे शहर की बात करें, हमारा जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो इतना हाई हो चुका है कि वास्तव में सांस लेना दुर्लभ है। यदि हम पहाड़ियों पर जाते हैं तो आप देखिए वहां हमें कितना अच्छा महसूस होता है, और जैसे ही हम वापस शहर के अंदर आते हैं तो हमारे सांस लेने में कितनी तकलीफ होती है। उसका मेन कारण ये जो पॉपुलेशन है वो तो एक है ही सही, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है चार पहिया वाहन। जिस गति से फोर व्हीलर्स बढ़े हैं उनके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है ये भी वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारक है। आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार यही कह रहे हैं कि कम से कम हम लोगों को सोलर एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, एयर का अच्छा से उपयोग करना चाहिए। लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं? यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सोलर का प्रोडक्शन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जब सोलर का होगा, जिस तरह से आज यदि हम कोटा या कोटा के आसपास बात करें तो हम कोल पावर का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे वायु प्रदूषण के लिए सबसे खतरनाक है।
1: बिल्कुल।
0: और उससे निकलने वाला जो जल है वो सीधा नदी में मिलता है, वो भी हमारे लिए वाटर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। तो इन सब चीजों को रोकना चाहिए। जितना हम रोकेंगे, जितना हम सजग होंगे, और इसमें मैं अगेन आपसे फिर यही निवेदन करूंगा, इसमें हर व्यक्ति की सहभागिता बहुत आवश्यक है। यदि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को दोष दें तो खाली वो उससे काम नहीं चलेगा। हम सिंगल पॉलीथीन की जब हम बात करते हैं तो हम बार बार ये कहते हैं, सरकार कहती है कि आप पॉलीथीन यूज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ इस जगह यही कहना है, क्यों नहीं ऐसे प्लांट को ही बंद करते हैं? हम प्लांट बंद नहीं करते, लेकिन जागरूकता में जितने बहुत सारे NGOs हैं जो इसके ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, उनको बच्चों को बताने के लिए स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग कंडक्ट करवाते हैं ताकि बच्चे इस जगह सजग रहे। इवन सरकार ने भी कहा कि नो सिंगल यूज पॉलीथीन, आपको कहीं यूज नहीं करना। इवन हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, हम सिंगल पॉलीथीन को यूज ही नहीं करने देते। आज हमें शर्म आती है कि हम एक बैग अपने साथ हमेशा साथ कैरी करें। पहले भी हम देखें पूर्व काल में हम चले जाएं तो हमेशा एक थैला हमेशा होता था, जूट का थैला हो चाहे धोला। लेकिन आज हमारा जो स्टेटस सिंबल है हमें ये अलाउ नहीं करता कि हम थैला साथ में रखें। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि हम पॉलिथीन का उपयोग कम से कम करें। अभी शर्मा साहब ने जो बात बताई थी वो बहुत सार्थक है कि आज जिस तरह से हम लोग केमिकल का जो उपयोग कर रहे हैं, जो मिलावट खाद्य पदार्थों में हो रही है, ये जहर का काम कर रही है। चाहे हम फ्रूट्स की बात करें, चाहे वेजिटेबल्स की बात करें, चाहे मैं इवन नॉन वेज की बात करूं, सब में मिलावट है। और इतनी मिलावट है वो कैंसर का कारक है। और जो स्टडीज बता रही है कि 2030 तक भारत के अंदर जो कैंसर पेशेंट होंगे वो इतने ज्यादा होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं कहूंगा कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो कार्य हो रहा है वो बिल्कुल नगण्य है। तो इस पे सबको मिलकर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि जो किसान है वो अपने लिए एक या दो बीघा में ऑर्गेनिक खेती का काम करते हैं। लेकिन आप ऑर्गेनिक खेती में ठीक है, आप अपने लिए वेजिटेबल उगा भी लेंगे, लेकिन आपको बाहर का तो खाना पड़े तब भी पड़ेगा। लेकिन सबको ये सोचना चाहिए कि आम जनता के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और आम जनता यदि वास्तव में देखा जाए तो इसके ऊपर त्रस्त है। और जो आज जितनी बीमारियां बढ़ रही है और जिस मशरूमिंग की तरह जो अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लाइन लगी हुई है, ये उसका मुख्य कारण है। इसलिए हमको सबको मिलके पॉल्यूशन के ऊपर, चाहे पॉल्यूशन किसी भी प्रकार का हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे ट्री कटिंग की हम बात करें, क्योंकि सब वापस अगेन मैं कहूंगा ये सब बायोडायवर्सिटी का कारण है और उसी के जो साइड इफेक्ट है हम अस्पतालों में देख रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने अभी कहा कि पॉलीथीन जो है हम स्टेटस सिंबल की तरह अब कैरी नहीं करते हैं, उसे लेकर ही नहीं जाते हैं। एक स्टेटस सिंबल और भी है, वो है फोर व्हीलर या टू व्हीलर। टू व्हीलर तो खैर अब स्टेटस सिंबल ही नहीं रहा, फोर व्हीलर स्टेटस सिंबल हो गया है। अगर आप उच्चाधिकारी हैं तो आपके पास कार होनी आवश्यक है, और एक के साथ अगर आपके पास एक है तो दूसरी भी होनी आवश्यक है।
0: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि
1: इस मानसिकता पर आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल आप सही कह

0: अरे, और आज आपने जो फोर व्हीलर की बात की है, मैं तो कह रहा हूं एक घर में तीन प्राणी और तीन ही कार बाहर खड़ी होती है। हर व्यक्ति के लिए एक इंडिविजुअल कार चाहिए। और ये जो कार है, जो ठीक है कार का उपयोग सभी को है मैं मानता हूं, लेकिन जो कार आई थी वो इसलिए आई थी कि वो फैमिली के लिए यूटिलाइज हो। लेकिन ये देखा जा रहा है कि एक सिंगल पर्सन उस कार का उपयोग करता है और उसी के कारण जो पॉल्यूशन हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहा है। जो आज पहले हमने कभी नहीं देखा कि कभी जाम लगा करता था, लेकिन आज आप किसी भी मेट्रोस के अंदर चले जाएं वो आपको घंटों घंटों सिर्फ रास्ते में निकलने के लिए, अपने ऑफिस तक पहुंचने में या कहीं भी आप जाना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचने में घंटों आपको वेस्ट करना पड़ता है। और जब आप लाल बत्ती के ऊपर रुकते हैं एक मिनट के लिए, तो आप सोचिए कि आप कितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और वही आपके हेल्थ हैजार्ड्स को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए ये बहुत खतरनाक है। और आज जो स्टेटस सिंबल जो फोर व्हीलर को बनाया है होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, उसके लिए मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा, लेकिन इसीलिए अब सरकार चाह रही कि लोग ईवी का उपयोग करें ताकि जो उत्सर्जन है कम हो, सीएनजी का उपयोग करें। जितने अच्छे अच्छे पहले सीएनजी की बहुत कम उपलब्धता थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सीएनजी के जो स्टेशन हैं वो बहुत जगह अब स्थापित हो चुके हैं, तो सीएनजी का उपयोग करें, ईवी का उपयोग करें ताकि जो वायु प्रदूषण है उनको हम भले हम गाड़ी यूज करें लेकिन उसका उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम वायु प्रदूषण को संतुलित कर पाएंगे।
1: जब बात हम लाइफस्टाइल की करते हैं, हमारी जीवन शैली की करते हैं, तो उसमें बहुत बदलाव हुआ है पिछले कई वर्षों में। इतने फेर बदल हुए हैं कि एक जो 90 वर्ष का व्यक्ति है और आज जो एक 9 से 10 साल का बच्चा है, दोनों की लाइफस्टाइल बिल्कुल विपरीत कहूंगी मैं तो, बदलाव भी नहीं कहूंगी या विकसित भी नहीं कहूंगी, बिल्कुल विपरीत है। तो इस तरह की लाइफस्टाइल के साथ आज हम पर्यावरण में भी बदलाव देख रहे हैं, तो क्या हमारी जीवन शैली में वो छोटे छोटे कदम होने चाहिए जो पर्यावरण के अनुरूप हो?
2: जी, आप कितना भी बड़ा काम करिए उसकी सभी की शुरुआत एक छोटी चीज से ही होती है। ठीक है, काम भले ही वो छोटा रहे लेकिन उसका अर्थ क्या है, ये है मेन चीज। अपने को ऐसा लगता है कि अपन, आप सर ने बताया था कि कैरी बैग लेकर के जाएं, हम कहां जा रहे हैं और किसको दिखा रहे हैं, स्टेटस है क्या हमारा, किसको दिखाना चाहते हैं अपन। जिस दिन हमारे दिमाग से ये साइकोलॉजी निकल जाएगी कि हम सब एक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब उस दिन ये सारा पर्यावरण का एक सबसे बड़ा जो अपने दिमाग के अंदर जो प्रोटोकॉल भरा हुआ है, वो जिस दिन तक, जब तक वो इंसान का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक भी पर्यावरण में बहुत ये सारा विशेष उसकी उसी के अंदर आता है। दूसरा क्या है, सारे काम बहुत, कोई भी काम देख लो, बड़ा काम कोई नहीं है, सभी काम छोटे हैं, और देखा जाए तो वो सभी काम बहुत बड़े हैं।
1: बिल्कुल,
2: आप उसको किस तरीके से देखते हैं। क्या अपने घर की सफाई करना छोटा काम है? क्या आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, छोटा काम है? क्या आप अपने पार्क की सफाई कर रहे हैं? क्या आप अपने मंदिर की सफाई कर रहे हैं? क्या आप रास्ते के आगे से भी, क्या है, छोटा काम छोटा है लेकिन उसका आउटपुट कितना बड़ा आता है। आज किसी काम को मान लो मैं मेरे घर के सामने करता हूं, तो हो सकता है मेरे को देख करके मेरा पड़ोसी भी उस पर झाड़ू लगाएगा, वो भी, मैंने मान लो मेरी कॉलोनी के अंदर कोई वृक्ष लगाया तो वो भी लगाएगा। अपने यहाँ क्या है, एक दूसरे को देख करके सारी चीजों का एक हुड़ मची हुई होती है। लेकिन कुछ आप अगर अच्छा करेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो उसको नेगेटिव बोलने की किसी की आदत होती है, वो तो नेगेटिव ही बोलेगा। लेकिन अपने को उन नेगेटिवों की बात नहीं सुन करके, अपने को अपने ही मन की बात सुन करके, किसी फालतू की बात को ध्यान में नहीं रखते हुए, आप जो कुछ कर रहे हो वो अपने देश के लिए कर रहे हो, अपने पर्यावरण के लिए कर रहे हो, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हो। अगर पर्यावरण है तो आगे आने वाली पीढ़ी है, पर्यावरण के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, बिना पर्यावरण के कुछ भी नहीं है। आप अपनी जो ये श्वास आती जाती है ये क्या है, पर्यावरण ही तो है। जिस दिन अपनी श्वास बंद हो जाएगी, श्वास कहां से आती है, ऑक्सीजन कहां से, पेड़ों से आती है। तो जिस दिन ये पर्यावरण ही नहीं रहेगा, वन ही नहीं रहेंगे, वृक्ष ही नहीं रहेंगे, पहाड़ नहीं रहेंगे, नदी नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा, तो इंसान भी नहीं रहेगा। ये सब कुछ है तो ही इंसान है, इनके अभाव में अपन इंसान की, जीवन की या भावी पीढ़ियों की कोई भी किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
2: जी,
1: बिल्कुल। एक छोटा सा यहाँ बात आती है कि जब बच्चे को शुरू से बाल्यावस्था से सिखाया जाता
2: जी,
1: है, तो उसके उसका जो सीखा हुआ है वो जीवन भर उसके साथ रहता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये विद्यालय

0: स्तर पर
1: जी
0: क्या छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं?
1: बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है वो छोटे रूप में ही होती है, और जो छोटे रूप में बाल्यावस्था में जो चीज़ याद रह जाती है वो लाइफ टाइम वाले जीवन चलती है। विद्यालय में देखिए कोई भी किसी भी काम को थोपना और एक अपने आप में करना,
0: बिल्कुल
1: दोनों चीजों में फर्क होता है। अभी सरकार ने पिछली बार कहा था कि हर बच्चे को 10 पौधे लगाने, 20 पौधे लगाने, ठीक है वो उन्होंने अपने कागज के आंकड़े तो पूरे कर लिए, लेकिन वो फिजिकली कहां है? मैं पौधा लगाऊंगा मेरी इच्छा से लगाऊंगा, किसी के कहने से नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये एनवायरमेंट, ये माहौल बनेगा कब? जब हम आपस में एक दूसरे को सीखेंगे, कोई लालसा करेंगे बिना किसी उसके अपने लोभ लालच के, अपन ये पर्यावरण से जब हम पर्यावरण को समझेंगे, पर्यावरण को, बच्चे को यही नहीं पता है कि पेड़ लगाने का अर्थ क्या है, पेड़ क्यों लगाया जाता है। जब तक उसको ये चीजों की पता नहीं चलेगा कि एक क्यों लगाया जाता है, हमारे जीवन में क्या काम आएगा। अभी सर ने बताया था थोड़ी देर पहले कि वो अपना घर का कचरा डस्टबिन में डालते हैं, तो उसको यही नहीं पता है बच्चों को तो वो कहाँ जा रहा है। इसीलिए जब तक बच्चों में ये चीज नहीं बताई जाएगी कि भाई हमारा जीवन कैसे चलता है, पर्यावरण में क्या है, पहाड़ क्या है, नदी क्या है, जल क्या है, वायु क्या है, अग्नि क्या है, तो विद्यालय के अंदर सबसे पहले अपने जो प्राइमरी विद्यालय है उनमें सबसे पहले नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो सबसे अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया कर, अच्छी चीज है, सब्जेक्ट पढ़ाइए, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको ये नैतिक शिक्षा, अपना पर्यावरण, अपना जीवन, अपना ये सारी चीज बताना बहुत जरूरी होती है। और बच्चे के दिमाग में कोई भी, आज बच्चा 100 में से 99% तो लेकर के आ रहा है, लेकिन वो अपने पिताजी से पिताजी कहकर के नमस्कार ही नहीं कर रहा है, अपनी माताजी के पैर छू करके ही नहीं जा रहा है। तो आप वो 99% लेकर के आगे, उसको यही नहीं पता ये मेरे अंकल जी आए, ये मेरे ताऊ जी आए, तो ये सारी चीजें कहां से होती हैं? ये घर से होती है, शुरुआत होती है। अब जैसा हम बच्चों के साथ में अपने जैसा बोलेंगे, बतराएंगे, बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे, वो भी वैसा ही करेंगे। आजकल क्या है, परिवार के अंदर भी बच्चों को समझाने का किसी के पास समय, हर आदमी इतना व्यस्त है पता नहीं वो क्या करता रहता है, ये समय थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता जाता है। समय आप किसके लिए जी रहे हैं? अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। जब तक अपन उन अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, आप अपने दादा दादी को, बच्चे को दादा दादी के बारे में नहीं बताएंगे, आजकल के कुछ माँ बापों को तो ऐसे मैंने देखा है वो दादा दादी के पास तो बैठने ही नहीं देते अपने बच्चों को, वो तो ये अपने को जो पहले जो चीजें चलती थी उन चीजों पहली ही चीजों पे ही आना पड़ेगा। स्टेटस दिखाने से, फालतू की बातें करने से कहीं कुछ नहीं होता है, और ये कोरोना आया था इसने सब चीज अपने को सिखा भी दी थी, फिर भी इंसान क्या है सुधरता समझता नहीं है, लेकिन कोरोना एक सीख दे करके गया, जिस तरह जैसे जैसे लोग अलग हो रहे थे ना सबको एक किया था उसने। इसीलिए विद्यालयों में सबसे पहले बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखानी चाहिए, हर चीज के बारे में बताना चाहिए अपने को, उसके बाद में ही अपन देखो हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं हर किसी चीज का तालमेल होता है।
0: बिल्कुल,
1: पर्यावरण एक ऐसा मतलब चारों तरफ में पर्यावरण बनता कब है? जब सभी चीजें अपनी सकारात्मक बनती हैं तभी वो पर्यावरण है। अब अपन घर में झगड़ा कर रहे हैं, पड़ोसी देख रहे हैं, तो वो काई का पर्यावरण है? पर्यावरण कब होगा? जब हमारा, हम अच्छे तरीके से रहेंगे, पड़ोसी भी उस तरीके से रहेंगे, कोई भी सड़क पर कोई जा रहा है, कोई पेड़ में, कोई डाली में कुछ कर रहा है, कोई पत्ती तोड़ रहा है, ये सारी चीजें बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन इनका आउटपुट बहुत ज्यादा है। अपन कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जगह, जब तक हम नैतिक, वो कहें हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो हर चीज की शुरुआत अपने को खुद को करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही हम पर्यावरण के बारे में। और दूसरी चीज, एक चीज और है, अभी आगे 5 जून को अपन पर्यावरण दिवस मनाएंगे। पर्यावरण का कोई दिवस नहीं होता है, पर्यावरण तो हमेशा 24 घंटे मनाया जाता है। मनाए जाने का मतलब उसकी एक दिन ला करके फोटो खिंचा करके या ये पौधे लगा करके, ऐसे नहीं होता है। आपने कोई पौधा लगाया है, जब तक वो बड़ा नहीं होता, जब तक वो फल वाला है तो फल नहीं देता, छाया वाला है तो छाया नहीं, तब तक आपको 50 पौधे मत लगाओ, आप तो 2 ही लगाओ, लेकिन जब तक उनकी आप पूरी केयर टेकिंग, जब तक वो पूरा डेवलप नहीं हो जाए तब तक उसको छोड़ो मत। अब हमारे यहाँ क्या, आज पौधा लगा दिया, वो फोटो खिंच गया, फेसबुक पे लगा दिया, स्टेटस लगा दिया, ओके हम उस गिनती में आ गए कि हमने पर्यावरण को बचा लिया। क्या फोटो स्टेटस लगाने से पर्यावरण बचता है? अपने को धरातल पर जाना पड़ेगा इन सारी चीजों के लिए। जी
0: बिल्कुल ब्रजेश जी, जब जल संरक्षण की बात आती है तो कई कदम हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है उठाए जाने के पक्ष में रहते हैं, तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि हमारा जल जो है वो अब तक तो प्रदूषित हुआ है लेकिन अब प्रदूषित होने से बच जाए?

0: जल प्रदूषण के लिए मैंने पहले भी कहा है और कई जगह मैंने लिखा भी है कि व्यक्ति को अपनी आदतें ठीक करनी पड़ेगी, आदतें ठीक करनी पड़ेगी। हमारी जो एक गलत आदत इन सभी चीजों को बिगाड़ रही है, और उसको ठीक करने के लिए आवश्यक है कि वो चीजें संस्कार में आनी चाहिए। हम जिस जल का उपयोग खाने पीने के लिए और अपने जीवन को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, उस जल में जब हम मलमूत्र बहाते हैं, मैंने देखा है कि गंगोत्री जहाँ से गंगा जी निकलती है वहाँ भी लोग अपनी गंदी आदतों को नहीं छोड़ते हैं।
1: बिल्कुल
0: पॉलीथीन पाउच गुटके अपने अंग वस्त्रों को वहीं छोड़ के आ जाते हैं। जिस गंगा को हमने पूजनीय माना है, इसका दिवस भी मनाया है हम सब लोगों ने, गंगा अवतरण दिवस, जल का बहुत बड़ा स्त्रोत जिसको भागीरथ जी कड़ी तपस्या करके धरती पर लेकर आए थे, उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? हमारा व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। और इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी हो ऐसा मैं नहीं मानता। आम नागरिकों को ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: सरकार मना करती है बार बार कि इसका उपयोग मत कर, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो अपनी आदतों को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये शिक्षा संस्कार इस सारी चीजें एक साथ चलेगी, उसके बाद ही हम जो है जल प्रदूषण को नियंत्रित कर पाएंगे।
1: बिल्कुल। राठौड़ जी, आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, युवा जो हैं आपके इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेते हैं, तो आपको क्या लगता है आज युवाओं की क्या जिम्मेदारी है?
2: मेरा ये मानना है कि जैसा कि अभी शर्मा साहब ने भी बोला था कि बच्चों को छोटे सी क्लास से ही हमें ये सिखाना चाहिए, पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए, नैतिक शिक्षा के बारे में बताना चाहिए। तो मेरा इस जगह ये कहना है कि हर पुस्तक के अंदर ये सब है, मौजूद है, और बच्चों को आज भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन उनको प्रैक्टिकली नहीं समझाया जा रहा। जो कमी है वो प्रैक्टिकल की कमी है। मेरा मानना है कि जितने भी विद्यालय हैं उसमें ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जब बच्चा पहली क्लास में प्रवेश ले, पहली क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको ये कहा जाए, क्योंकि जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ेगा वो 12th तक, हम ये मान के चलते हैं 12th तक उसी विद्यालय के अंदर वो अपनी एजुकेशन लेगा, तो पहली क्लास में उससे वृक्षारोपण कराया जाए और उससे ये कहा जाए कि इस 12 साल तक आपको इस पौधे को संभालना है, और जब वो पौधा पेड़ बन जाए, क्योंकि 12 साल में डेफिनेटली वो फल भी देने लग जाएगा, और उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को ऑटोमेटिकली सहेज लेंगे।
1: बिल्कुल।
2: आज हम स्कूलों में देखते हैं सबको, जो भारत सरकार है उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, जिसमें जो हम कहें स्वच्छ भारत अभियान है, नमामि गंगे योजना है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा को डालें, हम हर लेवल पे कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमको ये देखना चाहिए धरातल पे कितना उतर रहा है। एक वृक्ष माँ के नाम, बहुत पेड़ लगे, बहुत पेड़ लगे हैं। सरकार ने मैं कहूंगा कि वन विभाग ने सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड़ बांटे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि उन वृक्षों का वो हाल हुआ है, लगा के लोगों ने जो सेल्फी खिंचाने के बाद कभी जाके ये नहीं देखा कि उस पौधे की स्थिति क्या है, अगले दिन जाके किसी ने उसको वाटरिंग तक नहीं की है।
1: बिल्कुल।
2: तो वो पौधा पेड़ कैसे बनेगा? और मेरा मानना है जितने पेड़ उस समय लगाए गए उसका यदि 1% भी बच जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हकीकत में देखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूं कई घर बहुत छोटे हैं, आज हम देखते हैं कि लोग मल्टी स्टोरीज के अंदर रह रहे हैं, वहां पर वृक्ष लगाना संभव नहीं है। कोई बात नहीं, कम से कम गमले तो लगा सकते हैं,
1: बिल्कुल
2: उसमें पेड़ लगा सकते हैं। आज हम ये देख रहे हैं, आज इतनी अवेयरनेस हो गई, ऑक्सी प्लांट, बहुत सारे ऑक्सी प्लांट्स अवेलेबल हैं जो आप इंडोर में आराम से उसको यूज कर सकते हैं ताकि वो ऑक्सीजन दे। तो मेरा सिर्फ इतना आज ये कहना होगा, वो कहते हैं ना आचार्य तुलसी का एक शब्द जो मैं हमेशा यूज करता हूं, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, मैं दूसरों से अपेक्षा नहीं करूं बल्कि जो चीज मैं बोल रहा हूं वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करूं। तो मैं आपको इसे बताना चाहूंगा, पहले कुछ टाइम से छूट गया है, वरना मैंने अपने महाविद्यालय

0: विद्यालय में हम लोगों ने यही प्रणाली हमेशा की थी। हमने एक वृक्ष मित्र समिति बना रखी थी
1: जी।
0: और जब बच्चा प्रवेश लेता था तो हम उसको वृक्षारोपण कराते थे, और वृक्षारोपण कराने के बाद कहते थे कि दो साल तक, क्योंकि हमारी पीजी कॉलेज है तो दो साल ही बच्चा हमारे साथ रहता है, कि इसका देखरेख आपको करना है। और उस परिसर में हमने बहुत वृक्ष लगाए और उनको बचाने की कोशिश भी की, जबकि जो हमारा महाविद्यालय है वो ऐसी जगह पे जहाँ टोटली स्टोन एरिया है और 1.5 फीट के अंदर ही फत्तर फत्तर आ जाता है। उसके बाद भी यदि आज आप कभी आपको मौका मिलता है आप मेरे महाविद्यालय में आए, आप देखेंगे हम आज भी हरियाली से सुसज्जित हैं। तो मैं सभी से ये कहूंगा कि हम लोग खुद स्वयं एक एक वृक्ष जरूर लगाएं, हर हमेशा लगाएं, और हर घर के बाहर यदि आपके पास जगह है तो वृक्ष जरूर लगाएं। नहीं है कोई बात नहीं, आप गमलों में लगाएं। यदि हर व्यक्ति ये कर लेगा तो मैं कहता हूं ऑक्सीजन की कोई कमी आने वाली ही नहीं है। आज हम देख रहे हैं विश्व के अंदर कई ऐसे देश हैं जहां पानी की एक बूंद नहीं है,
1: बिल्कुल
0: पूरा सूखा पड़ चुका है
2: जी।
0: और ये जितना भी पृथ्वी के ऊपर पानी उपलब्ध है, जल उपलब्ध है, मात्र 1% है जो पीने योग्य है। यदि हम उसको आज भी नहीं सहेजेंगे और जिस तरह से हम दोहन कर रहे हैं और उसको रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। सरकार ने आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए, बड़े बड़े मल्टीज के लिए बोल दिया है कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी है, मुझे बड़ी हंसी आती है जब आज हम वही, जब आपने स्टेटस सिंबल की बात मेरे से पिछले क्वेश्चन में की थी तब ये था कि हम आज वाटर बॉटल यूज कर रहे हैं। वाटर बॉटल्स के अंदर जो रिसर्च कहती है 2000 मॉलिक्यूल होते हैं प्लास्टिक के, बहुत ज्यादा छोटे छोटे, और वो जब हम पानी के साथ अंदर बॉडी में जाते हैं वो कैंसर का कारक बनता है। तो हम सब पढ़े लिखे होके शिक्षित होने के बाद भी उन वाटर बोतल का यूज कर रहे हैं। आज आप शादी ब्याह में कहीं भी जाएंगे, बड़े बड़े शादी में होंगे, वहां वाटर बोतल ही दी जाती है, कैंपर नहीं रखा होता। यदि कैंपर्स रखे हुए तो वहां भी आप देखेंगे प्लास्टिक की ग्लासेस रखा जाता है, क्यों नहीं वहां स्टील का लोटा रखा जाए। यदि छोटी छोटी चीजें हम अभी से इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे तो मेरा मानना है कि हम वास्तव में पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे। मेरा मानना है जब हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वो मनाते हैं 1972 से, यूनाइटेड स्टेट ने 1972 में ये सोचा था, लेकिन मैं आज ये कहूंगा कि इस बात को लगभग 54-55 वर्ष हो गए। मेरे हिसाब से आज भी हम उससे भी गिरी हुई स्थिति में है। तो हमने इन 55 वर्षों में क्या किया, ये सोचनीय है। और हम सबको पॉजिटिव स्टेप उठाते हुए, ये कोई देखा जाए तो ये सिखाने वाली बात नहीं है, मुझे पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। हमने कोरोना काल में देखा है लोग ऑक्सीजन के लिए किस तरह से तड़पे हैं, और तड़पे ही नहीं भाई, कई लोगों की जाने चली गई विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। तो हमें वो चीज हमेशा याद रखनी चाहिए और उसको देखते हुए पॉजिटिव इंप्लीमेंट हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में करना चाहिए, तभी इस दिवस की भी सार्थकता होगी। और सेकंड वन, इस डिस्कशन का फायदा भी तभी हो पाएगा, और जो लोग भी सुन रहे हैं मैं उनसे कहूंगा इन छोटी छोटी बातों का आप अपनी लाइफ में, अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने जहां भी आप वर्क करते हैं वहां इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए, तो वास्तव में ये सार्थक होगा और हम पर्यावरण के लिए कुछ कुछ स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। वरना जिस स्थिति में आज हम खड़े हैं तो वो तो वास्तव में बहुत शोचनीय और दयनीय है। तो आने वाला समय इतना खतरनाक होगा कि हम उसकी आज भी कल्पना नहीं कर सकते। यदि मैं आज आपसे नागौर की साइट की बात करूं, आज वाटर बोतल हम यूज कर रहे हैं जो मैंने अभी भी बोला था, वाटर बोतल की जो एज होती है यानी कि एक्सपायरी डेट लगभग 1 महीने बाद होती है, 2 महीने बाद होती है, मुझे बड़ा ताजुब होता है। हम जब चंबल का पानी यूज कर रहे हैं, कितने वर्षों से यूज कर रहे हैं, उसकी तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जो हम जल का दोहन कर रहे हैं उसके कितने वर्षों पुराना पानी है आपको पता है। जब हम लोग घर में, मैंने अपनी दादी को भी देखा, वो जब नल आता था सुबह सुबह, जो मटके के अंदर घड़े के अंदर पानी भरा हुआ होता था वो ढोल देती थी कि ये तो बासी पानी हो गया। मुझे आज भी ये समझ में नहीं आता वो बासी पानी कैसे हो गया, उसमें ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल तैयार हो गया जिसकी वजह से वो बासी हो गया। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि हम पानी का सदुपयोग करें, और जो मिथ है कि पानी की एक्सपायरी डेट होती है, पानी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती जब तक कि वो गंदा नहीं हो, हमें उपयोग उसका सदुपयोग करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण की रक्षा किसी न किसी रूप में कर सके।
1: बिल्कुल लेखराज जी, क्या कहेंगे आपकी सामूहिक हमारा कोई एक ऐसा प्रयास जो पर्यावरण संरक्षण की ओर हो
2: जी। सामूहिक प्रयास जब हम सभी ये ठान लेंगे सामूहिक

0: एक आवाज कब बनती है, जब किसी भी चीज के बारे में अपने खुद अपन को समझना पड़ता है। हम पर्यावरण के बारे में ही नहीं समझ पा रहे कि पर्यावरण होता क्या है, तो फिर हम सामूहिक प्रयास कैसे। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि पर्यावरण क्या है, किस वजह से अपन जीवित है। दूसरी चीज यह है, कम से कम अपने को फोर व्हीलर का, कई चीजों का, इनका कम से कम उपयोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं उपयोग करना चाहिए, लेकिन कम से कम करना चाहिए इन चीजों, अगर जरूरत है तो ही। अब जैसे आप रोड पर कोई गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है, उसकी साइड में होकर के निकल करके पैदल चल रहे हैं, तो आपको क्या कैसा लगेगा? आपको, आप निकल नहीं पाएंगे। अपना 4 डिग्री टेम्परेचर तो इन फोर व्हीलरों के, इनके एसी के कारण हो रहा है,
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना। तो अपन को सामूहिक प्रयास ये करना चाहिए, हर चीज को मितव्ययता से, जहां जितनी जरूरत है, पानी की भी जितनी जरूरत है उतना अपन को लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, कहीं अपन जा रहे हैं, गिलास में पानी आया, अपन ने थोड़ा सा पी लिया और उसको छोड़ दिया। आपको कम पीना है, बोलिए भाई साहब आधा गिलास लेकर के आइए आप, ठीक है ना। वेस्ट नहीं करना पानी जैसी महत्वपूर्ण चीज, ये वेस्ट के लिए नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन प्रोग्राम में गवर्नर साहब आए थे हमारे राज्यपाल के, उन्होंने कहा कि मैं एक बाल्टी पानी से नहा लेता हूँ, मेरे लिए 10 लीटर पानी काफी सफिशियंट है। और लोग बाग क्या है, वो लगा करके नहाते रहते हैं, पानी डुलता रहता है, शावर लगा कर ये। तो अपने को खुद हर चीज पे पहले ही दोगा, देखिए वो कितने बड़े आदमी, वो कह रहे मैं तो मेरे लिए तो एक बाल्टी काफी, उसी से मैं जीवन से, कितनी उम्र हो गई वो अभी बोल करके गए, यहाँ कोटा आए थे तब वो। तो अपने को हर चीज को सोचना पड़ेगा। और सामूहिक आवाज कैसे बनेगी, जब मैं आपको देखूंगा, आप और किसी को देखेंगे, मैं मेरे बच्चे जब मेरे को देखेंगे, पड़ोसी जब देखेंगे, जब वो एक ऑटोमेटिक ही सामूहिक चीज बनेगी। हमारे को उसके बारे में सकारात्मक सोचना पड़ेगा। जल है तो कल है, पर्यावरण है तो कल है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमको एक सामूहिक सोच होती है, इंसान की एक ह्यूमिनिटी होती है, भाई अपन जीवन कैसे है, किस तरीके से जीवित है। जब तक अपन की ये चीज पता नहीं होगा, हम अभी आधे से लोगों को तो ये नहीं पता है हम जीवन कैसे हैं, कहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, कैसे। पहले उस चीज का महत्व पता होना चाहिए कि इस चीज का कितना बड़ा महत्व है, क्या है ये हमारे जीवन में। जब तक हम सामने वाले को नहीं समझेंगे, सामने उस चीज को नहीं समझेंगे, जब तक उसके महत्व के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी कदर नहीं करेंगे। और जब हम उसकी चीज की कदर करेंगे, वही पर्यावरण अपने आप में सुंदर सुसज्जित अच्छा बनेगा उसके अंदर। जी
1: बिल्कुल। ब्रजेश विजयवर्गीय जी, आपसे प्रश्न की जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात अभी इतनी बार हमारे सामने आई, उससे हमारा जल बचे, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए?
2: दरअसल हम जब नीतियों का निर्माण करते हैं या कोई डायरेक्शन जारी करते हैं सोसाइटी के लिए, तो उस पर गहन विचार विमर्श नहीं होता। सिंगल यूज प्लास्टिक कितने लोग जानते हैं,
1: बिल्कुल,
2: कि क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक? ये केवल कुछ पढ़े लिखे लोग समझते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, आम आदमी को अभी भी पता नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है। तो हमें एक तो ये, यदि प्लास्टिक खराब है तो हर प्रकार का प्लास्टिक खराब है, ये चीज समझना पड़ेगा। और इसमें डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा प्लास्टिक रिसाइकिल के योग्य है, कौन सा प्लास्टिक रिसाइकल के योग्य नहीं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक रिसाइकल के योग्य तो है, लेकिन उसका तंत्र हमारे सोसाइटी में या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कहीं भी नहीं है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का करें क्या, उसको फेंकना ही पड़ेगा, वो कितना इकट्ठा करेगा। जैसे मैं अपने ऊपर लूँ, मैं कहीं से सीख के आया था, देख के आया था कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। हमने जो भी कैरी बैग्स आते हैं, शायद दूध की थैली है या सब्जी की थैली है, उनको इकट्ठा कर लिया। हम जब उसको लेके गए कबाड़ी के पास, तो उसने बोतल में से उसको निकाल के बाहर कर दिया और बोतल को ले लिया, तो वो तो वापस वेस्ट बन गया। तो हमें क्या है कि बहुत ज़्यादा गहराई से इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी ये चीज़ें समझानी पड़ेगी लोगों। तो ये जो अंग्रेजी के वर्ड हम जो यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, सभी करते हैं, तो उसमें स्पष्ट बात नहीं होती कि कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते। आप किसी से पूछ लो क्या होता है सिंगल, सिंगल यूज डबल यूज क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें हम एक बार उपयोग करके के बाद फेंक देते हैं

0: और एक होती है कि जिसको हम बार बार उपयोग करते हैं। तो ये इतनी सी चीज हम समझा नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, तो इसके लिए भी विचार करना पड़ेगा हमें, और ये चीज संस्कार में आनी चाहिए। मैं बार बार इसी बात पे बोल रहा हूँ
1: राठौर जी, जब बात मैनेजमेंट की आती है तो उसमें एक विषय है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम कम से कम रिसोर्सेस को यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेते हैं। क्या हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका भी कम प्रयोग, पुनः प्रयोग और पुनर्चक्रण, इस प्रक्रिया को हम किस तरह से हमारे जो विद्यार्थी हैं जो आज भी पढ़ रहे हैं उनके क्या पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं, या किस तरह से उनके आदतों में या कहूं कि उनके मस्तिष्क में ये बात बैठा सकते हैं।
2: देखिए, इसकी जिम्मेदारी हमारी, मैं फिर दोबारा बोलूंगा कि सामूहिक ही है। जब एजुकेशन की हम बात करते हैं, काफी अवेयरनेस सेशन हम लोग आज भी कंडक्ट करते हैं बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताने के लिए, लेकिन जब वो घर जाता है वो भूल जाता है। वो स्कूल तक तो उस बात को याद है लेकिन वो घर जाके भूलता है, तो उसको याद दिलाने की जिम्मेदारी परिवार की भी है। यदि परिवार में जो बड़े हैं यदि वो उन सब चीजों का उपयोग करेंगे, वो प्रैक्टिकली लाइफ में बच्चा देखेगा तो डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंट करेगा, और वो इम्प्लीमेंट करेगा तो बट नेचुरल है कि घर में जो हम पर्यावरण के लिए बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली ही सीखेगा। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी हम सिर्फ बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, किताबी ज्ञान दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि बच्चा अच्छे डिवीजन से पास हो जाए, लेकिन उस शिक्षा का प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे वो इम्प्लीमेंट करे वो हम बच्चे को नहीं सिखा रहे। तो उसकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो खाली एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे नहीं, के साथ साथ समाज की भी है, परिवार की भी है, तभी हम उस चीज को, उन बच्चों को पर्यावरण के बारे में बचपन से ही सिखा पाएंगे। यदि आज जो बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, हमारे जैसे लोग भी हो चुके हैं, हम इस बारे में चिंतन कर रहे हैं, लेकिन यदि उस बच्चे में बचपन से चिंतन हो जाएगा तो शायद न तो वो प्लास्टिक यूज करेगा, न वो पानी का दुरुपयोग करेगा, और वो पर्यावरण को शुद्ध भी रखेगा, क्योंकि जो बच्चा होता है वो कच्ची मिट्टी होती है, उसको जिस प्रकार आप ढालेंगे उसी प्रकार से वो आगे बढ़ेगा और समाज को, सोसाइटी को, पर्यावरण के लिए अच्छे कार्य करेगा। तो मेरा मानना है कि इस जगह हमें बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, अवेयरनेस सब लोग कर रहे हैं, और इसकी गति को और बढ़ाना चाहिए, और उसको प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट किया जाए वो बताना चाहिए, तभी बच्चा उसको ले पाएगा। क्योंकि आज जो बच्चा है वो बच्चा पुराने जमाना वाला बच्चा नहीं है, आज वो साइंटिफिकली जानना चाहता है कि वास्तव में मेरा ऐसा करने से उसके परिणाम क्या होंगे। तो बच्चों को परिणाम भी दिखाने पड़ेंगे, जब पॉजिटिव परिणाम आएंगे तो बच्चा अपने आप मानेगा।
1: पर्यावरण संतुलन के लिए हम क्या कदम उठाएं, इस विषय पर आज हमने जो परिचर्चा आयोजित की उसमें श्री लेखराज शर्मा जी, श्री ब्रजेश विजयवर्गीय जी और डॉक्टर अमित सिंह राठौर जी हमारे साथ रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद
2: धन्यवाद
3: धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संतुलन के लिए मिलकर उठाए गए एक कदम पर परिचर्चा। परिचर्चा के प्रतिभागी थे श्री ब्रजेश विजयवर्गीय, श्री अमित सिंह राठौर, श्री लेखराज शर्मा। संचालन था ममता कुमारी जी का। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं चित्रपट संगीत की ओर। चित्रपट संगीत का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म गुलाम से। इस गीत को आवाज दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत और मैं हूं आपका रेडियो साथी अंकुश। ये गीत हमने लिया है फिल्म दे दनादन से। आवाज दी है जावेद अली ने।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में एक गीत हमने लिया है फिल्म जहर से। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और संगीत से तराशा है रूप कुमार राठौड़ ने।

0: मीत प्रोज और अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत हमने लिया है फिल्म वन नाइट स्टैंड से। इस गीत को लिखा है शब्बीर अहमद ने और संगीत
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।

मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है।

कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए लिए चलते हैं आपको SMS के बहाने चंबल चैनल के तरानों की ओर। यूं तो सफर में मिल जाते हैं कई लोग जाने अनजाने, यूं तो सफर में मिल जाते हैं कई लोग जाने अनजाने, हम आपसे मिलते हैं गीत और संगीत के बहाने। मैं हूं आपका रेडियो साथी अंकुश, लेकर प्रस्तुत हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने।
3: मैं अगर सामने आ भी जाया करूं।
2: और बिना समय व्यर्थ करते हुए पहला SMS हमें आया है गांव लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल जिनका नाम परी भी है, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, आपकी फरमाइश पर ये गीत आपके लिए हमने लिया है फिल्म राज से। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और अभिजीत ने और लिखा है समीर ने, संगीत से तराशा है नदीम और श्रवण ने।

कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने। आप जल्दी से अपना फोन उठाइए और फटाफट से मैसेज टाइप करके मुझे भेज दीजिए 9530012020 पर, यानी कि 9530012020 पर। आप जल्दी से अपनी जो सुनने वाला आपका गाना है

जो फरमाइशी की थे वो जल्द से जल्द भेज दें। और इसी बीच अगला SMS है गोडसे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से, लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्न लोखंडे, रक्षिता लोखंडे, आप सुनना चाहते हैं 1967 में आई फिल्म बहारों के सपने का ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर मोहम्मद रफी ने और इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से तराशा है RT बर्मन ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नहावकर, विशाल नहावकर, मलकपुर से निर्मला नहावकर, सोपान ताइडे, नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरकर। इसी के साथ आपको बता दें इसी गीत की फरमाइश आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां जी की भी।

एसएमएस है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा जी का। इंद्रजीत कौर छाबड़ा जी और स्वीटी छाबड़ा जी का, आपने जिस गीत की फरमाइश की है वो सन 1964 में आई फिल्म राजकुमार का है, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीती दीवाना जी, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, मीरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी की भी यही फरमाइश है। और इसी के साथ आपको बता दें गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जी, जसवीर जस्ती, सीता और गीता भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तो लीजिए ये गीत आपके लिए।

मजनू का टीला एक जगह है जहाँ से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, साथी सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक सुनना चाहते हैं फिल्म नील कमल का ये गीत। पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा भी इसी गीत की फरमाइश लेकर आए हैं और इसी गीत की फरमाइश आई है गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक की। तो ये गीत आपके

हमारे एक श्रोता है नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप पूछ रहे हैं आप कैसे हैं जी, हम बहुत अच्छे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं आपने भेजी हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस गीत को आप सुनना चाहते हैं, एक बार फिर फिल्म से ये लिया गया है और ये फरमाइश आपकी इस गीत के माध्यम से पूरी हो रही है। और साथ ही वडिंग खेड़ा पंजाब से भी इसी गीत की फरमाइश है। पिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा, गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा, विमला गुदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गुदारा जी की यही फरमाइश थी कि इस गीत को सुना

हमारे एक और श्रोतागण हैं राम शरण विश्वकर्मा जी, साहिल विश्वकर्मा जी, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से आपने भेजा है। आदरणीय अंकुर सर जी, प्यार भरा नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत बड़ा नमस्कार। आप सुनना चाहते हैं गीत राम तेरी गंगा मैली का, ये गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, और इस गीत को लिखा है हसरत जैन जौरपुरी ने और संगीत से तराशा है रविंद्र जैन ने। तो ये गीत सीधा आपके लिए।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही गीत सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा जी, विमला अनेजा जी। और इसी के साथ इसी गीत की

पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से फरमाइश आई है। बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा की। साथ ही कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, प्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरुशब्द सिंह, राहुल सुनना चाहते हैं फिल्म कामचोर, चूंकि 1982 में आई थी ये फिल्म, उसका गीत है। और साथ ही सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका के साथ साथ चक 15 पीएस जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन और

आपको बता दें कि जगदीश ठाकर नायमा साहब भी श्रीमती रंजूबाई ठाकर, युवराज सिंह ठाकर और शिवांगी ठाकर करणवीर हाउस बूचो कैनिचिया बठिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन अभिजोत के साथ डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू जो कि पटेल नगर मलोट से हैं। आप भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं तो ये गीत आपके लिए है।

राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से SMS आया है, कह रहे हैं कि आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, धन्यवाद। आपके द्वारा की गई प्रशंसा के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आप सुनना चाहते हैं मिलन फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत सिद्धराशा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एसएमएस के बहाने चंबल चैनल की तरह आने और मैं हूँ आपका रेडियो साथी अंकुश भाई। कुछ भी कहिए, हमारे श्रोता गणों का जो गीत का चयन है बड़ा उम्दा है, मानना पड़ेगा आप सभी को। और इसी के साथ फिल्म आँखें का ये गीत सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करण वर्मा जी। साथ ही आपने एसएमएस भेजा है मलियाना सरदना मेरठ से अनिल जैन जैन साहब संयम जैन मुस्कान जैन मास्टर जीवीएम जैन ने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी

मेरठ से अनिल जैन जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन ने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप भी ये गीत सुनना चाहते हैं। इसी के साथ गीत सुनना चाहते हैं गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कडासरा कडवासरा, सचिन कडवासरा, सतीश कडवासरा, योगेश कडवासरा और युद्धव कडवासरा।

छोटा से फिल्म मोहरा का ये गीत किसी को समर्पित करना चाहती हैं। हालांकि इन्होंने इनका नाम SMS में नहीं लिखा है। ये गीत सुनना चाहते हैं गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार से रामधारी गुजर अवनी रेयांशी प्रियांशी ओजस और बेबी अनाया। और इसी के साथ आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा साइना शर्मा निवान शर्मा भी ये गीत सुनना चाहते हैं। और आपको बता दें कि अब प्रोग्राम आपको पसंद आया हो कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया SMS के जरिए हमें बता भी दें। आपको पता ही है कि हमारा जो नंबर है वो है 9530120020 यानी कि 9530001220020। ये गीत सीधा

मुझे पता है आपके SMS बहुत धड़ल्ले से आ रहे हैं मेरे पास, और बहुत बेहतरीन नगमे भी आप सुनना चाहते हैं, और क्योंकि आप श्रोतागण हैं और आकाशवाणी सुनते हैं तो आपको पता है कि गीत को किस तरीके से चयन किया जाता है, और किंतु समय का अभाव हमारे पास ज़रूर है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो गीत है वो ये SMS है चिल्फी घाटी छत्तीसगढ़ से उत्कर्ष नेता प्रोनामिका नेताजी का। साथ ही SMS मिला है हमें अबू धाबी UAE से शेख जियाउर रहमान, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान का, और फरमाइश है इनका कि फिल्म नाम जो कि 1986 में आई थी उसका ये गीत आप सुनना चाहते हैं। साथ ही गुमला झारखंड से 5M जावेद शगुफ्ता अंजुम, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरिदेव मिका, बलविंदर विरक, जैतक विरक, मिका विरक भी ये गीत सुनना चाहते हैं, और इसी के साथ गांव फर्रा से जलाहिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी भी ये गीत सुनना चाहते हैं। तो

समय का अभाव है, इसलिए यदि किसी श्रोता कणों का SMS हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए क्षमा याचना। लेकिन आप जुड़े रहें हमसे, इतने प्यारे प्यारे गीत आप हमें बताते रहें, और अगली बार जब आप आएंगे तो आपकी फरमाइश पूरी कोशिश करें कि हम आपकी पूरी की फरमाइश पूरी कर सकें। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता जी, हिना जी, हर्षित, खुशी गोस्वामी सुनना चाहते हैं फिल्म दीवाना का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है कुमार सानू, साधना सरगम ने, और इसे लिखा है समीर ने और संगीत से तराशा है नदीम श्रवण ने।

जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतक, बलवीर सिंह भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।

अभी आप सुन रहे थे एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों की ओर।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। अमलतास की झालरों पर जब उतरती है चांदनी, हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं, ताल झूमता है, कुमुदनी हुलस जाती है।

जोड़ता है टूटे हुए तार को, तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को। कभी तो मिलता नहीं जरा सा करार, और कहीं छाया है नाजुक एहसासों का खुमार।

ये राज हैं ऐसे जो सरेआम बताए नहीं जाते, ये नख़मे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते। इन्हें तो बस वही गा सकता है जिसके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो और आवाज हो ऐसी पवित्र कि लगे स्वाति की कोई बूंद हो।

फासले कदमों के नहीं हो, बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले तो ये नगमे फिर गा सकते हैं और उन आंखों में उतर सकती है नींद की परी।

टप टप कर स्मृतियों की बरसात होती है जब कभी, रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है, अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग, और चांद अपने ख्यालों में डूब जाता है।

0: ये था विविध भारती का नजराना।
1: अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान

है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer is Arjun J. Chaudhary.
1: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख नीतिगत सुधारों और पहलों पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार साक्षात्कार कर रहे हैं अर्जुन जी चौधरी
2: A warm welcome to our listeners on Akashvani, and today we're joined by Shri Bharat Kheda, who is the secretary at the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and we will be discussing about the major reforms and initiatives in the growth and empowerment of MSMEs. Bharat Kheda ji, a warm welcome to you on this podcast.
3: It's a matter of pleasure to be here with you today.
2: And the reason why we are having this special discussion on MSMEs is the growth of the number of the entities that are in business right now, entrepreneurship, the employment that all of this has brought in, and really the contribution to the gross domestic product of the economy as well. But we'll try and simplify it for the benefit of our listeners on Akashvani. Bharat Kheda ji, agar hum isko saral tarike se dekhe, to entrepreneurship ka role kya raha hai MSMEs mein?
3: देखिए एमएसएमईज में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है इनोवेशन और मैं ये समझता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का ये एक जरिया है और इसी फीलिंग के साथ आज के समय में स्टार्टअप्स और एमएसएमईज पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं इनफैक्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स दिस इकोसिस्टम हैज रियली इवॉल्वड एंड गॉट ट्रांसफॉर्म्ड आई वुड से इन इंडिया एंड टुडे इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 30% टू द जीडीपी 35% to manufacturing, 60% to employment, and 48% to exports. So that is the reason why a lot of people say it has become the backbone of the Indian economy.
2: Usually, anyone engaged in entrepreneurship is looking at a business opportunity and then they're looking to create a system to exploit that opportunity. How do you see the government supporting this energy and spirit of the entrepreneur?
3: I would say the policy support

ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। रात्रि के 11:45 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।